0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 6 बजे है। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

तुषा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए एक नया मेकानिज्म लागू करने पर विचार कर रही है। आईसीटी मंत्रालय इस संबंध में जल्द ही परामर्श शुरू करेगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य फर्जी जानकारी, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और हानिकारक सामग्री पर रोक लगाना है। कई महीनों तक चले देशव्यापी परामर्श के बाद विजन 2050 पहल का नागरिक संवाद चरण प्लेंदीपापाई में समाप्त हो गया। 1200 से अधिक लोगों ने देश के भविष्य को लेकर अपने विचार और सुझाव साझा किए। मंत्री ज्योति जीतन ने नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। अब इन सुझावों के आधार पर अगले 25 वर्षों के लिए मॉरिशस की विकास कार्य योजना तैयार की जाएगी। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने तिजोरी मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। उन पर कानूनी सीमा से अधिक नकद भुगतान प्राप्त करने से जुड़े 23 आरोप थे। बचाव पक्ष ने मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए जांच में हस्तक्षेप और अत्यधिक देरी का आरोप लगाया था। मॉरिशस में किशोरावस्था में गर्भधारण के मामलों में प्रभावित युवतियों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत परामर्श, घर पर निगरानी और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जाता है। पोर्ट लुई स्थित एक आश्रय केंद्र मनोवैज्ञानिक सहायता, समूह चिकित्सा तथा पढ़ाई दोबारा शुरू करने या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहयोग देता है। वहीं 2025 से स्कूलों में यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ताकि प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े और कम उम्र में गर्भधारण को रोका जा सके। और विदेश में ईरान और इसराइल का कहना है कि वे हमलों को रोकेंगे, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि युद्ध विराम का फिर से उल्लंघन हुआ तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व की ओर धीरे धीरे एंटीसाइक्लोन दूर होता जा रहा है। कभी कभार पूर्व से पाए जा रहे बादल स्थानीय मौसम

0: को प्रभावित करेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी, अन्य इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे, दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 21 से 24, तटवर्ती इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और ऊंचाइयों पर कभी कभार वर्षा होगी, न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:40 पर और शाम 5:37 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपसे मुलाकात होगी 6:30, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।

0: सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। जून महीना, 9 तारीख 2026 का वर्ष, मंगलवार का दिन और इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:04:45। माइक पर आप सभी का साथ दे रही है रत्ना। हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। जहां कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और आज का दिन सभी के लिए ऊर्जाजनक हो। बस यही ऊपर वाले से हम प्रार्थना करते हैं। संत वाणी कार्यक्रम के साथ अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे और ये कार्यक्रम कबीर मंदिर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य श्यामदास जी और ठीक 6:20 पर आप सुन पाएंगे एक विशेष कार्यक्रम सत्यार्थ प्रकाश मास पर आधारित। और यह कार्यक्रम गहलोत राजपूत द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण की जाएगी पंडिता श्याम द्वारा। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में लेते हैं आज का यह सुविचार। श्रोताओं, जो व्यक्ति अपने आज से संतुष्ट नहीं, वह अपने कल से भी संतुष्ट नहीं होगा। आज से हम अपने आज से संतुष्ट रहें। जीवन संतुष्टि भरा रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आइए आचार्य श्यामदास जी का स्वागत करते हैं संतवाणी कार्यक्रम में।
1: आइए सुनिए आचार्य महंत डॉक्टर श्याम दास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संतवाणी।

परम श्रद्धालु श्रोतागण, यह कार्यक्रम कबीर मंदिर कबीर धर्म महासभा बोंदेर बाकवा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का विषय है साहेब बंदगी का भेद। हमारे सदगुरु कबीर साहेब के मार्ग में साहेब बंदगी का विशेष अर्थ है, विशेष महत्व है।

सभी संप्रदायों में, सभी मतों में अपने अपने शिष्टाचार का अभिवादन के लिए शब्द होता है। हमारे साहिब के मार्ग में, कबीर पंथ के मार्ग में भी अभिवादन शिष्टाचार के लिए हम साहिब बंदगी शब्द का उद्बोधन करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बिन बंदगी इस आलम में खाना तुझे हराम है, बंदा करे सोई बंदगी खिदमत में आठो जाम है। यारी मौला बिसार के तू क्या लागा बेकाम है, कुछ जीते जी बंदगी कर ले आखिर को गैर मुकाम है। कबीर पंथ में साहिब बंदगी का विशेष स्थान है। बंदगी गुरु एवं संतों के प्रति या पूजनीय महानुभाव के प्रति की जाती है। बंदगी एक ऐसा तरीका है जिसको जीवन में करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है, और जितने भी तरीके का कर्म कांड हैं उनका जीव को फल मिलता है, जैसे योग, यज्ञ, जप, तप, दान, व्रत, तीर्थाटन, पूजा, नियम आदि, धर्म, संयम, आचार इत्यादि। कर्मकांड चाहे बाह्य हो या मानसिक, सबका जीव को फल मिलता है। कर्म से ही जन्म होता है, जिस प्रकार कर्म होता है उसी तरह का जन्म होता है, लेकिन जीव भवसागर से पार नहीं होता। बंदगी करने में सबसे पहले पुरुष लोग सिर से टोपी साफी या पगड़ी, महिलाएं लोग ओढ़नी का पल्ला अचरा गुरु के चरणों में रखते हैं। इसका अभिप्राय शिष्य अहंकार गुरु के चरणों में रखना होता है। प्रेम प्याला जो पिए शिष्य दक्षिणा में दे, लोभी शिष्य ना दे सके ना नाम प्रेम का ले, शीश काट चरणन धरे तब बैठे घर माए। जहाँ शीश अर्पित कर दिया वहाँ कुछ भी शेष नहीं रहा। सब तन मन धन सब प्रकार के सबके साथ अर्पित हो जाते हैं। फिर दोनों हाथों से अंजलि बनाकर गुरु चरणों के अंगूठे को पकड़कर गुरु के चरणों से सिर तक पूरा स्वरूप देखकर तीन बार सिर चरणों तक आता है। अंजलि का अभिप्राय गुरु भक्ति का दान प्रसाद मांगना है। बाद में शिष्य गुरु चरणों में रख देते हैं। यह तरीका साहिब बंदगी करने का होता है। जब शिष्य ने निहंकार होकर कुछ भी करता है, अपने को कर्ता ना मानकर गुरु को ही श्रेय देता है, वह शिष्य कर्म के बंधन से छूट जाता है। माता पिता मिल जाएंगे लख चौरासी माएँ, गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की नाएँ। गुरु मिलन को जाइए क्या ले जाए भेंट, तन दे मन दे शीश दे गुरु चरणों मस्तक टेक। बंदों सन्मुख पारखी शीस भेंट धरु हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। अतः जीव तन मन धन से मुक्त होकर दुख सुख से छूट जाता है, फिर मुक्त स्थिति में होकर जीवन आनंद से भर जाता है। कुछ दंभी और अभिमानी लोग एक नई बात मनगढ़ंत चला रहे हैं कि किसी की बंदगी नहीं करना चाहिए, जो कि संकुचित व अभिमानी भावों में बह रहे हैं। गुरु बंदगी करते समय गुरु चरणों के नीचे जमीन पर हाथ रख कर टोपी साफी पगड़ी पल्ला को गुरु चरणों में उतार कर रखते हुए चरणों से शीश तक गुरु को निहारते हुए बंदगी करना चाहिए। जो बंदगी का महत्व नहीं जानते समझते वह अभिमान से भरा रहता है। जो मान गुमान में बंध कर बंदगी में शीश नहीं झुकाते उनकी दशा पर

सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, अभिमानी कुंजर भला निज सिर लिन्हो भार, ताको जमरा कूट हैं जैसे लोहा गढ़त लोहार। सद्गुरु कबीर साहब की दया करें तो उनकी भावनाओं का सुधार हो सकता है, लेकिन असंभव है। जो अब तक साहेब ने ही कहा था उसे ही बदल डालते हैं। यदि उनके अंतर में साहेब ने प्रेरणा दी तो उसे ही दम्भी लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे। वस्तुतः साहेब बंदगी साहेब करना जीवन में बहुत ज़रूरी है। मुझे विश्वास है कि इससे बंदगी का महत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। बंदे तू कर बंदगी जो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुरी न बारंबार। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे बंदे तू बंदगी कर। बंदे वह है जो बंधा हुआ है, जब बंदगी करेगा तभी बंधन से छूटेगा। यदि तू परमात्मा सत्य पुरुष का साक्षात्कार करना चाहता है तो गुरु के चरणों में बंदगी करना चाहिए, अन्यथा यह मनुष्य तन तुझे बारंबार नहीं मिलेगा, पुनः 84 लाख योनियों में पड़ जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि बंदगी शब्द में 3 अक्षर पूरे होते हैं, ब, द और ग। ब का अर्थ है शाब्दिक अर्थ बंधन से दूर होए, द का शाब्दिक अर्थ है दीनता होए, और ग का गुरु चरणों होए रहो, बंदी बंदगी कहावे सोए। बंधन से दूर होए दीनता होए, गुरु चरणों होए रहो, बंदगी कहावे सोए। बंधन दूर करने का अर्थ होता है जो जीव संसार को पकड़ बैठा है उसे लोक वेद कहते हैं। लोक यानी यह संसार जिसमें कुटुंब परिवार जाति समाज, वेद यानी वाद ईश्वरवाद अवतारवाद देवतावाद परलोकवाद, किसी को भी मान लेना, स्वयं का तो अनुभव है नहीं और सुन सुन कर ही मस्त हो गया, उस बंधन से बंध जाना अर्थात लोक वेद से बंध जाना ही बंधन है। और दीनता का मतलब होता है इस देह का धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा का अहंकार हो जाता है और इसमें पकड़ कर एक अकड़ हो जाती है। इस अकड़ को दूर कर देने से ही दीनता का भाव होगा। जैसे कि एक निहायत गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगले समय पर भोजन मिलेगा या नहीं ऐसी स्थिति हो जाना, स्वयं को वह पापी जैसे महसूस करे, अहंकार रहित हो जाना, गुरु शरण का मतलब है। अब तो यह जीव संसार से जुड़कर को भी सभी को अपना मान रहा है। जब संसार की निस्सारता को जानकर यानी कोई भी मेरा नहीं है जो मेरा हित चाहता हो, सिर्फ गुरु ही मुझे ज्ञान देकर भवसागर से पार कर सकेंगे, यह गुरु की अभूतपूर्व दया है। फिर यह जीव का पानी और मछली जैसे संबंध गुरु से हो जाता है। प्रथम बंदगी कायक जानो, दूसरी बंदगी मायक जानो, तीसरी बंदगी करे बनाई निर्भय हंस लोक सिधाई। 3 बार बंदगी करने का मतलब होता है बंदगी करते समय जब पहली बार बंदगी करने झुकता है तो उसका भाव होता है यह नश्वर विकारों की भरी देह दुख का घर गुरु चरणों में अर्पित कर दिया, इस शरीर के अहम भाव से मुक्त होना। दूसरी बंदगी करने झुकता है तो इसका भाव यह है जो भी बोलना है उसे गुरु को अर्पित करता हुआ स्वयं को करता नहीं मानता, या फिर इसका अर्थ यह भी हो सकता है यह जीव गुरु के वचन पर दृढ़ हो जाता है और अनावश्यक बोलना हंसी मिथ्या वार्तालाप त्याग देना। तीसरी बंदगी करने

0: जब झुकता है तो मन को गुरु चरणों में अर्पित कर देता है। जब मन गुरु चरणों में अर्पित हो जाता है तो एक नया ही जीवन बन जाता है, जिसे आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। शुद्ध चेतन मात्र रह जाता है, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह कहकर यह जीव निर्भय होकर सत्यलोक में स्थित हो जाता है और जीवन आनंद से भर जाता है। बंदगी करते वक्त यह जीव गुरु चरणों में नतमस्तक हो जाए। पहले दाता शिष्य भया, जिन तन मन अर्पा शेष, दूजे दाता गुरु भया, जिन नाम लिया बख्शीस। अर्थात यह जीव अपने कल्याण करने के लिए तन मन धन अर्पित कर देता है, जिससे अहंकार रहित हो जाता है। जैसे कि धनी धर्मदास साहेब, जिन्होंने अपनी मान बढ़ाई, लोकला 56 करोड़ की संपत्ति सदगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। राजा जनक जी ने अपने गुरु अष्टावक्र जी के चरणों में पहले स्वयं का पूरा राज्य शरीर मन अर्पित कर दिया। इस कठिन कसौटी से वह तीसरे दिन ही ब्रह्म स्वरूप हो गया, तभी से वह वेदी ही कहलाए। यही बंदगी करने का भाव होता है। आज का वक्तव्य इतना ही। बंदगी साहेब, बंदगी साहेब।
1: अभी आप सुन रहे थे आचार्य महंत डॉक्टर श्यामदास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संत वाणी।
2: के साथ श्यामदास जी, आचार्य श्यामदास जी को कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हैं। और आइए जुड़ते हैं सत्यार्थ प्रकाश मास पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम के साथ, जो गहलोत राजपूत महासभा द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी पंडिता श्याम।
3: 819 किलोहर्ट्ज़, यह है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश मास के शुभ अवसर पर प्रस्तुत है यह संदेश। श्रोताओं, सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखित धर्म और इतिहास पर प्रथम बृहद ग्रंथ है। इस ग्रंथ को लिखने से पहले महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने ऋषि महर्षियों की लेखन परंपरा के अनुसार पुस्तक के मंगलाचरण में लिखते हैं, ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। आर्य ऋषियों की सदा से परंपरा रही है कि जब भी कोई ग्रंथ बनाते हैं या भाषण करते हैं तो सर्वप्रथम ओम लिखते हैं, और हम भी पाठशाला में पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले या कापी में कुछ लिखने से पहले ओम बोलते हैं, ओम लिखते हैं। और ओम लिखना अथवा अथ लिखना मंगल सूचक है, और इस विषय पर स्वामी जी ने विस्तार से सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुलास में ओम अथवा अथ लिखना, इस शुद्ध परंपरा को जो लोग छोड़ चुके थे, भूल चुके थे, इसको आगे रखा है। इसीलिए स्वामी जी को पुनः इस विषय को लिखना पड़ा और आज हम भी इस परंपरा को चला रहे हैं। ओम परमपिता।

परमेश्वर का निज नाम है और ईश्वर के जो अन्य नाम है वे सब नाम ईश्वर के गुण व कर्म पर आधारित है। ओम नाम ही सर्वोत्तम है, जैसा कि यजुर्वेद कहता है, ओम क्रतुस्मर के है कर्म करने वाले कर्मशील जीव, तू ओम का स्मरण कर। इस मंत्र को पढ़ते समय समझने वाली बात यह है कि बैठकर सब काम धाम छोड़कर ईश्वर का नाम सुमिरन करना, मंत्रों का जाप करना, ओम ओम का रट लगाना, ऐसा करने का आदेश नहीं है। मंत्र कहता है कि कर्म करो, जीवन में एक्टिव रहो, कर्मशील रहो, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करो और तब प्रभु का नाम सुमिरन करो। ग्रंथ लेखन मतलब एक पुस्तक को लिखना अथवा बोलना, वेद धर्म पंच महायज्ञ ईश्वर आदि विषयों पर लिखना एक बहुत कठिन कार्य होता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर से रक्षा और सहाय की आवश्यकता पड़ती है। श्रोताओं, स्वामी जी एक ऋषि थे और जो ऋषि होते हैं वे आप्त पुरुष होते हैं। आप्त पुरुष जहाँ विद्वान होते हैं वहाँ सत्यवादी होते हैं, वेदोक्त कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं और ईश्वर के परम भक्त भी होते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को लिखने से पहले अपने इष्ट देव सच्चिदानंद स्वराय नमो नमः इस सुंदर और सार्थक शब्द से स्वामी जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में क्या लिखते हैं और उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। स्वामी जी पुस्तक की भूमिका में समझाते हैं और सार रूप में संक्षिप्त में कहते हैं कि मेरा इस ग्रंथ को बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। हमारे ऋषियों का कहना है सत्यमेव जयते, कि सत्य का ही विजय होता है और नानृतम पातकम परम, और अनृत से बड़ा, झूठ से बड़ा और कोई पाप नहीं है। इसीलिए स्वामी जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में पुस्तक लिखने का उद्देश्य सरल शब्दों में लिखते हैं, सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना और जो मिथ्या है उसको मिथ्या कहना। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि सत्य को जानना, सत्य को मानना, जीवन में धारण करना और सत्य बोलना कितना कठिन होता है। जो सत्यवादी होते हैं उन्हीं लोगों को हमारे धर्म ग्रंथों में देव पुरुष कहा गया है, और जो सत्य बोलते हैं और झूठ भी बोलते हैं ऐसे लोगों को मनुष्य कहा गया है, और जिन लोगों के जीवन में केवल झूठ ही झूठ है ऐसे लोगों को दस्यु कहा गया है। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमें मनुष्य से देवत्व की ओर बढ़ना है और देवत्व को प्राप्त करने के लिए असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण करना आवश्यक है। इसीलिए स्वामी जी ने लिखा है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। We should ever be ready to accept the truth and reject falsehood. क्योंकि जब मनुष्य स्तर से ऊपर उठते हैं, देवत्व को प्राप्त करते हैं, तभी मनुष्य जीवन सार्थक और सफल होता है। वेद कितना सुंदर शब्दों में कहता है, देवहितम यदायुः, कि जो आयु है, जो जीवन है, देव बनने से ही जीवन कल्याणमय होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में ही महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने जीवन कल्याण की जो कुंजी है, जो चाबी है, जो विचार है, हमें दे दिए हैं।

इसलिए सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना हम सभी आर्य भाई बहनों का एक परम कर्तव्य है। अपना और दूसरों का कल्याण करना हमारा कर्तव्य है। सत्यार्थ प्रकाश को प्रारंभ करते समय भूमिका को लिखने के बाद स्वामी जी

सूत्र के साथ तैतिरीय उपनिषद के एक वचन को भी जोड़ दिए हैं। तैतिरीय आरण्यक में उपनिषद में ऐसा ही वर्णन है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुलास के प्रारंभ में जो मंत्र दिया गया है वह इस प्रकार है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः।

0: शांति ही। श्रोताओं, आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। इति ओम शांतिश शांतिश शांति ही।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: सुबह के ठीक 6:30 है। नमस्कार, मंगलवार 9 जून 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए एक नया मेकानिज्म लागू करने पर विचार कर रही है। कई महीनों तक चले देशव्यापी परामर्श के बाद विजन 2050 पहल का नागरिक संवाद चरण प्लेंदे पपाए में समाप्त हो गया। 1200 से अधिक लोगों ने देश के भविष्य को लेकर अपने विचार और सुझाव साझा किए। मंत्री ज्योति जितन ने नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। अब इन सुझावों के आधार पर अगले 25 वर्षों के लिए मॉरिशस की विकास कार्य योजना तैयार की जाएगी। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने तिजोरी मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। उन पर कानूनी सीमा से अधिक नकद भुगतान प्राप्त करने से जुड़े 23 आरोप थे। बचाव पक्ष ने मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए जांच में हस्तक्षेप और अत्यधिक देरी का आरोप लगाया था। मॉरिशस में किशोरावस्था में गर्भधारण के मामलों में प्रभावित युवतियों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत परामर्श, घर पर निगरानी और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जाता है। और विदेश में ईरान और इसराइल का कहना है कि वे हमलों को रोकेंगे, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि युद्ध विराम का फिर से उल्लंघन हुआ तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। पेश अब समाचार विस्तार से। 5 महीनों में ऑनलाइन उत्पीड़न के 742 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस वर्ष 1 जनवरी से 1 जून के बीच 1000 से अधिक महिलाएं सोशल मीडिया की शिकार हुई हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण को मजबूत करने पर विचार कर रही है। ICT मंत्रालय जल्द ही प्लेटफॉर्म्स के उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए एक मेकानिज्म स्थापित करने के उद्देश्य से संबंधित पक्षों के साथ परामर्श शुरू करेगा। इस कदम का उद्देश्य ऑनलाइन दुर्व्यवहार से निपटना है, विशेष रूप से गलत सूचनाओं के प्रसार, पहचान की चोरी और साथ ही मान हानिकारक, घृणास्पद या हानिकारक सामग्री के प्रसार को रोकना है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन घोटालों, धोखाधड़ी और अवैध सामग्री के प्रसार का मुकाबला करना भी है, जिसमें नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री भी शामिल है। ICT मंत्री अविनाश राम तोहल को सुनते हैं, जिनसे बात की लुविना सुफी ने, विवरण रजनी भी कर का है।
4: मंत्री अविनाश राम तोहल ने कहा, हमें अपने बच्चों बुजुर्गों की रक्षा करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। साथ ही हमारे साइबर स्पेस को भी सुरक्षित रखना चाहिए ताकि हम निवेशकों को आकर्षित कर सकें। कुछ लोग फेक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, ये सही बात नहीं है। ICT एक्ट

0: के सेक्शन 46 के अंतर्गत ऐसा करना नहीं किया जा सकता, फिर भी बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी ऐसी सरकार नहीं है कि व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित रखें। अभिभावकों को चाइल्ड ऑनलाइन के जरिए कुछ सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो लोग ऑनलाइन मौजूद हैं तो ये वेरीफाइड तरीके से हों। फेसबुक में ये सेवा उपलब्ध है, आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जा सकता है ताकि ज्यादा भरोसा हो जब कोई व्यक्ति ऑनलाइन गतिविधियां कर रहा हो। लेकिन मॉरिशस में बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं, ये नहीं है।
1: जबकि कुछ लोग इसे गोपनीयता के अधिकार के उल्लंघन के जोखिम के रूप में देखते हैं, वहीं मंत्री अविनाश राम तोहर इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनको सुनते हैं।
0: आज हम नोट कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी तब समाप्त होती है जब किसी अन्य व्यक्ति का निजी जीवन शुरू होता है। इस पर कई तरह के एनक्रोचमेंट हुए हैं। दोनों ही अधिकार संविधान के अंतर्गत आते हैं और ये एक बैंसिक एक्ट है जो प्रस्ताव रखे गए हैं। इन दोनों ही अधिकारों का पालन किया जा रहा है और इन दोनों ही अधिकारों के बीच बहुत महीन फासला है। ऐसा कहना कि इससे निजी जीवन में क्षति हो सकती है ऐसा प्रतीत नहीं होता, लेकिन फिर भी देखेंगे कि परामर्श बातचीत के दौरान क्या कहा जाता है।
1: देश भर में कई महीनों के इलाकाई परामर्श के बाद विजन 2050 पहल एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। नागरिक बैठकों का चरण इस सप्ताह पोम्पलमुसर जिले के प्लेंडेपापाय में समाप्त हो गया। देश के भविष्य के लिए उनके विचारों, चिंताओं और आकांक्षाओं को जानने के उद्देश्य से आयोजित इन चर्चाओं में 1200 से अधिक मॉरिशस वासियों ने भाग लिया। वित्तीय सेवा मंत्री ज्योति जीतन ने इस राष्ट्रीय कार्रवाई के दौरान नागरिकों की प्रतिबद्धता और सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया। एकत्रित किए गए इन सुझावों का उपयोग अब एक कार्य योजना तैयार करने के लिए किया जाएगा जो अगले 25 वर्षों में मॉरिशस के विकास को दिशा देने का काम करेगा। मंत्री ज्योति जीतन को सुनते हैं, जिनसे बात की अंजलि सिरतन फुलचंद ने।
2: Nous finons dans les 12 municipalités et district council que nous finons à la rencontre de ban villageois ban citoyens.
0: मंत्री ज्योति जीतन ने कहा, 12 नगरपालिकाओं और जिला परिषदों में गए, गांव वालों और शहर के निवासियों से मुलाकात हुई, साथ में आर्थिक ऑपरेटरों से भी, छोटे मध्यम और बड़े ऑपरेटर भी रहे, कॉलेजों के छात्रों से भी मुलाकात हुई, साथ ही बुजुर्ग लोगों से भी भेंट हुई, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी रहे। अभी तक 1200 से 1500 लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। उनसे यही जानना चाह रहे थे कि वे किस तरह भावी मॉरिशस को देख रहे हैं, इस विजन को साकार करने के लिए वे किस तरह की उम्मीद रखे हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के साथ भी परामर्श बातचीत चली, 21 थीमेटिक कंसल्टेशंस किए गए। शुक्रवार को ये सब पूरा हुआ। अब विजन 2050 की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आशा है कि 2026 के जुलाई महीने में एक पहला मसौदा प्रकाशित कर पाए।
1: इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने तिजोरी मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ अदालती कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया है। वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट द्वारा निर्धारित कानूनी सीमा से अधिक नकद भुगतान प्राप्त करने से जुड़े 23 आरोपों का सामना कर रहे थे। ये मामला फरवरी 2015 में उनके आवास पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त किए गए कई मिलियन रुपये और विदेशी मुद्रा से संबंधित था। बचाव पक्ष ने इसे एक राजनीतिक प्रतिशोध बताया था, साथ ही जांच में हस्तक्षेप और मामले में अत्यधिक देरी के आरोप भी लगाए थे। यासिंदीन महमूद, करुणा लालू।
3: मजिस्ट्रेट राजिया जानू जोनबुकस और अब्दुल रहीम तजुद्दीन की कार्रवाई पर रोक लगाने का फैसला पड़ने के बाद डॉक्टर नवीन राम गुलाम के वकील गोबिंद गंबर ने कहा कि एक विंच हंट यानी कि राजनीतिक प्रताड़ना खत्म हुई है।
4: L'injustice qu'il commet vis-à-vis le Premier ministre et il trouvait un manquement grave qui finit dans l'enquête policière. Comme a dit, c'était une chasse aux sorcières, comment pour mettre lui dans prison et finir lui politiquement. mais on connaît seulement plus là où tout le monde est un bon Dieu.

0: वहीं डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि उन्हें इस फैसले से राहत मिली है।
1: वहाँ से मुझे बुझिया दबो कि वो यह कहता हूँ कि जस्टिस इन प्रीमे कमो मैं रामबन फिक जिया एंड कालवे कि कम आसे दे बी 2014 जो फिक बीडीएम 2015 2016 et je vous dis, je ne passe tout ça là. Même mon premier ministre, vous le respectez là. Vous trouvez, vous venez vous faire assiser dans la boxe. Et je vous dis, ça calvaire là, j'espérais qu'il termine.
0: Magistrats का निर्णय मुख्य रूप से पुलिस जांच में पाई गई गंभीर खामियों पर आधारित हैं। अदालत के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई गिरफ्तारियां अस्थायी आरोप पर जांच से ऐसा लगता है कि किसी भी कीमत पर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। अदालत के तर्क में एक महत्वपूर्ण तत्व जुफ्राई के 2 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दायर शपथ पत्र था। इस शपथ पत्र में तत्कालीन सरकार के कुछ सदस्यों तथा राकेश गुलजोड़ी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे। फैसले के अनुसार ये आरोप फरवरी 2015 में डॉक्टर नवीन राम गुलाम के घर तलाशी के दौरान बरामद लगभग 200 मिलियन रुपये से कथित आपराधिक गतिविधि जोड़ने के प्रयासों से सीधे रूप से जुड़े थे। अदालत ने विशेष रूप से पुलिस की आलोचना की कि उसने इन आरोपों की जांच नहीं की। न्यायाधीशों ने यह भी उल्लेख किया कि पुलिस ने डॉक्टर नवीन राम गुलाम के उस दावे की भी जांच नहीं की जिसमें उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल का एक सदस्य पुलिस जांच का मार्गदर्शन और सलाह दे रहा था। अदालत द्वारा उठाया गया एक अन्य मुद्दा ये था कि जाँच अधिकारियों में से एक ने स्वीकार किया कि उस समय के अटोर्नी जनरल बरामद धनराशि की गिनती के दौरान उपस्थित रहना चाहते थे। हालांकि नवीन राम गुलाम के वकीलों की आपत्ति के बाद उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। मजिस्ट्रेटों के अनुसार इन सभी तथ्यों की गहन जांच होनी चाहिए थी, खासकर इसलिए क्योंकि ये मामला स्पष्ट रूप से राजनीतिक महत्व रखता था। आरोप की प्रकृति पर अदालत ने कहा कि डॉक्टर नवीन राम गुलाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नहीं चलाया जा रहा था बल्कि उन पर नकद भुगतान की सीमा से संबंधित एक अपराध का आरोप था। न्यायाधीशों ने यह भी रेखांकित किया कि इस मुकदमे में शामिल धनराशि को किसी आपराधिक गतिविधि से नहीं जोड़ा गया था। अंततः अदालत ने माना कि इन परिस्थितियों में मुकदमे को जारी रखना ये संदेश देगा कि उद्देश्य साधनों को उचित ठहराता है। मजिस्ट्रेटों ने निष्कर्ष निकाला कि कार्यवाही जारी रखना न्याय और निष्पक्षता की भावना के विरुद्ध होगा। दूसरी ओर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डीपीपी दफ्तर ने पुष्टि की कि वो इस निर्णय के खिलाफ अपील करेगा।
2: और दूसरी ओर डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस का कार्यालय इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगा। डीपीपी सीनियर काउंसिल वकील राशिद अमीन ने इस अदालती फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। राशिद अमीन ने ORM1 से बात करते हुए कहा, हमारा मानना है कि अदालत का ये फैसला कानूनी रूप से गलत है और इसलिए हम पूरे दृढ़ विश्वास के साथ तुरंत अपील में इस फैसले को चुनौती देंगे। एक पवित्र स्थान जो आध्यात्मिकता और ध्यान प्रार्थना का प्रतीक है, गंगा तालाब हर दिन हजारों आगंतुकों का स्वागत करता है, लेकिन हाल ही में हुई कई घटनाओं के बाद अधिकारी अब इस प्रतिष्ठित स्थल पर आने वाले लोगों को बेहतर ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रस्तावित उपायों की समीक्षा करने के अलावा कला और संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में कल सोमवार को इस स्थल का एक दौरा भी किया गया। इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। अनाबेल वुल्बेया, आस्था गुबिन।
3: हर दिन गंगा तालाब हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मॉरिशस के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी इस आध्यात्मिक तीर्थ स्थल की दिव्यता और धार्मिक महत्व को अनुभव करने यहाँ पर आते हैं। लगभग 300 मंदिरों और करीब 50 धार्मिक संगठनों से जुड़ा ये स्थल देश के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है, लेकिन हाल में यहाँ हुई कुछ घटनाओं ने इस पावन स्थल की मर्यादा, पर्यटकों के आचरण और धार्मिक स्थलों के प्रति सम्मान को लेकर चिंताओं को फिर से जन्म दिया है।
4: Maurice n'est un pays multiculturel, nous n'a beaucoup lieu de culte comme ça, on dit pas si ça grand bassin mais il partout dans le pays, côté nous pour besoin un minimum de respect. Et aussi dit pas ce respect touriste besoin respecter ces bandes mauriciens autres même qui besoin respecter que ce soit vestimentaire, tu dis pas besoin manger une veg ici.
3: स्थिति को देखते हुए नेशनल हेरिटेज फंड ने आगंतुकों के लिए दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला तैयार की है जिसका उद्देश्य दर्शन व्यवस्था

0: व्यवस्था को बेहतर बनाना और गंगा तालाब की पवित्रता को अक्षुण बनाए रखना है। इन प्रस्तावों को हाल ही में संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और इनके जल्द लागू होने की संभावना है।
1: Nous en consultation avec tous ban association qui n'a ban lice ici qui se occupe sa place là parmi les autres ban représentation c'est qui besoin d'un trust et nous envie faire un trust qui sérieux nous pour ensemble nous pour donner un coup de main mais trust là pour gérer par PMO.
0: ये प्रस्ताव शीघ्र ही मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाएगा ताकि ये पवित्र तीर्थ स्थल आगे भी अपनी परंपराओं, मूल्यों और श्रद्धा के वातावरण के साथ आगंतुकों का स्वागत करता रहे।
2: अब मॉरिशस में किशोरावस्था में होने वाले गर्भधारण के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए संबंधित किशोरियों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो मनोसामाजिक निगरानी यानी साइकोसोशल फॉलोअप सुनिश्चित की जाती है, जिसके तहत परामर्श, होम विजिट और एक सुरक्षित माहौल तैयार करने के उद्देश्य से मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि युवा मां और उसके बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पोर्टलुई में मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संचालित एक आश्रय केंद्र भी मनोवैज्ञानिक सहायता, ग्रुप थेरापी और साथ ही पढ़ाई को फिर से शुरू करने या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करता है। साल 2025 से यौन शिक्षा को भी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ताकि प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और कम उम्र में गर्भधारण की रोकथाम को मजबूत किया जा सके। मॉरिशस फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की निदेशिका विद्या चरण को सुनते हैं, जिनसे बात की रजनी भी करने।
3: हमने के जन सेंटर है वो जन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री और जेंडर पॉलिटी के जेंडर से सहयोग से चले रहा और वहाँ पे जितना लोग भी आवेला यानी के जो लड़की लोग बा गर्भावस्था के अवस्था में बा या जो के अब्यूज होल बा तो वहाँ पर आवेदन था और यहाँ हमने के जो ये साइकोलॉजिस्ट बा जो प्रोग्राम ऑफिसर है या जो मेडिकल ऑफिसर है उन लोग के सहायता देवलन जा। हर साल में लगभग 400 से ज्यादा लोग आवेलन जा तो उन लोग में अब्यूज हो लोग जा और जन में प्रेगनेंसी भी हो लो जा तो वो लोग भी आवेदन जा। इसके आधारण पे हमी जो सहयोग दे लगा उन लोग के मेडिकल, साइकोलॉजिकल या जन भी सहयोग हमने के हमने के संस्था के ओर से जन भी दे लगा तो वो लोग हमें उन लोग के दे लगा।
2: डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत व्हाइट हाउस ने शगल्स द्वीप समूह के संबंध में कई विकल्पों पर विचार किया है, जिसमें इस द्वीप समूह को सीधे खरीदने की संभावना भी शामिल है। इस कदम का उद्देश्य मॉरिशस को द्वीपों की संप्रभुता हस्तांतरित करने की यूके की योजना को दरकिनार करना है और साथ ही जेगो गार्सिया के रणनीतिक सैन्य अड्डे पर अमरीकी नियंत्रण को बनाए रखना सुनिश्चित करना है। इन जानकारियों के अनुसार चीन और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच वाशिंगटन सबसे पहले हिंद महासागर में इस प्रमुख सैन्य ठिकाने को सुरक्षित करना चाहता है, जिसका उपयोग लंबी दूरी के सैन्य अभियानों के लिए किया जाता है। इसे सीधे खरीदने का विचार अमरीकी उपस्थिति को उन रणनीतिक स्थानों पर बनाए रखने की एक व्यापक इच्छा का हिस्सा है जिन्हें उसकी सुरक्षा और परिचालन क्षमताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इन जानकारियों पर प्रतिक्रिया देते हुए मॉरिशस के अटोर्नी जनरल के कार्यालय ने संकेत दिया है कि सरकार ने द टेलीग्राफ के लेख का संज्ञान लिया है, लेकिन जेगो गार्सिया या शगल्स द्वीप समूह पर किसी अलग समझौते को लेकर अमरीकी प्रशासन के साथ न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और न ही कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क हुआ है। कार्यालय ने अंत में यह भी दोहराया कि मॉरिशस का रुख अपरिवर्तित है, शगल्स द्वीप समूह पर संप्रभुता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक ऐसी जलवायु घटना जिसने विशेषज्ञों की चिंता पहले ही बढ़ा दी है, एल नीनो जो प्रशांत महासागर को पार करने से पहले पेरू के क्षेत्र से उत्पन्न होता है, वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया को अधिक गर्म और शुष्क परिस्थितियों के साथ प्रभावित करने लगा है। लेकिन जल भूविज्ञान सलाहकार प्रेम सैडल के अनुसार इसके प्रभाव सितंबर या अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर तक पहुँच सकते हैं। ये एक ऐसी घटना है जो आगामी तूफानी मौसम को भी प्रभावित कर सकती है। अंजलि रतन फुलचंद, रजनी बीकर।
4: एल नीनो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली

0: एक मौसम संबंधी घटना है। ये हर 2 से 7 वर्षों में मध्य और पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रशांत महासागर के पानी के सामान्य से अधिक गर्म होने पर होती है, जो पूरी दुनिया के मौसम, बारिश और तापमान को बुरी तरह प्रभावित करती है। ये पेरू के पास उत्पन्न होता है और धीरे धीरे प्रशांत महासागर से होते हुए विकसित होता है। कई अंतर्राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल केंद्रों के अनुसार, जिनमें विश्व मेट्रोलॉजिकल संगठन भी शामिल है, प्रशांत में सतह पर तापमान कई महीनों से तीव्र गति से बढ़ रहा है। इस साल से एल नीनो के फिर से प्रकट होने की भी भारी संभावना बढ़ रही है। हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान के कंसल्टेंट प्रेम सादल के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में इनके पहले प्रभाव महसूस होने लगे हैं। उन्होंने कहा, एल नीनो प्रशांत महासागर में अपना बुरा प्रभाव फैलाने वाला होता है। ये पेरू चिली इलाके में पैदा होता है और प्रशांत महासागर से गुजरते हुए पूरे जलवायु को ही बदल देता है। अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित कर रहा है, सूखा पड़ रहा है, जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मॉरिशस में और हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में सितंबर या अक्टूबर महीने में इनके असर दिखने लग सकते हैं।
1: Doucement, doucement, ils vous traversent l'océan Indien. L'ICAP est affecté la région sud-ouest de l'océan Indien.
0: धीरे धीरे ये हिंद महासागर पर से गुजरेगा। हो सकता है कि ये हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से को प्रभावित करे, अतः मस्कारिन्स के टापुओं को सितंबर या अक्टूबर महीने में। सितंबर का महीना मॉरिशस में सूखा ही होता है। अक्टूबर मॉरिशस का सबसे सूखा महीना है। अब हो सकता है कि ये सूखा नवंबर और दिसंबर महीने में भी जारी रहे। प्रेम साडल के अनुसार, चाहे मॉरिशस में इनके परिणामों की सही गंभीरता को अभी मापा नहीं जा सकता है, फिर भी आने वाले महीनों में अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है।
2: विदेश में ईरान और इसराइल का कहना है कि उन्होंने एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं। अप्रैल के संघर्ष विराम के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच गोलीबारी हुई थी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि उनका देश इस समय गोलीबारी रोक रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान और हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उधर फिलीपींस में आए 7.8 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप के कारण सोमवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 35 हो गई, जब दक्षिणी फिलीपींस के एक प्रांत में मुख्य रूप से भूकंप के कारण हुए भूस्खलन की वजह से कम 17 लोगों की जान चली गई। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व की ओर धीरे धीरे एंटीसाइक्लोन दूर होता जा रहा है। पूर्व से पाए जा रहे बादल कभी कभार स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि सुबह के वक्त ऊंचाइयों पर हल्की बरसात होगी, अन्य इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे। दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 21 से 24, अन्य इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस। रात के दौरान कभी कभी बादल घिरे रहेंगे और ऊंचाइयों पर रह कर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 16, अन्य इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:40 पर और आज शाम 5:37 पर सूरज ढल जाएगा।

तो मौसम के हाल के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम फैजन कुन के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय सुबह के 6:53 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। लीजिए शोक समाचार सुनिए। क्लेफो नंबर 3 वाकुआ में 67 साल के 67 years old के

स्त्री किसना लक्ष्मानैन, जो मैन नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज सुबह 9:30 उनके घर क्लेफो नंबर 3 वाकुआ से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30। बेनिकालीन नंबर 2 ग्लेन पार्क वाकुआ में 64 साल की 64 years old की श्रीमती सुमित्रा बाई भाऊ, पैदाइशी नाम लक्सिमो और जो मानती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी कल सुबह 9:30 उनके घर बेनिकालीन नंबर 2 ग्लेन पार्क वाकुआ से उठाकर थ्वामा मेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30। इंग्लैंड में 72 साल के 72 years old के श्री राजेंद्र रुचाया, जो रोई नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले टागोर रोड फोंचूसाक रहते थे। उनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे उनकी पत्नी श्रीमती सबिता रुचाया के घर इंग्लैंड से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30। मॉकेट लेन लाग्रेमेंट सेंट पियर में 68 साल के 68 years old के श्री भीम श्रीमंतु, जो जीवन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके घर मकेटलेन लाग्रेमेंट सेंट पियर से उठाकर सेकोंस्टांस सेंट पियर की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30। रुत बासें में तेरेजा लेन काट्रोबोन में 68 साल के 68 years old के श्री जगदीश बदाई, जो अशोक नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10:30 उनके घर रुत बासें में तेरेजा लेन काट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30। महेश्वर नगरी रोड नवियमील त्रियोली में 46 साल के 46 years old के श्री जनेश सिंह मुसारी, जो अश्विन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर महेश्वर नगरी रोड नवियमील त्रियोली से उठाकर तेमिनुस त्रियोली की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। नंबर 113 एवेन्यू पालमिये व्यूल में बुबासें में 66 साल की 66 years old की कुमारी विद्वंती पुनीत, जो बैरी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी बहन लेका पुनीत सिवंथाना के घर नंबर 113 एवेन्यू पालमिये व्यूल में बुबासें से उठाकर शुबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। अवेन्यू मोंगे इजिडोरोज में 70 साल की 70 years old की श्रीमती बारूनी सिपुल, पैदाइशी नाम फकीर और जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी बेटी प्रिया स्वांबर के घर अवेन्यू मोंगे इजिडोरोज से उठाकर लावोंचुआ की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रामास्वामी लेन लालमाटी में 76 साल के 76 years old के श्री नरसिंहदास रामास्वामी, जो राम नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती चित्रानी रामास्वामी के घर रामास्वामी लेन लालमाटी से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। नंबर 36 अबातुआ रोड खुशबुआ में 58 साल के 58 years old के श्री खेमराज चरितर, जो जानो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर नंबर 36 अबातुआ रोड खुशबुआ से उठाकर सिपाही भोली की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। लेडी क्लब एम के लिए दूसरी जीत।

0: लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स क्वालिफायर्स में कल हमारी लड़कियों ने जिबूती को हराया और सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हुई। फर्स्ट लेग में 2-1 की जीत, रिटर्न लेग में 1-0 की जीत। अगले राउंड में लेडी क्लब एम का सामना गाना से होगा। डोडो गर्ल्स को बधाई। हमारे लड़के क्लब एम अभी इटली में हैं, सिसिलिया की नेशनल टीम को 2-1 से हराकर सिकेलिया कप जीत पाए। इधर वर्ल्ड योगासन कंपटीशन में मॉरिशस से स्वरित जुगन ब्रॉन्ज मेडल जीत पाया। स्वरित जुगन MGSS नुवेल फ्रांस का स्टूडेंट है। स्वरित को हार्दिक बधाई। वर्ल्ड कप से पहले अपने आखिरी फ्रेंडली टेस्ट मैच में फ्रांस ने नॉर्दर्न आयरलैंड को 3-1 से हराया। इसमें बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर माइकल ओलिजर का हैट्रिक रहा। फ्रांस के मैनेजर डिडिये देशांस का आखिरी होम मैच रहा। वर्ल्ड कप के बाद वो फ्रांस का मैनेजर नहीं रहेगा। वर्ल्ड कप में फ्रांस का पहला मैच 16 जून को है सेनेगल के खिलाफ। नेदरलैंड्स की भी जीत हुई 2-1 से उज्बेकिस्तान के खिलाफ। कोडी गाक्पो का डबल दोनों गोल पेनाल्टी पर। आज अनेक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच खेले जाएंगे। इनमें पेरू का मुकाबला स्पेन से होगा, कोंगो चिली, फुटबॉल रिपब्लिक ऑफ रशिया का मुकाबला त्रिनिदाद से और हंगेरी खेलेगा कजाकिस्तान के खिलाफ। ये कुछ मैच हैं। सोमालिया का रेफरी ओमा आतान, जो 2025 का कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल मैंस रेफरी ऑफ द ईयर रहा, वर्ल्ड कप में ऑफिशिएट नहीं कर पाएगा। उसे US वीजा नहीं दिया गया क्योंकि सोमालिया ट्रैवल बैन लिस्ट में है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमालिया को ब्लैक लिस्ट में रखा है। फीफा भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इमिग्रेशन प्रोसेस में वो दखलंदाजी यानी हस्तक्षेप नहीं करता। आर्सेनल का डिफेंडर जोरियन टिम्बा इंजुरी के कारण वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले पाएगा। टिम्बा के स्थान पर मैनेजर रोनाल्ड कोएमन ने गियर बुलिया को बुलाया है। अभी लेप्ज़िग का खिलाड़ी जो सन्डरलैंड पर लोन पर खेलता है। ट्रांसफर न्यूज, नॉटिंघम फॉरेस्ट के इंटरनेशनल खिलाड़ी एलियट एंडरसन को साइन करने के लिए मैनचेस्टर डर्बी चल रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी दोनों रेस में हैं। दाम 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से ज्यादा होगा और टोटनहम हॉटस्पर मैनचेस्टर सिटी से सावीनो को साइन करना चाहता है। रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फ्लोरेंटिनो पेरेज क्लब प्रेसिडेंट बना। अब दी गैलेक्टिकोस का नया मैनेजर फिर से मैनेजर होगा योजे मोरिनो। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। पेरेज ने कहा, हम चुनाव जीत गए, अब टीम को यूरोप का चैंपियन बनाना है। पेरेज ने कहा कि एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी को साइन किया जाएगा। कौन है अभी तक कुछ पता नहीं। क्रिकेट, टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच पहला मैच तीसरे दिन में ही पूरा हो गया। भारतीय टीम के विशाल 564 रनों के जवाब में अफगानिस्तान की टीम फॉलो ऑन पर केवल 112 रन पर ऑल आउट हुई। एक इनिंग्स और 300 रनों की जीत टीम इंडिया के लिए। टेस्ट क्रिकेट में ये इंडिया की सबसे भारी जीत है। डेब्यूटेंट बॉलर मानव सुतर पहली बार इंडिया के लिए खेलते हुए पहले इनिंग्स में 6 विकेट ले पाया। दूसरे इनिंग्स में वाशिंगटन सुंदर 4 विकेट ले पाया। भारतीय टीम की जीत तीसरे दिन में ही। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको बता दें कि फिर से मुलाकात हो रही है 7:40 पर RM2 पर, और भूलिएगा नहीं 8:30 RM2 पर स्पेशल वर्ल्ड कप लेकर आ रहे हैं। तब तक नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और MBC के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नो ट्रावाई नो लावेनिय। एग्रीकल्चर के सेक्टर में आइडियल फ्रेश हार्वेस्ट लिमिटेड जोन शेक्सपियर स्ट्रीट फोंजुसाक में पावल जाला। दूगो ग्रेड 2 फील्ड क्रॉप लेबरर्स खोजता जिनकर दुबारी स्किल एक्सपीरियंस बाटे। अप्रिका सुकारी खातिर इन नंबर पर टेलीफोन करिया 59 05 51 61, ऊ भी मंगल से सामदी लेख फजर के 9 बजे से सांझ के 5:30 लेख। अप्रिका सुकारी के अंतिम तारीख है 20 जून 2026।

मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में सरावना भावा पामेला कंपनी लिमिटेड जो रॉयल रोड गुडलैंड्स में पावल जाला एगो मशीन ऑपरेटर एम्ब्रॉयडरी खोजता जेकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे अपनी कासो करे खातिर टेलीफोनी करिए 59 27 44 16 और वो अपनी कासो करे के अंतिम तारीख 19 जून 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आइडिया कंपनी लिमिटेड जो रॉयल रोड बेलव्यू मॉरल में पावल जाला 6 सुविंग मशीन ऑपरेटर्स खोजता जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे अपनी कासो करे खातिर टेलीफोनी करिए 57 57 49 41 अपनी कासो करे के अंतिम तारीख 12 जून 2026। मैन्युफैक्चरिंग के ही सेक्टर में राम पॉटरी लिमिटेड जोन रोबेर केनेडी स्ट्रीट रेन्यो मोरेल पेटी राफ्रे में पावल जाला 8 स्कल्पचर्स खोजता जिनकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे अपनी कासो करे खातिर टेलीफोनी करिए 57 78 88 84 अपनी कासो करे के अंतिम तारीख 19 जून 2026। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में ब्रायन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जोन रू सेंट्र सोशियल गुडलैंड्स में पावल जाला 100 मेल ग्रेड 2 मासों खोजता जिनकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे अपनी कासो करे खातिर ऑफिस आवर्स माने की फजीर के 8 बजे से सांझ के 4 बजे ले टेलीफोनी करिया इन नंबर पर 2811 अपनी कासो करे के अंतिम तारीख 20 जून 2026। कंस्ट्रक्शन के ही सेक्टर में अलमेल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जन एन 64 रेजिडेंस मंगल कॉम फ्लोरियल में पावल जाला 10 मासों खोजता जिनकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे और 5 कारपेंटर्स जिनकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे अपनी कासों करे खातिर टेलीफोनी करिए 58 31 19 25 नता 52 52 50 68 अपनी कासों करे के अंतिम तारीख 31 जून 2026। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में बैक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जन ओल्ड फ्लैक रोड आद्रियन डेपिने में पावल जाला 10 वेल्डर्स खोजता 30 मासों 10 कारपेंटर्स 10 स्टील फिक्सर्स 10 पेंटर्स 5 लॉरी ड्राइवर्स और 10 एल्यूमिनियम वर्कर्स सबके चाहेला 3 बरिस के एक्सपीरियंस हो के और खोजता 2 गो परचेसिंग क्लर्क जिनकर HSC बाटे और 5 एडमिन क्लर्क जिनकर HSC बाटे अपनी कासो करे खातिर टेलीफोनी करिए 243 56 43 52 55 74 83 CV ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है contact@bax.mu अपनी कासो करे के अंतिम तारीख 20 जून 2026। कंस्ट्रक्शन के ही सेक्टर में काजाबा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जोन एवेन्यू ले मांगिये द माउंट में पावल जाला 10 ग्रेड 2 मासो खोजता जिनकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे अपनी कासो करे खातिर टेलीफोनी करिए 52 51 73 00 अपनी कासो करे के अंतिम तारीख 20 जून 2026। रिटेल ट्रेड के सेक्टर में स्टेटलर मॉरिशस लिमिटेड जोन इंडस्ट्रियल जोन रॉयल रोड पीटो में पावल जाला 5 ऑपरेटर्स खोजता जिनकर फॉर्म 3 बाटे एगो प्लानिंग इंजीनियर जेकर प्रोडक्शन मैनेजमेंट में डिग्री बाटे एगो इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेक्नीशियन जेकर इलेक्ट्रिक और मैकेनिक में डिप्लोमा बाटे एगो मेट्रोलॉजी टेक्नीशियन जेकर HSC बाटे साइंस स्ट्रीम और एगो क्वालिटी इंजीनियर जेकर मैकेनिक नहीं तो मेकाट्रॉनिक में डिग्री बाटे अपनी कासो करे खातिर अपन CV ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है ah.stm@stetler-sapphire.ch न तो जस्ती जानकारी खोजब टेलीफोनी करिए 264 13 48 59 77 62 66 अपनी कासो करे के अंतिम तारीख 12 जून 2026। रेस्टोरेंट के सेक्टर में रेस्टोरेंट ले मांगिये कंपनी लिमिटेड जन रॉयल रोड कॉटेज में पावल जाला 3 मेल कुक खोजता जिनकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे अपनी कासो करे खातिर टेलीफोनी करिए 266 18 97 नता 57 73 69 60 अपनी कासो करे के

अंतिम तारीख है 20 जून 2026। सिक्योरिटी सर्विसेज के सेक्टर में कोडा सिक्योरिटी सर्विसेज जिन ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड सैफिया में पावल जाला 55 सिक्योरिटी गार्ड्स को जता जिन पढ़े लिखे जाने लन साथ में 10 अलार्म टेक्नीशियंस जिनकर सर्टिफिकेट बाटे इलेक्ट्रॉनिक्स में और 10 एसेट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जिनकर HSC संगे जिनकर मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 403-50-10। ये तीनों पोस्ट खातिर चाहेला कांजिदा लोग के एगो सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर खोजबिया करे के। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर में अरुल मिगु मारियामेन तिरुकोविल जोन अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में पावल जाला एगो मेल तमिल प्रीस्ट खोजता जिनकर 10 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 59-25-85-97 न त अपन CV ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दिया bhovanen31pro@gmail.com। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 22 जून 2026। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर में कमेसा कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड 3rd floor फुक्स हाउस बोबों स्ट्रीट पोर्टविस में पावल जाला एगो डायरेक्टर कॉर्पोरेट सर्विसेज खोजता एगो अरबिक ट्रांसलेटर और एगो फ्रेंच ट्रांसलेटर वो खोजता। एप्लीकेशन फॉर्म मिनिस्ट्री के ई वेबसाइट से तोहरा मिल जाए https://foreign.gov.org/pages/vacancies.aspx न त कमेसा सेक्रेटरिया के वेबसाइट https://www.comesa.int/ न त कमेसा कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन के वेबसाइट https://comesa.competition.org/ जोन कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वन अपन एप्लीकेशन फॉर्म से एगो सॉफ्ट कॉपी विदा कर दी है डायरेक्टली अ कमेसा कंपटीशन कंज्यूमर कमीशन ई पता पर recruitment@comesacompetition.org और एगो कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड के वेबसाइट मानी की mofiasa@govmu.org। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 17 जून 2026। जे पब्लिक सेक्टर में काम खोजा था हुआ तो ये भी सुनते चला कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड इनोवेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डिवीजन एगो असिस्टेंट सिस्टम्स एनालिस्ट और सीनियर असिस्टेंट सिस्टम एनालिस्ट खोजता। एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://pse.gov.mu.org और एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 जून 2026। लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के तले लोकल गवर्नमेंट सर्विस एगो अकाउंटेंट कम सीनियर अकाउंटेंट खोजता। एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया http://ljsc.gov.mu.org। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 9 जून 2026। लोकल गवर्नमेंट सर्विस एगो सिविल इंजीनियर खोजता और एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया http://ljsc.gov.mu.org। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 9 जून 2026 और म्यूनिसिपल टाउन काउंसिल वाक्वा फिनिक्स खोजता एगो ट्रेड्समैन असिस्टेंट मानी की पैनल बीटर। एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया http://ljsc.gov.mu.org। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 11 जून 2026। प्राइवेट हाउसहोल्ड के सेक्टर में एगो हाउसहोल्ड एम्प्लॉय के खोज बाटे मानी की सिजिया मिल पॉम्पलेमुसेस और लोवरवेल के रेजियो में। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया EIC गुडलैंड्स के ई नंबर पर 22-59-17 न तो 22-59-18। साथ में खोजल जाता एगो हाउसकीपर रोजबेल के रेजियो में तो टेलीफोनिक करिया EIC

0: appelle au numéro 627-48-33 et au petit Afrique région mais ego house made khojal jata. Ta téléphone karia EIC Goodlands ke e number par 282-59-17 282-59-18. Ibi sunte chala ki MITD danese Knowledge Based Training Center Zone 1 Military Road Fortress me pawal jala Engineering Diploma Courses khatir intake July 2026 karal jata Jasti jankari khojba ta telephone karia 206-18-00 Nata e-website visite karia www.mitd.mu Yaad rakhya ki application kare ke antim tarikh ha 15 June 2026 Ta e-rahal Ministry of Labour and Industrial Relations aur UMVC ke milal julal sahayog se Nous travail, nous l'avenir
1: इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:15 होने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं ये विज्ञप्ति, और ये है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कोगो मॉडल के आसपास के इलाके जिनमें है मौसलमा शापमा हिल के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज मंगलवार 9 जून को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं, और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
3: रेडियो मॉरिशस।
4: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुबह का नजराना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है और इसी के साथ इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:16 माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों के साथ सजाने वाले हैं और जैसे कि ठंड ने बिल्कुल जोर पकड़ लिया है तो इस ठंड के मौसम में मज़ेदार गीतों का तड़का मारेंगे और बिल्कुल गर्माहट होगी, ऊर्जा जमेगी और इस ऊर्जा के साथ दिन भी बहुत ही स्फूर्ति से भरा हुआ रहेगा। यही आशा रखते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं चिंतन के साथ और इसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शांति मोहाबिया। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: देने के लिए दान से बढ़कर कुछ नहीं है, लेने के लिए ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है और त्यागने के लिए अभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है।

0: अब दिल्ली दूर नहीं, सुधा मल्होत्रा की प्यारी सी आवाज गूंज उठी सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंतर्गत। और ये प्यारा सा गीत 1957 के दौर का था भाई। प्यार और सम्मान के बिना रिश्ता ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है के बना ही। कहते हैं ना कि प्यार और सम्मान अगर बना है रिश्तों में तो यही एक सबसे बड़ा खजाना यही होना चाहिए। और इसी के साथ चलिए आज के इस रिश्ते भरे प्यार भरे हमारे आज के इस सफ़र में आप भी हमारे साथ दिल से जुड़ चुके होंगे यही आशा रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में बढ़िया बढ़िया गानों को हम सजा रहे हैं। तो बस साथ दीजिएगा ज़रूर। और इसी के साथ सुबह का नजराना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम बढ़ते हैं झलकियों के साथ।
1: रेडियो मॉरिशस
0: झलकियां। बिल्कुल झलकियों में आपको बताते चले आज दिन भर में कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं आपके लिए रेडियो मॉरिशस पर। इस वक्त सुबह का नजराना कार्यक्रम आप एंजॉय कर रहे हैं। 8 बजे हम भोजपुरी समाचारों के साथ जुड़ेंगे। 8:15 बजे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी दिग्गज सिंगर अभिनेत्री यानी हम कह सकते हैं एक ऐसी कलाकारा के साथ जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को इतने बेहतरीन गाने दिए और बस अभी कुछ ही दिनों पहले उनका देहांत हुआ। जी हाँ, सुमन कल्याणपुर। और आज का ये ट्रिब्यूट भरा कार्यक्रम हम डेडिकेट करेंगे उनको, उनके सभी चाहने वालों के लिए। तो ज़रूर हमारा साथ दीजिएगा, एक श्रद्धांजलि होगी सुमन कल्याणपुर के नाम। और ये कार्यक्रम बिल्कुल आप 8:15 बजे सुनेंगे भोजपुरी समाचारों के बाद। और 8:50 पर किरण जानकी का साथ रहेगा हमारी धरोहर कार्यक्रम में। भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए हम भी आगे बढ़ेंगे और आपको याद दिलाते चले 9 बजे के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे।

ये कार्यक्रम आज की चर्चा और आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी सुमिता सरकार। वैसे आपको ये भी बताते चले कि आज की चर्चा कार्यक्रम जिसका सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस पर होगा, उसका सीधा प्रसारण होगा MBC के तीसरे चैनल पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर आप इसे फॉलो कर पाएंगे। और आज के इस कार्यक्रम में हमारी जो अतिथि होंगी वो होगी मिस निवेदिता गरुड़िया, जो अभ्यास इंस्टीट्यूट से यहाँ पर उपस्थित होंगी और बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर ऑल एज ग्रुप्स, यानी सभी उम्र वालों के लिए किस प्रकार से कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, इस पर आधारित रहेगा आज का कार्यक्रम, तो ज़रूर आप साथ दीजिएगा। 10 बजे के समाचार के बाद पुनः मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा को लेकर, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम में। वैसे हमारा और आपका साथ रहेगा 11 बजे तक। 11 बजे के समाचारों के बाद आप आनंद उठा सकते हैं विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का, जिसकी शुरुआत होगी शम्मे फरोजा कार्यक्रम के साथ, जो होगा उर्दू भाषा में, और पेशकश रहेगी सैयदा सुबाई की। 12 बजे सौंदर्य लहरी, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी वर्षा। 12:30 बजे मराठी गीतों को एंजॉय कर पाएंगे सीताबाई दरमिया की प्रस्तुति में। 1 बजे RSC की प्रस्तुति में रहेगा तमिल भाषा का कार्यक्रम। 1:45 बजे अमिता की प्रस्तुति में गुजराती गीतों का कार्यक्रम रंगारंग। 2 बजे आप सुन पाएंगे डेविड को मैंडरीन कार्यक्रम में। 2:30 बजे आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद जिसे लेकर आएंगी रोशनी, और ये कार्यक्रम चलेगा शाम के 4 बजे तक। 4 बजे से 5 बजे के बीच तमिल भाषा का कार्यक्रम कलाईवानी वीरन की प्रस्तुति में। 5:00 बजे पुराने गीतों को आप सुन पाएंगे भूले बिसरे गीत, जिसकी प्रस्तुतिकरण की जाएगी उषा के द्वारा। 6:00 बजे समाचार बुलेटिन, देश विदेश की खबरें। 6:30 बजे आप सुन पाएंगे हांगकांग का कार्यक्रम, हांगकांग द्वारा मैंडरीन कार्यक्रम। 7:00 बजे पुवना लेकर आएंगी तमिल भाषा का कार्यक्रम। 7:30 बजे कृतिका की प्रस्तुति में रहेगा तेलुगु भाषा का कार्यक्रम। 7:50 पर मराठी गीतों को फिर से आप एंजॉय कर सकते हैं शिरीष रामा के साथ। और 8:10 पर भक्तिमय कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम, जिसकी प्रस्तुतिकरण की जाएगी दिविना के द्वारा। 8:40 पर निसार अख्तर द्वारा महफिले शब उर्दू भाषा के ये कार्यक्रम। और 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत करेंगी उषा कौर। 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच सुनहरे पल का कार्यक्रम, जिसे सजाएंगी नीतूषा। और 12 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक आप सुन पाएंगे ओवरनाइट प्लेलिस्ट, जिसे सजाएंगे हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट। ये थी सूची हमारे रेडियो मॉरिशस के कार्यक्रमों की। वैसे आपको ये भी याद दिला दे, हमारी और आपकी पुनः भेंट होगी 2:00 से 3:00 के बीच उड़ान की कहानी में। और आज की हमारी मेहमान होंगी श्रीमती अनुराधा पूरन, जो मेडिसिनल प्लांट्स में डील करती हैं। तो आज की कहानी होगी अनुराधा जी की कहानी, जरूर सुनिएगा रेडियो मनोरंजन पर 2:00 से 3:00 के बीच। और इसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप फॉलो कर पाएंगे फेसबुक पेज पर भी। तो जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम की सूचियाँ आपको हमने बता दी झलकियों में। तो चलिए पुराने गीतों के इस सफ़र को हम जारी रखते हैं और ले चलते हैं आपको 50s के दौर की ओर। और पुराने गीतों का ये सफ़र हम सजा रहे हैं दिल से बस आपके लिए। प्यारी सी आवाज़ सुरैया की, 1952 के दौर का ये गीत, फिल्म है माशूका।

चलिए, दिल खुश हो रहा है यहाँ पर, दिल गदगद हो रहा है आपका, हमें ये जानकर बेहद बेहद खुशी हो रही है। भाई कहते हैं ना, समय पर समय देने वाला इंसान समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता। और समय क्या तेजी से आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल 7:35 हो भी चुके हैं। हम तो चाहते हैं कि दिन भर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन गाने बजवाएं, पर चलिए इसी के साथ आपके नाम करेंगे ये अगला गीत। ये है फिल्म शरारत से लिया हुआ किशोर कुमार साहब की आवाज़ में, और खुशी के साथ इस गीत को एंजॉय कीजिए। थोड़ी ही देर में आते हैं छोटी सी बात को।

आज कार्यक्रम थोड़ा देर से शुरू हुआ है, इसीलिए और एक गाना आपके लिए चलाते हैं। बहुत ही लाजवाब सा ये गाना है, शमशाद बेगम साहब की आवाज़ में। बहुत ही प्यार भरे गीतों के साथ हम जुड़े हैं आपका दिल खुश करने के लिए। और जब दिल खुश होता है ना, तो भाई कहते हैं ना, समा ही बदल जाता है। लोग अक्सर कहते हैं, जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे दोस्त

ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। चलिए इसी को अप्लाई करते हैं जिंदगी में, और कभी आर कभी पार, बस दोस्तों का यारों का साथ रहे तो जिंदगी आर पार हो जाए। शमशाद बेगम की आवाज में आर पार फिल्म का ये गाना आपके नाम।

चलिए इसी के साथ आज की छोटी सी बात को हम लेकर आए हैं और आज की छोटी सी बात आज के समय को लगकर है। भाई आज सभी ओर आपने देखा है स्वास्थ्य समस्याएं कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसमें से बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं यानी हेल्थ इश्यूज सबसे अधिक हैं, जो इनमें बड़ी समस्याओं को जन्म देती हैं। और आज बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी हेल्थ इश्यूज इन छोटी समस्याओं को समझने और इसे कम करने के लिए, और देखा गया है कि बहुत बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो रिसर्चेस करती हैं, बहुत कार्य करती हैं इन छोटी छोटी समस्याओं के साथ डील करने के लिए, इसे कम करने का कार्य किया जाता है। देखा गया है कि इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, कहते हैं ना कि ये दुनिया बहुत छोटी है सोशल मीडिया के साथ, पर क्या आप जानते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ये कहीं ना कहीं हमारी सेहत को भी खोखला करता जा रहा है। जिस प्रकार से नशीले और मादक द्रव्य की

लत लगती है सोशल मीडिया की भी लत आज बहुत लोगों को लग चुकी है। अगर सुबह उठते ही पहले आपको अपने मोबाइल को चेक करना पड़ रहा है कि किसके मैसेजेस आए हैं, किसने क्या पोस्ट किया है, और रात को अगर नींद ना आए, नींद टूट जाने पर अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो बेशक आपको ये लत लग चुकी है। ये इसी बात की निशानी देता है। और ये हम नहीं कहते, यूके में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की एक स्टडी के दौरान ये रिसर्च में पाया गया। और ये ना केवल हमारी नींद को बुरी तरह से असर करता है, पर हमारे व्यक्तित्व को भी ये बुरी तरह से प्रभावित करता है। और आज सभी ओर फोमो नामक समस्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर एंड्रूज बताते हैं कि फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट आज सभी ओर देखने को मिलता है। चलिए इसी पर आधारित आज की एक छोटी सी कहानी हम लेकर आए हैं। ये कहानी एक परिवार की है। एक दिन एक सिद्ध गुरु अपने शिष्य के आमंत्रण पर उनके घर पहुंचे। वहां पर उनकी भेंट दंपति के साथ हुई और एक मूडी बच्ची जो बिल्कुल कोने में चुपचाप अपना मोबाइल लिए बहुत ही ज़्यादा व्यस्त थी। हालांकि गुरुजी उस बच्ची को बचपन से जानते थे, जब वो बहुत ज़्यादा खिलखिलाती थी, बातें किया करती थी, पर अचानक से जैसे ही वो टीनेजर में पहुंची तो अचानक से बहुत शांत हो गई। तो उनकी माता ने कहा कि गुरुजी कुछ समस्या है उनको अपने दोस्तों के साथ, इसी कारण वे शांत है, इसी कारण वे चुपचाप है, एक कोने में है। जैसे ही उस लड़की ने अपनी माँ को ये कहते हुए सुना, वो गुस्से से झुंझला कर अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करने लगी और कहने लगी, हाँ मेरे सभी दोस्त विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं और अभी मैं उनके साथ होती, उनके पिक्चर्स देख रही हूँ मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर, आप क्या जानती हैं मेरे मन पर क्या बीत रही है। अब ये सुनकर पिता का चेहरा लाल हो गया और महंत गुरुजन ने इस परेशानी को भांप लिया। पिता ने फिर शांति से गुरुजन से कहा कि गुरुजी मैं क्या करूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं इनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, उनकी उच्च शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए, उन्हें विदेश पढ़ाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं और ये बेफिजूल के खर्च मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बट वो केवल यही देखती है जो उसके पास नहीं, जो उसे प्राप्त नहीं होता। वो किसी भी बात से खुश नहीं होती, कृतज्ञ नहीं होती, ग्रेटफुल नहीं होती। तब गुरुजन बोले, यही तो है फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये भावना आज हावी होती जा रही है सभी पर। सोशल मीडिया द्वारा लोग वो चीजें देखकर दुखी हो जाते हैं जो दूसरों के पास है पर खुद के पास नहीं। आज आए दिन लोग ऐसे चित्र, ऐसे पोस्ट, ऐसी पिक्चरें डालते हैं जिसका कोई मतलब नहीं। अब उदाहरण के तौर पर कई सारे लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाने की तस्वीर निकालते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें नसीब नहीं होती। अब ये तस्वीरें देखकर उनके मन में कितनी लालसा उत्पन्न होती होगी, कितना दुख उत्पन्न होता होगा, जो उनके पास नहीं उसको, उसके लिए मन को विचलित करते हैं। अब ऐसे में ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को किस कदर हानि पहुंचाता है, कभी सोचा है? इतना ही नहीं, हमारी पोस्ट को कितने लोग देखते हैं, कितने लाइक करते हैं, कितने रिएक्ट करते हैं और कौन रिएक्ट नहीं करता, इन सभी छोटी छोटी बातों से हम अपने ही भीतर ऐसा सवालों का जंजाल खड़ा कर देते हैं और इसी कारण एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, ना खुश होना, दुख रहना, असंतुष्ट रहना, चिड़चिड़ापन जैसी छोटी छोटी समस्याओं को हम जन्म देते हैं अपने हाथों से। हम ये नहीं कहते कि सोशल मीडिया बुरा है, पर इसका उपयोग संतुलित मात्रा में किया जाए तो ही ये फायदेकारक है। हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल हमें इसकी लत लगा सकता है, जो मादक द्रव्य से भी अधिक खतरा और नुकसान पहुंचाता है हमारे छोटे से दिमाग को।
भाई जिद

जिद्दी बनना है तो जिद्दी बनिए कुछ अच्छा करने के लिए, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में दूसरों की सहायता करने के लिए जिद्दी बनिए। खुद को बर्बाद करना ये कहाँ की समझदारी है? सही कहा ना? चलिए आज की छोटी सी बात आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी, और बस हम गाने का थोड़ा सा मुखड़ा चलाना चाहेंगे आपके लिए। और इसी के साथ, हवाएं बह रही है, अपना ख्याल पूरी तरह रखिएगा। ये गाना हमारे जितने भी नौजवान लोग हैं उन लोगों को लगकर है, पर मूड बहुत ही बढ़िया हो जाता है ये गाना सुनकर भी। और इसी के बाद आते हैं डेडिकेशंस को लेकर। इस गाने को हम पूरा नहीं चला पाएंगे अभी, पर कोशिश करेंगे कि ये गाना हम समाचारों के बाद पूरा सुनाएं आपको।

भाई मूड टकाटक रखिए और इसी के साथ आपके गीतों को आपके नामों को जोड़ने का ये सिलसिला जारी रखते हैं क्योंकि समय बहुत कम रह गया है और बेशक हम 8 बजे जुड़ेंगे भोजपुरी समाचारों के साथ, तो हमारा साथ देते रहिएगा। और इसी के साथ गायत्री जी इस वक्त नुवेलफ्रांस से हमारा साथ दे रही है, बेटा है अजय, मामी कल्याणी मोहन, भाभी है शकुंतला मोताईलोंग से और आपकी प्यारी सखी गीता बाई जो हमेशा अपने परिवार के साथ नुवेलफ्रांस से जुड़ी रहती है, कटबोन से है माला सुमारो जी अपने परिवार के साथ, रोज बेल से नवीन लक्ष्मण जी चित्रा जी के साथ है और बिल्कुल निवेदित और सच्चिदानंद जी हमारे साथ है, मेबर्ग से ललित और धनराज चरण जी प्यारी बेटी स्वीटी के साथ, मोडालबिया से राज और अमृता ओबिलक, हमेशा की तरह न्यू ग्रोव से रमेश और प्रीति जी, गौबुआ से माधुरी जी हमारे साथ है, फ्लोगयाल से श्यामा रघुनंदन जी इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं, गौ गोब से उनके प्यारे भैया जयप्रकाश, भाभी है नम्रता केशव और युधीश, साथ दे रहे हैं विश्वानी जी और वीना राम फलत्याघोष से, वाकवा से शोभा जी भी जुड़ चुकी हैं और प्यारी अनुषा शर्वीना अवनीश अर्नवी और आपकी प्यारी बहन प्रेमिला जयमंगल मोचिदा से आपकी सखी है, राधा बाल गोविंद मोचिदा से ही और पोफिया से प्यारी गीता जी भी हमेशा की तरह साथ दे रही हैं, साथ ही साथ रोहित उनके प्यारे पति, आदित्य आरव, तानिश उनके नाती और प्यारी परी जानवी, 3 बेटे 2 बहुओं के साथ वे भी जुड़ी हुई हैं, मौडाल बया से साथ दे रही हैं अनिता लाल जी, ईटू गोगा नागेश्वर और लाल जी परिवार का नाम जोड़ते हैं, क्योपिप से गीता जी भी कहती हैं सख्त की ठंड शुरू हो चुकी है, बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा, सेंट जूलिया विलाज से नीता खेदनी जी भी जुड़ चुकी है सभी खेदनी परिवार और खासकर बेलवेदिया से उनकी प्यारी सखी स्वादिका के साथ, गौबुआ से शिवरानी जी भी साथ दे रही हैं हमारा और हैं उनके सभी प्यारे बच्चे, सुधीर शर्मा सुनाही जो है काठुबोन से, बहू रोशनी साथ है, शिरीश शिखा और शिवान, बेटे राज और आरती जो है गौबुआ से साथ है, उनके बेटे यश, बहू अंजलि और कबीर साथ दे रही हैं, आपकी प्यारी बेटी काठुबोन से शर्मिला सीचन, आपकी नातिन है उर्वशी रघुब और आपकी प्यारी बहन यूके से कृष्णा कुमारी, गौरी शंकर, लक्ष्मी जी हमेशा की तरह बॉम्बू से साथ जुड़ चुकी हैं अक्षय और आशनी के साथ और यहाँ पर प्रेमिला सी गुलाम भी हमारे साथ जुड़ चुकी है कौदेवास से, आपकी प्यारी बहनें रागिनी और साधना जो है बेचू परिवार से, ग्रीष्मा फ्लैक से साथ दे रही हैं और थ्रियो लेस से अनसुया राम केलावन और आपकी प्यारी गुतनी जानी, हाय हाय जानी आप भी हमेशा हमारा साथ देती हैं।

बहुत प्यार, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और यहाँ पर बिल्कुल माला जगी, आप भी हमारा साथ दे रही है पिजित खितखित से, थैंक यू सो मच। क्लावित से विजय बंधन और उनका पूरा परिवार, पत्नी है रेखा, बहनें चंदनी, बिंदु, कुमारी और आपके सभी दोस्त जो काम से हमारा साथ देते हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। लफलोगा से राजन लक्ष्मण जी भी हमेशा साथ देते हैं, पत्नी माला, बेटियां हैं प्रार्थना और प्रगति, नुवलफोंस से है मानती जी, अनंती, आरती और चिंता, आपकी प्यारी बहनें, बहुत बहुत प्यार आप सभी को। घोंघोप से सुनीता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, विमला, अमृता और वीना जी के साथ। मौडालबिया से इंदिरा लॉटन भी साथ दे रही हैं, सुंदरपाल सिंह और लॉट परिवार का नाम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। रोजबेल से अनीता जी आप भी साथ दे रही हैं, कल आपके प्यारे पोते तनिष का बर्थडे था, तनिष आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, सभी दुलब परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार। सूरज शर्मा सजादा थ्रियोले से जुड़े हुए हैं, हाईलैंड से उषा जी साथ दे रही है कुंज बिहारी और मोहन सिंह परिवार के साथ। उदय जी हमारे साथ है गिव्यजुपुस से, सुधा जी को मॉडल से जुड़ी हुई है, पूजा करते हुए बस गीतों को सुनते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही हैं, थैंक यू सो मच। बस यूं ही खुश रहिए, खुशी ही एक तरह का जो है डोज है, मेडिसिन है जो हमें बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखता है। यहाँ पर पालमा से मीला राम सामी भी साथ जुड़ चुकी है, पालमा से ही शीला बिमाना और शांता आपादू भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और यहाँ पर उषा जी हैं भामस्थान से, आज कहती हैं शोभा सल्तू दीदी भी हमारे साथ है इक्वायो से, जिनका जन्मदिन है, ज़रूर हम उनके लिए प्यारा सा गीत चला देंगे। विश्वानी जी हमारे यहाँ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पुत्र दो आमलेट से, उनके प्यारे भैया प्रेमनाथ, भाभी सुबीता, बहन है इंदिरा, रीटा और शारदा। और स्वस्ति जी है काट्रबोन से, उनकी प्यारी बेटी लिखानी, बेटा है सुमित और सभी का नाम जोड़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में। ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से जुड़ी हुई हैं शीला जी उनके पति साजन के साथ, बहुत बहुत प्यार आप सभी को। और इसी के साथ माँ यहाँ पर है लीलो जी गौबुआ से, खेतों में काम करते हुए हंसती मुस्कुराती चहकती हुई गीता जी, शीला जी और है साथ किशोर जी, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं गीतों को। लावण्य से हमारा साथ दे रही हैं आफेज, आपको बहुत बहुत प्यार आफेज। काटकोको से कमला जी भी साथ जुड़ चुकी हैं रामन और सी पोल परिवार के साथ। और लीला जी हमारे साथ है बुआ शेगी से, न्यू ग्रोव से फातिमा जी आपका भी बहुत प्यारा सा मैसेज हम तक आ पहुंचा है, गुड मॉर्निंग आपको भी कहेंगे। और लिस्पेगोंस त्रिबुशे से हमारे साथ है बारोट परिवार, किरण बारोट, प्यारी पत्नी नम्रता के साथ, बेटा है मयूर, बेटी नियति, दामाद है सर्वेश, लक्ष्य और प्रियांश और सभी बारोट परिवार का नाम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और प्यारे पुराने गीतों का ये सफ़र जारी है और बिल्कुल हम भी आपका साथ देते जा रहे हैं बहुत ही प्यार से, तो बस यूं ही गुनगुनाते रहिए, गीतों का ये सफ़र है। और चलिए इसी के साथ ये प्यारा सा गीत हम छोड़े जा रहे हैं आपके नाम, और बिल्कुल मैं हूं ना का जो गाना है समाचारों के बाद आपको फिर सुनवाएंगे, तो ज़रूर ये गाना है सुबीर सेन की आवाज़ में, गुनगुनाते रहिए 50s के कुछ ऐसे मज़ेदार गाने।

यही गाना हम करेंगे सुदेवी जी के नाम, और जो इस वक्त मौका से साथ दे रही है, आप है हमारे साथ, आपके पति और आपके बच्चों का नाम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। यही गाना हमें जोड़ेगा 8 बजे के समाचारों के साथ। मिलते हैं अभी थोड़ी ही देर में।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजर के 8 बजलबा। नमस्ते, अवजा भोजपुरी में समाचार सुने जा। ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बढ़ल मामला के देखते हुए सरकार सोशल मीडिया उपयोगकर्ता के पहचान सत्यापित करे खातिर एगो नवा मेकानिज्म लागू करे परी विचार करता। कयन महीना ले चलल देशव्यापी परामर्श के बाद विजन 2050 पहल के नागरिक संवाद चरण प्लेंदी पपाई में समाप्त हो गल। 1200 से जस्ती जना देश के भविष्य के लेके अपन विचार और सुझाव साझा करलन। अब इस सुझाव के आधार पर ही आवत 25 बरिस खातिर मॉरिशस की विकास कार्य योजना तैयार करल जाए। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन तिजोरी मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के खिलाफ चल रहल कार्यवाही पर रोक लगा देवल गल बाटे। उन पर कानूनी सीमा से जस्ती नकद भुगतान प्राप्त करे से जुड़ल 30 आरोप रहल। बचाव पक्ष मामला के राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए जांच में हस्तक्षेप और जस्ती देरी के आरोप लगैली रहल। मॉरिशस में किशोरावस्था में गर्भधारण के मामला में प्रभावित युवती और उनकर परिवार के मनोवैज्ञानिक सामाजिक और शैक्षिक सहायता प्रदान करल जाला। एकर तहत परामर्श घर पर निगरानी और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करल जाला। पोटवी स्थिति गो आश्रय केंद्र मनोवैज्ञानिक सहायता समूह चिकित्सा और पढ़ाई दोबारा शुरू करे या व्यावसायिक प्रशिक्षण खातिर सहयोग देवेला। आर दूसर देश के खबर में ईरान और इसराइल बोलेलन कि उलोग हमला के रोकियन से बकीर उलोग चेतावनी देले बाटे कि यदि युद्ध विराम फेनु से उल्लंघन होल तो जवाबी कार्रवाई होई। तदेश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: आवाजा मरने की खबर सुने जा। क्ले फोन नंबर 3 वाकवा में 3 कोरी 7 बरिस के स्वसन से तौके श्री कृष्णा लच मानन जे मैन नाम से जस्ती जानते जाथरलन जा गुजर कल हवन ओकर माटी आज फजर के 9 बज के आधा ओकर घरे क्ले फोन नंबर 3 वाकवा से उठा के फिनिक्स की शमशान भूमि ले जावल जाए। बैनिकाली नंबर 2 ग्रैंड पार्क वाकवा में 3 कोरी 4 बरिस के स्वसन कथों के श्रीमती सुमित्रा बाई भाऊ पैदाइशी नाम लक्सिमो आरजे मानती नाम से जस्ती जानते जात्रलन जाओ गुजर गल हवन ओकर माटी काल फजर के 9 बज के आधा ओकर घरे बैनिकाली नंबर 2 ग्लैन पार्क वाकवा से उठा के थवा मामल के शमशान भूमि ले जावल जाए। इंग्लैंड में 3 कोरी 12 बरिस के सुसन दूजों के श्री राजेंद्र रुचाया जे रोई नाम से जस्ती जानती जातरलन जा उ गुजर गल हवन उ आगे तागो रोड फोन जिसाक रहलत रलन जा ओकर माटी काल दिन के 1 बज के आधा ओकर पत्नी श्रीमती सबिता रुचाया के घरे इंग्लैंड से उठा के इंग्लैंड के शमशान भूमि दे जावल जाए। मौकेट लेन लागरे मौ सैंपिया में 3 कोरी 8 बरिस के सोसों चुईतों के श्री भीम श्रीमंतु जे जीवन नाम से जस्ती जानते जात रलन जाओ गुजर कल हवन ओकर माटी आज दिन के 1 बज के आधा ओकर घरे मौकेट लेन लागरे मौ सैंपिया से उठा के सैकोस्तों सैंपिया के शमशान भूमि दे जावल जाए। रुदबासें में तेरेजा लेन कठोबोन में 3 कोरी 8 बरिस के सोसों चुईतों के श्री जगदीश बादाई जे अशोक नाम से जस्ती जानते जात रलन जाओ गुजर कल हवन ओकर माटी आज फजर के 10 बज के आधा ओकर घरे रुतबासे में तेगजा लेन कठोबोन से उठा के गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए। महेश्वर नगरी रोड नुविया मिल्ट्रियोले

में दुकोरी छ बरिस के काहन सीजों के श्री जनेश सिंह मुसारी जे अश्विन नाम से जस्ते जानते जात्र रलंजाओ गुजर कल हवन कर माटी आज दिन के 2 बजे उकर घरे महेश्वर नगरी रोड नव्य मिल थ्री से उठा के त्या मिनिस्ट्री योले के शमशान भूमि ले चावल जाए। नंबर 113 एवेन्यू पालमिये विल में बोबासें में तीन कोरी छ बरिस के 86 के कुमारी विद्वंती पुनीत जे बैरी नाम से जस्ती जानते चातरण जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 2 बजे उकर बहन श्रीमती लेका पुनीत सिवंताना के घरे नंबर 113 एवेन्यू पालमिये विल में बोबासें से उठा के शिवल के शमशान भूमि ले चावल जाए। Avenue Mangue Isidore-Rose में 3 कोरी 10 बरिस के 70 के श्रीमती बारुमनी सिपुल पैदाशी नाम फकीर आज अनीता नाम से जस्ते जानते जाथरलन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 2 बजे उकर बेटी प्रिया स्वाम्बर के घरे एवेन्यू मोंगे इसिडोरोस से उठा के लावा चुया के शमशान भूमि ले चावल जाए। रामास्वामी लेन लालमाटी में 3 कोरी 16 बरिस के 76 के श्री नरसिंह दास रामास्वामी जय राम नाम से जस्ते जानते जातरलन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 3 बजे उकर पत्नी श्रीमती चित्रानी रामास्वामी के घरे रामास्वामी लेन लालमाटी से उठा के मी जिन कौन मास के शमशान भूमि ले चावल जाए। नंबर 36 अबातो रोड खुशबुआ में 2 कोरी 18 बरिस के 57 के श्री खेमराज चरितर जे जानो नाम से जस्ती जानते चातरलंजा उ गुजर कल हवन उकर माटी काल फजिर के 10 बजे उकर घरे नंबर 36 अबातो रोड खुशबुआ से उठा के सिपाही भोईले की शमशान भूमि ले चावल जाए। शोक में डूबल इस सब परिवार लोग के प्रति हमने संवेदना प्रकट करे थे। जा

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस।

0: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
1: इस समय स्टूडियो की घड़ी में 8:12 हो चुके हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। चलिए आगे बढ़ने से पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई ये विज्ञप्ति पर नज़र डालते चलिए। ये विज्ञप्ति है कोको मॉडल के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, जिनमें है मौसलमा शापमा हिल के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज मंगलवार को 9 जून को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 3 के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
3: रेडियो मॉरिशस।
4: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
5: रेडियो मॉरिशस पर, रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ, आज की मुलाकात हम आपकी करवाएंगे सुमन कल्याणपुर के साथ। भारत की सबसे सुप्रसिद्ध, सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिकाओं में से एक। 31 मई 2026 को 89 ईयर्स की उम्र पर मुंबई में उनका निधन हुआ और आज का ये कार्यक्रम हम एक श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करते हैं सुमन कल्याणपुर के नाम। सुमन कल्याणपुर ने हिंदी, मराठी, असमीय, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बंगाली, उड़िया और

0: पंजाबी के अलावा अन्य कई भाषाओं में भी फिल्मों में उन्होंने गाने रिकॉर्ड किए हैं। और इतना ही नहीं, सुमन कल्याणपुर को मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश, गीता दत्त, आशा भोसले, हेमंत कुमार, तलत महमूद, किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और शमशाद बेगम के साथ हिंदी फिल्म गीतों में उनको सुनहरे युग के लोकप्रिय गायिकाओं में से एक माना जाता है। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ उनके गानों को हम आज के इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और सुमन जी ने कुल 857 हिंदी गाने गाए हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। 28 जनवरी 1937 समय उनका जन्म हुआ था ढाका में, और बिल्कुल 31 मई को 2026 में 26 के दिन उनका देहांत हुआ मुंबई में। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को गीतों से भी सजाएंगे। जी हाँ, आपको बताते चले, सुमन कल्याणपुर का जन्म जो है वो 28 जनवरी 1937 यानी 28 जनवरी 1937 को तब पूर्वी बंगाल बांग्लादेश के शहर ढाका में उनका जन्म हुआ था। और सुमन कल्याणपुर के जो पिता थे वो शंकर राव हेमड़ी, जो कर्नाटक के मैंगलोर के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार को बिलोंग करते थे, और हेमड़ी उडुपी जिले कर्नाटक के कुंडापुर तालुक में एक गांव है। और उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक शीर्ष पद का कार्य किया था और बहुत लंबे समय तक ढाका में वे तैनात थे। पिता और माता थी उनकी सीता हेमड़ी, और उनके अलावा परिवार में 5 बेटियां और 1 बेटा, जिसमें सुमन अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। 1943 में उनका परिवार मुंबई आ गया, जहां उन्होंने अपना संगीत प्रशिक्षण प्राप्त किया
1: एक कलाकार के साथ।
0: सुमन की हमेशा से चित्रकला और संगीत में रुचि रही। मुंबई के प्रसिद्ध सेंट कोलाबा हाई स्कूल में उनकी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने चित्रकला में आगे की पढ़ाई के लिए प्रतिष्ठित सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। और इसके साथ ही उन्होंने पुणे के प्रभात फिल्म्स के संगीत निर्देशक और एक करीबी पारिवारिक मित्र पंडित केशवराव भोले से शास्त्रीय गायन उन्होंने सीखा। सुमन के अनुसार शुरू में गायन सिर्फ उनका शौक था, लेकिन धीरे धीरे संगीत में उनकी रुचि बढ़ती गई और उन्होंने उस्ताद खान, अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग से इस क्षेत्र में उन्होंने और आगे पढ़ा और आगे सीखा। और सुमन की छोटी बहन श्यामा हेमड़ी भी एक गायक का कलाकार हैं।
1: एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। रेडियो मॉरिशस पर।
0: और जब उनके कला की बात हम करते हैं, करियर की बात हम करते हैं, तो घर में हर किसी का कला और संगीत के प्रति झुकाव था, लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शनों में वे सख्त वर्जित था उस जमाने में। फिर भी 1952 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाने की पेशकश के लिए नहीं, पर उन्होंने एक पहल तो ज़रूर की। और ये कहती हैं कि
1: मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
0: सुमन कल्याणपुर के अनुसार वे लिखती हैं कि ये मेरा पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था, जिसके बाद मुझे वर्ष 1953 में रिलीज हुई मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी के लिए गाने का मौका मिला। और उस समय शेख मुख्तार फिल्म मंगू बना रहे थे, जिसके संगीतकार मोहम्मद शफी थे, और शेख मुख्तार उनके गीतों को बहुत ही सुनकर प्रभावित हुए और उन्होंने मंगू फिल्म के लिए 3 गाने भी रिकॉर्ड करवाए। हालांकि कुछ अज्ञात कारणों के कारण बाद में ओपी नैयर ने मोहम्मद शफी की जगह ली और मेरे यानी सुमन कल्याणपुर के 3 जो गाने हैं वो केवल एक लोरी,
1: एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर,
0: कोई पुकारे धीरे से तुझको, ये बरकरार रखा गया। और इस प्रकार 1954 में रिलीज हुई मंगू के साथ हिंदी सिनेमा में उन्होंने प्रवेश किया, और ये खुद सुमन कल्याणपुर ने अपने इंटरव्यू में बताया था।
1: एक छोटी सी मुलाकात।
0: वैसे फिल्म मंगू के तुरंत बाद सुमन ने फिल्म दरवाजा, जी हाँ हिंदी फिल्म दरवाजा, जो 1954 में आई थी और उसके लिए संगीतकार शौक

0: कतली हाशमी।
1: छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ
0: संगीत निर्देशन में 5 गाने गाए जो कि इस्मत चुगताई द्वारा निर्मित और शाहिद लतीफ द्वारा निर्देशित हो चुके थे। चूंकि दरवाजा पहली रिलीज हुई थी इसीलिए आमतौर पर इसे सुमन कल्याणपुर की पहली हिंदी फिल्म माना जाता है और उसी वर्ष में यानी 1954 में सुमन ने फिल्म आर पार के लिए मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त के साथ ओपी नैयर के हिट कलाकारों की टुकड़ी के गीत मोहब्बत कर लो जी कर लो और ये वाला जो गाना है वो गाया था। और सुमन के अनुसार उनके पास गाने के लिए एक एकल पंक्ति थी यानी केवल एक लाइन उस गाने में उन्होंने गाया था और उनकी सेवाओं का उपयोग इस गीत में एक कोरस गायिका के रूप में किया गया था और ये एकमात्र ऐसा गीत साबित हुआ जिसे उन्होंने ओपी नैयर के लिए गाया था
1: कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
0: चलिए जब दरवाजा की बात की है तो आपको दरवाजा का एक बहुत ही लाजवाब गाना सुनाते हैं और ये गीत बिल्कुल तलत महमूद और सुमन हेमड़ी यानी उस समय उन्होंने शादी नहीं की थी तो उन्होंने अपने मेडन नेम पर इस गीत को गाया था। तो आइए इस गीत को हम सुनते हैं।

जी हाँ, सुमन कल्याणपुर का ये था पहला गाना जो उन्होंने फिल्म दरवाज़ा के लिए गाया था तलत महमूद के साथ, और ये एक युगल गीत था। तलत महमूद ने कल्याणपुर को एक संगीत समारोह में गाते हुए सुना था और उनके गायन से वे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और एक नई गायिका के लिए यह लंबी छलांग थी जिसने सुमन को गायन के क्षेत्र में स्थापित करने में काफ़ी मदद की। और जब तलत उनके साथ इस युगल गीत गाने के लिए सहमत हो गए, जिससे फिल्म उद्योग के जहन में उनका नाम बैठ गया और सुमन को नोटिस किया गया। बिल्कुल यही गीत था जिसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाना गाना शुरू किया। और जैसे हमने बताया आपको, आर या पार फिल्म 1954 में जो आई थी, और इस फिल्म में जो गाना था मोहब्बत कर लो,

0: जी भर लो, ये गीत भी उन्होंने केवल एक ही लाइन गाई थी। ओपी नैयर साहब का हो सकता है, कह सकते हैं कि एक ट्रायल रहा हो
1: के साथ,
0: क्योंकि एक नई कलाकारा या एक नई सिंगर के साथ काम करने का रिस्क उठाना कोई छोटी बात नहीं। पर चलिए, मोहम्मद रफ़ी साहब और गीता दत्त की आवाज़ में कहीं ना कहीं अगर आपको कोई झलक सुनाई दे तो शायद वही है आवाज़ सुमन कल्याणपुर की।
2: मोहब्बत

वही ऐसे लाजवाब गीतों में कहीं ना कहीं सुवन कल्याणपुर को गवाया गया था। बस एक लाइन, अब ये कहना मुश्किल है कि कौन सी लाइन उन्होंने गाई थी, पर चलिए सूत्रों के अनुसार हमें ये भी पता चला कि इस गाने में ही कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ छुपी हुई नजर आती है। और उन्होंने फिल्म मंगू 1954 में कोई पुकारे धीरे से तुझे ये गाना उन्होंने गाया था, और कल्याणपुर ने उसके बाद 1960 में फिल्म आई मियाँ बीवी राजी, और इस फिल्म में भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। चलिए इस फिल्म के एक आपको, इस गीत की एक झलक आपको सुनवाते हैं।

जी हाँ, ये है गाना मियां बीवी राजी। 1960 के दौर में आई थी ये मूवी और उसके तुरंत बाद उन्होंने की फिल्म श्रीमान सत्यवादी। जी हाँ, इस फिल्म में भी उन्होंने मन्ना डे के साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही मशहूर सा गाना गाया था जो लोगों को बेहद पसंद आता है। चलिए इस गीत की भी झलक आपको सुनाते हैं।

0: बिल्कुल, सुमन कल्याणपुर जी की जो आवाज है वो गायिका लता मंगेशकर के साथ काफी मिलती जुलती थी। उनके कई गीत लता जी की शैली से अप्रभेद, यानी उनकी जो तरह, उनका जो शैली था, गीत गाने का अंदाज था, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा समानता रखता था। और उनकी आवाज़ और लता जी की आवाज़ में बहुत लोग पहचान नहीं पाते थे कि ये लता जी की आवाज़ है या सुमन जी की आवाज़। और इस समानता के बारे में उन्होंने एक बार उत्तर भी दिया था कि मैं लता से काफ़ी प्रभावित हूँ, यानी वे इंस्पायर्ड हैं लता जी से, और अपने कॉलेज के दिनों में मैं लता के गाने गाया करती थी, ऐसा सुमन जी ने कहा था। मेरी आवाज़ नाजुक और पतली थी और भाई मैं क्या कर सकती थी, रेडियो सिलोन से भी उन्होंने रिले किया था। और वे लिखती है कि गीत नामों की कभी घोषणा नहीं की गई थी, यहाँ तक अभिलेखों ने भी कभी कभी गलत नाम दिया था, और जो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भ्रमित हो गए थे इनकी आवाज़ सुनकर। और 1950s और 1960s के दशक में इस अवधि को हिंदी फिल्म संगीत के सुवर्ण युग के रूप में संदर्भित किया गया था, और इसी दौरान उनको कह सकते हैं ना कि गोल्डन चांस मिला। और इस समय शमशाद बेगम, गीता दत्त, लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले पर महिला पार्श्व गायन का बोलबाला था उस समय में। और इसी अवधि के दौरान लता ने रॉयल्टी के मुद्दों पर रफ़ी के साथ गाने गाए थे और गाने से इनकार कर दिया था, और इन गीतों को रफ़ी के साथ कल्याणपुर का पेयरिंग किया गया था रिकॉर्ड द्वारा। और उन्होंने इस अवधि में मोहम्मद रफ़ी के साथ 140 से भी अधिक डुएट गाने गाए, और इनमें कई गाने आज भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय और बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाले गाने
1: एक कलाकार के साथ।
0: जी हाँ, 1960s के दौर में आई थी श्रीमान सत्यवादी फिल्म, और उसके बाद आई फिल्म बात एक रात की 1962 में, दिल एक मंदिर 1963 में, दिल ही तो है 1963 में ही, साथ ही साथ 1964 में काफ़ी सारी उनकी फिल्म आई जैसे शगुन, जहारा और सांझ और सवेरा। 1967 में नूरजहां साथ ही आई 1968 में, पाकीज़ा 1971 में। उन्होंने संगीतकार शंकर जयकिशन, रोशन, मदन मोहन, एस डी बर्मन, एन दत्ता, हेमंत कुमार, चित्रगुप्त, नौशाद, एस एन त्रिपाठी, गुलाम मोहम्मद, कल्याण जी, आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ बहुत सारे गाने गाए। उन्होंने 740 यानी 740 से भी अधिक फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, और उन्होंने 1960 के दशक में मोहम्मद रफ़ी के साथ 140 युगल गीत गाए।
1: साथ रेडियो मॉरिशस पर
0: मराठी फिल्म पसंद आहे मुलगी के लिए सुमन कल्याणपुर का पहला सबसे हिट गाना ये रहा था,
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के,
0: भातुकली का खल मंडिले
1: मॉरिशस पर,
0: और इसके संगीतकार वसंत प्रभु रहे थे। और इसके बाद उन्होंने 20 साल पीछे मुड़कर नहीं देखा, और बहुत सारी ऐसी फिल्मों में उन्होंने यादगार एक अपना करियर सेट किया, और लेकिन मराठी फिल्मों के बाहर भी उनकी हिट विरासत है। और मराठी फिल्मों में उन्होंने लगभग 50 से भी अधिक बहुत सारे ऐसे भावनात्मक भावजीत और भक्ति गीत उन्होंने शामिल किए थे। और उसी दरमियान
1: एक छोटी सी मुलाकात,
0: उन्होंने बहुत ही लाजवाब अपनी रॉयल्टी कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा को दी। और चलिए इसी के साथ 1962 के दौर की फिल्म बात एक रात की, इस फिल्म का ये गाना जो आपको बेशक याद होगा, इस गीत की झलक आपको सुनाते हैं।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी मुलाकात में सुमन कल्याणपुर जी पर। और बिल्कुल उनका देहांत हुआ था, हमने जैसे बताया कि 31 मई को उनका देहांत हुआ और 89 ईयर्स की आयु में उनका निधन हुआ मुंबई में ही। साथ ही साथ आज की ये छोटी सी मुलाकात में हम यही कहेंगे कि बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको बताते चले कि उन्होंने जीवन में बहुत सारे ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी जीते हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय गायन के लिए 3 बार प्रतिष्ठित सुर श्रृंगार सम्मान उन्होंने जीता है और साथ ही साथ उन्होंने जीता महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार और इतना ही नहीं गा दी माँ प्रतिष्ठान द्वारा गा दी माँ अवार्ड भी उनको प्राप्त हुआ है। और उनके बहुत सारे गीतों के लिए आज भी वे जानी जाती हैं। और जैसे हमने बताया कि उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मिलती जुलती है लता जी से कि कई बार हम खुद जो लिसनर्स हैं जो गानों को इतना गहराई से इतना बारीकी से समझते हैं वे खुद इस बात को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि कौन सा गाना लता जी की आवाज़ में है और कौन सा गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में है। और चलिए इसी के साथ फिल्म दिल ही तो है ये भी इन्हीं का गाना है सुमन जी की आवाज़ में और इस गीत को भी एंजॉय करते हैं। और आज का ये कार्यक्रम एक श्रद्धांजलि के रूप में हम अर्पित कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर को, जिनका बस अभी कुछ दिनों पहले निधन हुआ। फिल्म है दिल ही तो है।

भाई जो चले जाते हैं कहते हैं ना, बस पीछे रह जाती हैं उनकी यादें, उनके किए हुए काम। और सुमन कल्याणपुर को भी हम दिलो जान से याद करेंगे, चाहेंगे, और उनके गीतों को बस यूं ही दिल से लगाए हुए, दिल से बस उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इसी के साथ आज का ये आखिरी गाना जिसमें उन्होंने गाया था ये गीत मुकेश साहब के साथ, फिल्म साथी 1968 के दौर का ये गीत। और इसी के साथ आज का ये सेगमेंट बस यहीं पूरा हो जाएगा। आशा करते हैं आज के गीतों का सिलेक्शन आपको पसंद आया होगा। और बिल्कुल यहाँ पर हमारे एक प्यारी सी श्रोता है जिन्होंने बस दिल एक मंदिर का गाना सुनकर वे रो पड़ी हैं। ऐसे किसी को रुलाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, पर आपने गीतों को पसंद किया, आपके दिल को ये गाने छू चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।

तो चलिए इसी के साथ आज के सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। सुबह का नजराना कार्यक्रम का आखिरी सेगमेंट हम आ पहुंचे हैं 8:50 की ओर, यानी किरण जानकी का साथ रहेगा हमारी धरोहर कार्यक्रम में। और बेशक उसके बाद एक भोजपुरी गीत का भी आनंद उठाएंगे।

0: 18 and 19 kilowatts. This is Radio Mauritius.
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। अभी और एक दिन में हमने पर्यावरण दिवस मनावल जा, जोन हर 5 जून के दुनिया भर में मनावल जाला। और संयुक्त राष्ट्र संघ इकोसिस्टम के फिर से संभाले के जो दशक घोषित कर ले रहा उ ई दशक हा। और दिक्कत है जा कि हमने के इकोसिस्टम के संरक्षण आजकल सबसे बड़ा ज्वलंत विषय बन गल बा। इकोसिस्टम के पुनर्स्थापना कितने रूप में सकल जाए करे, पेड़ पौधा रोपे के, शहर के जस्ती हरा भरा बनावे के, अपन बाग बगीचा के सवारे के, नदी और ओकर किनारा के साफ सुथरा रखे के, संक्षेप में हमने के चाही प्रकृति के जस्ती निकट जस्ती भेरी आवे के, प्रकृति से शांतिपूर्ण संबंध रखे के, और हर हाल में ये पृथ्वी के इकोसिस्टम पर जो जुल्म होता ओकर बचावे के, ओकर से ओकर संरक्षण करे के, ओकर सुरक्षा करे के। और कैसे ई भरपाई करल जाए, कैसे ई स्थिति के सुधारल जाए, कैसे प्लास्टिक प्रदूषण के घटावल जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ हर बरिस ई बात पर जोर देवे आवता, आगा कर ले आवता कि एगो स्वस्थ इकोसिस्टम से ही हमने सकब जा एगो स्वस्थ आजीविका कमावे। क्लाइमेट चेंज, मौसम परिवर्तन के सामना करे के और बायोडायवर्सिटी के तबाह होइला से बचावे के आज के सबसे बड़ा प्राथमिकता है। अब सोचत हुई बाकी इकोसिस्टम आखिर है का, जोन संबंध पेड़ पौधा वनस्पति और जीव जंतु जानवर तितली पक्षी पानी के है, इंसान के बीच जोन संबंध ये सब कुछ से बा, जोन कड़ी जोन चेन बा सब कोई के बीच उही इकोसिस्टम कहाला। चारों ओर के प्रकृति, खेत, शहर के बीच जो संबंध बा इंसान के साथ और कोनो भी जीव जंतु के साथ उही कहाला इकोसिस्टम। और बहुत लंबा समय तक इंसान पृथ्वी के इकोसिस्टम के बर्बाद कर ले आलबा। ई जोन कड़ी बा उ टूट ले आवता, ई जोन चेन बा जंगल की तबाही, एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जनावर लोग के घर बर्बाद होता, नदी नाला के ऊपरे निर्माण कार्य करल जाता और प्रदूषण करल जाता, ई एकर नतीजा होता कि मौसम परिवर्तन भारी तबाही मचावता। देखत हुई बा कि अचानक अब फ्लैश फ्लड हो जाला, कहूँ बहुत ज़्यादा गर्मी कैनिक्यूल होता लू चलता, तक कहूँ बहुत ज़्यादा सर्दी तापमान इतना ले घट जाता कि हुआ के लोग के परेशानी होता, कहूँ आग लग जाता तो कहूँ जहाँ बर्फ नहीं गिरत रहा हुआ बर्फ गिरता। हमने के पृथ्वी, हमने के पर्यावरण, हमने के सबसे बड़ा धरोहर है, हमने के

0: जिम्मेदारी बनेला कि जैसे हमने के ई पृथ्वी साफ सुथरा मिलल रहल, जितना शुद्ध हवा हमने के मिलल रहल, ओके और शुद्धता और सफाई के साथ हमें आवे होला पीढ़ी के सौंप के जाप सा। कोनो वस्तु खराब होला तो सकब सा वो वस्तु के रिप्लेस कर देवे दूसरा वस्तु के साथ। लेकिन हमने के ई जोन ग्रह बा, जोन पृथ्वी प्लैनेट बा, ई एक ही गो बा। जे ई खराब हो जाए तो एक नहीं सकबा रिप्लेस करे। ई खातिर दिक्कत है जा कि चाहे वो कोई भी समस्या हो, ग्लोबल पैंडेमिक हो, कोनो भी वायरस हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, पर्यावरण के बचावे पर कदम चाहिए सबसे आगे बढ़ावे के। पर्यावरण के सुरक्षा आज के सबसे ज्वलंत मुद्दा है और ई पर चर्चा जारी रखब जा। अपन बाग बगीचा पर ध्यान दा, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंका, कंपोस्ट बनावा, ऑर्गेनिक कूड़ा से एनर्जी के कमती इस्तेमाल करा। काल ई विषय के फिर आगे बढ़ावा जा। धन्यवाद, नमस्ते।
1: तो चला इसी के साथ किरण जानकी जी के बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा। पर्यावरण पर हमने के एगो ऐसा संदेश, एगो ऐसा जानकारी दिलन और आशा करब जा कि सब कोई अपन जिम्मेदारी पूरा तरह से निभाइन जा। तो चला विश्वजीत महेश के आवाज़ में रखल आज के है आखिरी गीत के साथ जुड़ब जा और आप सब कोई के याद दिलावत हैं कि आज की चर्चा कार्यक्रम तो सुने सकबा अभी 9 बजे के समाचारों के बाद और सुमिता सरकार आप सब कोई के साथ दियन जा। और आज के जो कार्यक्रम रही सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रभावी संचार हाई टॉपिक पर आधारित रही और हाई जो कार्यक्रम के हमारे अतिथि रही मिस निवेदिता गरुड़िया जो अभ्यास संस्था के सदस्य हवन। तो जरूर साथ दिया जा 9 बजे से 10 बजे के बीच है ये कार्यक्रम के सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस MBC के तीसरा चैनल और फेसबुक पेज पर तू फॉलो करे सकबा। तो एक कर संगे भेट आपसा 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम में। तबले सुनते रहा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मंगलवार 9 मई घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 9 बज रहे हैं।

0: समाचारों को लेकर विधिमा आ चुकी है। विधिमा आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सुमी, सभी को नमस्कार। 5 महीनों में ऑनलाइन उत्पीड़न के 742 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस वर्ष 1 जनवरी से 1 जून के बीच 1000 से अधिक महिलाएं सोशल मीडिया की शिकार हुई हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण को मजबूत करने पर विचार कर रही है। देश भर में कई महीनों के इलाकाई परामर्श के बाद विजन 2050 पहल एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। नागरिक बैठकों का चरण इस सप्ताह पंपलमुस जिले के प्लेंदेपापाई में समाप्त हो गया। देश के भविष्य के लिए उनके विचारों, चिंताओं और आकांक्षाओं को जानने के उद्देश्य से आयोजित इन चर्चाओं में 1200 से अधिक मॉरिशसवासियों ने भाग लिया। वित्तीय सेवा मंत्री ज्योति जितन ने इस राष्ट्रीय कार्रवाई के दौरान नागरिकों की प्रतिबद्धता और सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया। एकत्रित किए इन सुझावों का उपयोग अब एक कार्य योजना तैयार करने के लिए किया जाएगा, जो अगले 25 वर्षों में मॉरिशस के विकास को दिशा देने का काम करेगा। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने तिजोरी मामले में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम के खिलाफ अदालती कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया है। वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट द्वारा निर्धारित कानूनी सीमा से अधिक नकद भुगतान प्राप्त करने से जुड़े 23 आरोपों का सामना कर रहे थे। ये मामला फरवरी 2015 में उनके आवास पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त किए गए कई मिलियन रुपये और विदेशी मुद्रा से संबंधित था। बचाव पक्ष ने इसे एक राजनीतिक प्रतिशोध बताया था। और विदेश में रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों पर यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों के अभियान ने मॉस्को की आपूर्ति लाइनों को बाधित कर दिया है और रूस की तेल रिफाइनरियों पर लंबी दूरी के हमलों से पहले से ही पैदा हुए ईंधन संकट को और गंभीर बना दिया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 9 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा इस कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपकी सेवा में। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें इस कार्यक्रम को इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसे लाइव देख पा रहे हैं MBC के चैनल 3 पर, साथ ही इसे आप देख पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस के फेसबुक

0: पेज पर। ये भी बता दें कि इसी प्रोग्राम का रिब्रॉडकास्ट जो है आप देख पाएंगे आज ही सपहर के 4 बजे MBC के चैनल 3 पर, और साथ ही इसे सुन पाएंगे दोबारा रेडियो मनोरंजन पर दोपहर के 3 बजे से। तो आइए आज की चर्चा प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। अभी के समय में कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे तो हमेशा से ही था, लेकिन बदलते वक्त के साथ देखा जा रहा है कि कम्युनिकेशन की बात करें तो हर एक रिश्ते की नींव कहते हैं कम्युनिकेशन होती है। किस तरह से हम अपनी बातों को औरों के सामने रखते हैं, किस तरह से हम अपनी बात को समझा पाते हैं, किस तरह से हमारे हाव भाव होते हैं, किस तरह से हमारा व्यवहार होता है, कम्युनिकेशन जो है इन सभी बातों पर करता है। और आज के इस विषय पर जो है ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच जो है निवेदिता जी जुड़ चुकी हैं, निवेदिता गरोडिया जी, जो कॉर्पोरेट और गवर्नेंस वेलबींग लीड है अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस से है, और आज इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पर हमें बहुत सारी जानकारियाँ देने वाली हैं। तो निवेदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आज के कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सुमिता जी, एंड अच्छा लगा मुझे आपने इस विषय को चुना, क्योंकि बहुत लोगों को शायद इसकी ज़रूरत है और हम इसे जुड़ेंगे। और
0: बिल्कुल, कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि हर एक रिश्ते की नींव ही कम्युनिकेशन होता है, और अभी कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारे रिश्तों में दरार आ रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते जो है बिगड़ते जा रहे हैं। और कम्युनिकेशन की बात करें तो ये सिर्फ हमारे पर्सनल लेवल तक सीमित नहीं है, यानी कि हमारे निजी रिश्तों तक सीमित नहीं है। अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, भाई बहन की बात करें, पति पत्नी की बात करें, कम्युनिकेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है घर के बाहर भी। फिर चाहे हम स्कूल में हैं, हम कॉलेज में हैं, या वर्क लाइफ अपने प्रोफेशनल लाइफ में है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन क्या है।
1: बहुत ब्यूटीफुल है ये चीज़ को अगर हम एक बार देखेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं। हम पहले हिस्से में बात करते कि कम्युनिकेशन होता क्या है, किसी से कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जब भी समझा है, कम्युनिकेशन एक पार्ट ऐसा होता है कि जो भी बोल रहे हैं वो कम्युनिकेशन है। जब भी हम बात करेंगे किसी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, तो जब वर्ड्स निकल रहे हैं उसे हम कम्युनिकेशन मानते हैं। बट एक्चुअली कम्युनिकेशन बहुत ब्रॉड तरीके से हो सकता है। सबसे पहले हमारा सबसे पहला कम्युनिकेशन है अपने आप से। आप अपने आप को क्या कम्युनिकेट करते हैं डेली बेसिस पे? अब जब मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हैं, तब आपके अंदर क्या विचार आ रहे हैं, उन विचारों पे आप कैसे हर एक विचार के ऊपर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप अपने आप को क्या नैरेटिव दे रहे हैं, रोज़ क्या बोल रहे हैं अपने आप को कि हाँ कुछ कहीं जगह पर आप कहीं पर आप अटक गए हैं, किसी जगह पर आपकी सीमा मतलब हो गई है कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, नेगेटिव हैं आप, या कहीं जगह पे आप बहुत दबाव में हैं, तब उस समय आपकी क्या कम्युनिकेशन है अपने आप से। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि कम्युनिकेशन की शुरुआत अपने आप से होती है, कि हम अपने आप को बार बार बार बार क्या बोल रहे हैं। जब हम अपने आप को बार बार समझने लगते हैं कि हम अपने आप को जो बोल रहे हैं वो ही हम बन रहे हैं, और जब हम बनने लगते हैं तो हमारे एक्शंस में वो आता है। तो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन है हमारा एक्शन, हमारा एक्सप्रेशन। हम क्या लोगों को दिखा रहे हैं अपने एक्शन से, अपने एक्सप्रेशन से, इंस्टेड ऑफ उन शब्दों को बोल के बताना लोगों को कि मैं बहुत बड़ी महान इंसान हूँ, या मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने इतनी इतनी बिजनेसेस में इतना इतना काम किया है। आपको लगता है उन वर्ड्स का कुछ महत्व है? इनसे सबसे ज़्यादा अगर सबसे अच्छा कम्युनिकेशन लोगों से हो सकता है तो पहले खुद से शुरुआत हो कि हाँ मैं क्या हूँ और मैं किस लिए हूँ, मेरा क्या कार्य है और मुझे क्या बनना है। उसके बाद उन्हीं सब शब्दों में मेरा जो डेरिवेशन है लोगों के प्रति वो ही हो जो मुझे बनना है या जो मैं हूँ, एक कंपैशनेट की तरह, एक हृदय से हम लोगों को मिले, जब भी मिले तो वो वर्ड्स और एक्सप्रेशन के थ्रू शुरुआत होती है।
0: बिल्कुल, मतलब कि कम्युनिकेशन के आम तौर पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो लोगों के मन में ये आता है कि हम औरों के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, है ना, औरों के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं। लेकिन शुरुआत आपने जैसे की कि कम्युनिकेशन तो सबसे पहले ये है कि हम अपने आप से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इसी पहलू को शायद कभी कभार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि कभी कभार हम अपनी ही भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, हम अपने ही जो है इमोशंस को नहीं समझ पाते, और जब हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति को कैसे समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की शुरुआत हमसे होती है, क्योंकि जब तक हम छोटे हैं, माता पिता हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, हमारी देख रेख कर रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा अपने आप से भी जो एक रिश्ता है वो जुड़ने लगता है, और हमारा अपने आप से रिश्ता कैसा है वो दिखाता है कि हम औरों के साथ कैसे हैं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं तब तक हम औरों को नहीं समझ सकते। कहते हैं ना कि अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो वो खुशी आप औरों को कैसे दे सकते हैं। तो अपने आप में खुश रहना भी एक तरह का कम्युनिकेशन है जो हम खुद से कर रहे हैं। तो चलिए, आपने एक बहुत ही सुंदर पहलू से इस कार्यक्रम की शुरुआत की कि किस तरह से हमें अपने आप को समझना है। अब इसी कम्युनिकेशन को अगर हम दूसरे स्टेज तक ले जाए या अगले पड़ाव तक ले जाए तो सबसे पहला कम्युनिकेशन बच्चे का जो है अपने माता पिता से होता है, है ना, क्योंकि माता पिता को देखकर ही तो बच्चा बड़ा हो रहा है, देख रहा है, चीज़ों को जान रहा है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं?
1: जब एक बच्चा शुरुआत से लेके अपनी जर्नी शुरू करता है, हमेशा पेरेंट्स जो होते हैं या जो माता पिता होते हैं वो उनके फर्स्ट गुरु कह दीजिए या टीचर कह दीजिए, या सबसे पहला एजुकेशन जो हमारा शुरुआत होती है वो हमारे माता पिता से होती है। अब जब अगेन बच्चा देखकर ज़्यादा सीखता है इंस्टेड ऑफ जब वो हम बच्चे को कुछ बोल बोल के समझाते हैं, तो हमें वहाँ पे देखना है कि हम क्या एक्चुअली उनको दिखा रहे हैं। यूजुअली अभी के दिनों में अगर हम देखा जाए तो जैसे माता पिता आज के समय बहुत अपने स्ट्रेस में रहते हैं, अपने कार्य में रहते हैं, अपने आप को इंडल्ज करके रखते हैं कुछ कुछ चीज़ों में, जहाँ पे इतना समय नहीं दे पाते बच्चों को। तो वो चीज़ क्या है, इनडायरेक्टली उन बच्चों पे इफ़ेक्ट करता ही करता है। जब आप देखेंगे कि वो लोग भी ये चीज़ देख रहे हैं कि हम कॉन्स्टेंटली अपने फ़ोन पे हैं, अपने लैपटॉप में हैं, अपने कार्य में, कि वी कैन नॉट, हम लोग अपने आपका समय उन बच्चों को नहीं दे पाते। सो कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है कि कई जगहों पे हमें देखना है कि क्या हमारे जनरेशन के लिए हम सेट कर रहे हैं एग्जाम्पल।
0: एग्जैक्टली,
1: आप जो भी बना रहे हैं, अभी जितनी भी अर्निंग कर रहे हैं, आपकी लाइवलीहुड जी रहे हैं, उससे आपके जनरेशन का आप एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा अपने लिए तो समय निकालें कि हाँ, मैं पहले अपने आप को वापस ले आऊँ जहाँ से मैं आया हूँ, और फिर उसी समय अपने जो सामने वाली जनरेशन है, जो मेरा बेबी है, जो बच्चा है, उसके लिए मैं समय निकालना शुरू करूं, ताकि वो उससे सीखना शुरू करे। जो आदतें हैं, जैसे वी विल नॉट स्मोक, हम कुछ स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल नहीं लें, कॉन्स्टेंट फ़ोन पे ना रहें, टीवी पे ना रहें, कुछ ऐसी चीज़ें ना खाएं जो बाहर ले जाके बच्चे को भी खिलानी पड़े। तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन का पार्ट है कि वो सीखता है। तो बच्चों के अंदर भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, इन टर्म्स ऑफ वो फिर अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे अपने माता पिता के अराउंड। जब वो लोग देखेंगे माता पिता खुश हैं, कंपैशनेट है, अगेन वो बच्चों को प्रेम देते हैं, तो वो लोग भी कंफर्टेबल होते हैं पास में आने में। अगर हम आउटरेजियसली थोड़ा सा अपना गुस्सा बार बार दिखाएंगे, टोकेंगे, मना करेंगे, बार बार रोकेंगे, उनके अंदर भी एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि वो भी फिर डरते हैं कम्युनिकेट करने में, बताने में, एक्सप्रेस करने में। तो हमें उनको ओपन छोड़ देना चाहिए।
0: जैसे आपने कहा कि एक बच्चा जो है, जो आप उसे बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उससे ज़्यादा बच्चे जो है कॉपी करते हैं ना। जैसे कि आप अगर बच्चे को ए बोल रहे हैं और खुद बी कर रहे हैं तो बच्चा फिर इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं माता पिता हो गए या टीचर्स ही क्यों ना हो गए, अगर बच्चों को हमें कुछ सिखाना है तो पहले वो सारी चीज़ें हमें खुद के अंदर ढालनी चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चा तो ज़्यादातर आपके हाव भाव को देखकर सीख रहा है, आपके उठने बैठने के तरीके को देखकर सीख रहा है, आपके बात करने के तरीके को देखकर सीख रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा जो बर्ताव होता है वही रिफ्लेक्शन हमें अपने बच्चे में दिखाई देता है। कभी कभार हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है ना, हम तभी नहीं सोचते कि जाने अनजाने में शायद हमने ही कोई ऐसी चीज़ कर दी होगी उनके सामने जो हमें पता नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने कैप्चर कर लिया और बच्चा वही कर रहा है। तो एक माता पिता के लिए बहुत कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है ना कि किस तरह से जो है हम चीज़ों को कर रहे हैं या ले रहे हैं।
1: आप क्या वाइब्रेशंस इमिट कर रहे हैं, मतलब अगर आपके वाइब्रेशंस जितने वाइड होंगे और जितना

0: लवेबल होंगे, कि पहला कि मेरी जो सोच है उससे मेरे वाइब्रेशंस बन रहे हैं, तो मैं हमेशा तनाव में रहूंगी या तनाव में रहूंगा तो मेरे वाइब्रेशंस वैसे होंगे.
1: Exactly.
0: बच्चों पे उन्हीं वाइब्रेशंस का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है. इंस्टेड ऑफ आप कुछ बोलें प्यार से, वो वाइब्रेशंस कैच ज़्यादा करते हैं.
1: Exactly.
0: तो आप जब घर पे हैं उस माहौल में, उस एनवायरमेंट में क्या वाइब्रेशंस आप क्रिएट करते हैं, ये सबसे अच्छा कम्युनिकेशन आपको समझना होगा.
1: क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमें मिलकर लगता है कि हम काफ़ी समय से इसे जानते हैं. तो एक व्यक्ति का वाइब्रेशन ही होता है जो हमें अपनी ओर खींचता है. या कभी कभार किसी से मिलते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, तो व्यक्ति का वाइब ही होता है जो हमें बताता है कि हमें उनसे जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए. तो कहीं ना कहीं कुछ बोलने के पहले हमारे आसपास जो हमारा वाइब्रेशन है वो सामने वाले व्यक्ति को दिखाता है कि हम क्या है और कैसे है. तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ कम्युनिकेशन क्या हम बोल रहे हैं, कैसे हम बोल रहे हैं, सिर्फ हमारी वाणी या बोली तक सीमित नहीं है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे हाव भाव, हमारे मन के विचार, हम क्या सोच रहे हैं, ये सब पर भी निर्भर करता है. और अब हम टीचर्स पर आते हैं. स्कूल बच्चे जब छोटे होते हैं फिर कुछ साल बाद स्कूल की ओर जाते हैं तो टीचर्स का भी एक बड़ा रोल होता है बच्चों के जीवन में, खासकर कम्युनिकेशन की बात करें तो, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो. इस पर हम चाहेंगे कि आप कुछ रोशनी डालें.
0: समटाइम्स हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं एंड हम उन इमोशंस को जब नहीं समझ पाते तो सप्रेस करना शुरू करते हैं. टीचर्स क्या हैं, एक्सप्रेसिव होती हैं. जब भी हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में बाहर हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जो किड्स हैं वो टीचर से इंटरेक्ट कर रही हैं, तो जैसे कि हमने जाना माता पिता पहले गुरु हो गए या पहले हमारे टीचर्स हो गए, तो सेकंड गुरु हमारा टीचर इट्सेल्फ होता है.
1: Exactly.
0: जो हमें स्कूल्स में मिलते हैं या हमारी यूनिवर्सिटी में या हमारे एजुकेशन में हमें मिलते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा रोल, बहुत बड़ा रोल है किसी भी बच्चे को, व्यक्ति को ऊपर आगे बढ़ाने में. जब हम देखेंगे कि हमारे एक्सप्रेशंस नहीं हो पा रहे, हमारा सप्रेशन ज़्यादा है
1: जी,
0: तो वो कई बार उन इमोशंस को गलत तरीके से या कहीं ऐसे तरीके से निकलता है जहाँ पे हम बच्चों के ऊपर एक्सप्रेस कर देते हैं.
1: Exactly.
0: अपने आप को सप्रेस करने लगते हैं तो बच्चों की तरफ एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हम लोग. उन इमोशंस को हमें देखना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेटर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, उनके लिए अपना जीवन देखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप अपने आप को कितना काम डाउन कर पा रहे हैं. आप अपने आप को देखिए कि आपकी जो वाइब्रेशंस है, अगेन आप जो सोच रहे हैं या जो आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो बच्चों पे सबसे पहले प्रभावित होगी. तो कैसे मैं उस चीज़ को डराइव करके चैनलाइज करूँ कि ताकि बच्चे मेरे उन डिप्रेशन या जो भी इमोशंस हैं उनसे प्रभावित ना हो. तब जाके ब्रॉडरली एक टीचर अपने सब्जेक्ट को, अपने एजुकेशन एस्पेक्ट्स को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकता है. बहुत सारे टीचर्स आपने देखे होंगे कि उनकी जो टीचिंग स्किल्स हैं, जो उनकी जो मेथड्स हैं, वो बहुत अलग तरीके से वो लोग लेकर आते हैं, क्योंकि दे आर नॉट होल्डेड, मतलब वो पीछे नहीं है, रुके हुए नहीं है, उनको पकड़ा नहीं गया है कि आप अपने घर से कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो लेके चल रहे हैं, सोशल लाइफ से कुछ प्रॉब्लम है या वर्क लाइफ, वो चीज़ें उन्होंने छोड़ी, उनको रिलीज़ करना आया, तब जाके वो और एक्सटेंसिवली बच्चों के साथ जुड़ पाते हैं. तो अगेन ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है, पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स के. सबसे बड़ा समाज को बनाने का जो सबसे बड़ा कार्य है वो एजुकेटर्स पे है, टीचर्स पे है. आज का जो समाज बन रहा है, पोल्यूशन है या क्राइम है या बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है, सबसे बड़ा रोल जो है वो टीचर्स के ऊपर होता है कि कितना टीचर्स जो एजुकेटर्स है वो एजुकेशन में आगे लेके दे रही हैं. उसी से हमारा समाज बढ़ता है और बनता है. तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहले एड्रेस करें कि अगेन मेरा कम्युनिकेशन मेरे साथ क्या है,
1: कैसा है. एग्जैक्टली. इसलिए तो कहा जाता है ना, कभी कभार हमें अपने जो है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए. यहाँ पर कम्युनिकेशन ही आ जाता है, कम्युनिकेशन का तरीका आ जाता है. क्योंकि हम अपने पर्सनल, अपने सोशल स्ट्रेस को लेकर अगर सामने वाले को एड्रेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वो इमोशंस भी झलकते हैं उसमें.
0: Exactly.
1: तब फिर हम जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ को जो है उस तरह से नहीं ले जा पाएंगे आगे जिस तरह से हमें ले जाना चाहिए कॉन्शियसली, क्योंकि हम अपने इमोशंस में घिरे हुए हैं. तो कहीं ना कहीं अपने जो है पर्सनल इमोशंस से हमें निकल कर बाहर आना चाहिए ताकि हम जो है बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार करें. और अगर बच्चों की हम बात करते हैं तो नौजवान

0: गानों को हम कैसे भूले। आजकल नौजवान जो है उनके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आजकल एक बच्चा हमसे ज़्यादा जानता है, एक टीचर से ज़्यादा जानता है कहे तो ना, क्योंकि एक बच्चा अपने आप को ऐसे ही लेता है कि मुझे ज़्यादा पता है, क्योंकि गैजेट्स कहे, लैपटॉप कहे या सोशल, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल जहाँ से हो सके उन्हें हर तरह का नॉलेज मिल रहा है, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना ही पेरेंट्स का कंट्रोल है, ना ही टीचर्स का कंट्रोल है, ना ही खुद उस बच्चे का कंट्रोल है, क्योंकि इतने सारे कॉन्टेंट वो एक दिन में, इतनी सारी चीज़ें वो एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं। और वहीं पर जब माता पिता और टीचर्स जब कुछ उन्हें बताने जाते हैं तो फिर बच्चा सोच में पड़ जाता है कि मैं इसे फॉलो करूं या उसे फॉलो करूं। तो ऐसे में बच्चे के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। हम कभी कभार उस बच्चे को दोष देते हैं कि आजकल के बच्चे बात नहीं सुनते, लेकिन बच्चा भी अपने आप में अभी के युग में ना, क्या हम अपनी बात करें 80s के सालों की, तो हमारे टाइम में दुनिया अलग थी, फिर बाद में दुनिया अलग, और अभी के टाइम में दुनिया अलग है। तो जो चैलेंजेस बच्चे फेस कर रहे हैं हमें उनको भी समझना है। तो अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो इन सभी चीज़ों को हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं।
1: एक बहुत अच्छी स्टडी हुई थी जो कि अभी रिलीज़ हुई, पब्लिक हुआ, जिसमें देखा जाता है कि जैसे आप अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पे गए हैं, इवनिंग डिनर है या लंच पे गए हैं, लेट्स सपोज से होल फैमिली गैदरिंग है, सब मिलके बाहर गए हैं, होता क्या है कि जितना समय एक व्यक्ति अपने ऑनलाइन जब व्हाट्सएप कॉलिंग या फेसबुक कॉलिंग या एक वीडियो कॉल पे बिताता है, एक कनेक्शन बनाता है या इतना अच्छे से समय बिताता है, उससे कम समय आप अपने डिनर पे बिताते हैं। वो देखेंगे उस टेबल पे, आप देखेंगे सब कोई व्यक्ति बैठा है उस प्रेजेंट मोमेंट पे बैठे, बट कोई भी प्रेजेंट नहीं है बिकॉज वो अपने फ़ोन में है। तो उस समय लगता है कि वो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कम्युनिकेट कर रहा है
0: एक दूसरे से।
1: और उसके अपोजिट क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब घर पे होता है अपने खुद के वीडियो कॉल से, फेस टाइम से या कुछ भी कह लीजिए, उससे ज़्यादा जुड़ता है जितना वो दूर रहता है। तो ये स्टडीज़ बता रही है कि वीडियो कॉल ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है आपको लोगों को घर पर बैठा बैठे, और आपके टेबल पे जब आप बैठते हैं तब आप बात नहीं कर पाते क्योंकि आप फ़ोन पे होते हैं। तो एक सोशल मीडिया का एक अच्छा भी एक इम्पैक्ट है, और एक सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट ऐसा है कि वो हमें उसी के अंदर ले जाया जा रहा है। जब हमें खुल के बात करनी होती है अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ, तब हम शायद अपने ही उस रोल में रहते हैं जहाँ पर हम अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं उस मीडिया के थ्रू, जहाँ पर हमें लगता है कि वो सच है। तो इट्स अ वेरी लाइक कंसर्निंग थिंग अगेन, बहुत ज़रूरी है इसको हमें ध्यान देना कि जब हम बाहर कहीं जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स या सोशल लाइफ में हैं, हम लोग उस चीज़ में ऐसा रहे कि हम अपने कम्युनिकेशंस को कैसे एक्सप्रेसिवली अगेन बात कर सके, अपने सोशल मीडिया को हम दूर रखें, अपने फ़ोन को दूर रखें और मिल के करें, तब यंगस्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस ज़्यादा कर पाते हैं। एंड एक और चीज़ जो है यंगस्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस समय जब हम इस एज में होते हैं कि हम ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, हम अडल्ट की ओर जा रहे हैं, हमारे जो ग्रोइंग फेज़ है उस समय हमारे जो इमोशंस हैं वो अप एंड डाउन अपहीवल्स में होते हैं अगेन। तो हमारी जो इमोशंस हैं अगेन, उसे कैसे हम लोग निकालें, नॉट थ्रू सोशल मीडिया बट बाय सेइंग, कि किसी भी व्यक्ति को हम कम्युनिकेट करें, जैसे सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हमारे पेरेंट्स हैं, तो यू कैन एक्सप्रेस दैट आउट, आप लिखिए। कम्युनिकेशन में एक लिखना भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन हमें क्लियर होते हैं कि हमारे विचार है क्या, चल क्या रहा है, तो हम उसको राइट इट डाउन, लिखना शुरू करें, जितना हो सके लिखें, जितना हो सके अपने आप को डराइव करें कि यू आर नॉट दोज थॉट्स, आप वो विचार नहीं हैं जो आपको लगता है कि आप परेशान कर रहे हैं। और कई जगहों पे जब आपको हेल्प लगा कि आपको लगता है कि यू वांट टू स्पीक, आप जाइए अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। तो यंगस्टर्स के लिए इट्स अ टाइम ऑफ ग्रोइंग चेंज, कॉन्स्टेंट रैपिड चेंज, करियर वाइज, फैमिली वाइज, सोशल मीडिया वाइज, सोशल वाइज, अपने अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उस समय ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को, अपने जो डेरिवेशंस है, मैं मेरे अपने आप को क्या बोलना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, वो ज़रूर हम देखें।
0: कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की बात करते थे उसमें जर्नलिंग भी आती है, जैसे आपने कहा लिखना बहुत ज़रूरी होता है।

कभी कभार बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बच्चे ही नहीं बड़े और हम भी हैं, जहाँ पर हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उस समय बहुत से जो है थेरेपिस्ट या है वो आपको एडवाइस करते हैं कि आप जर्नलिंग करना शुरू करें, आप लिखना शुरू करें, मतलब कि अपने विचारों को लिखना शुरू करें, तब आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मन में इतना कुछ चल रहा होता है कि हम एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम खुद ही नहीं जानते

सोल्यूशन आपको वही मिल जाता है, है ना। चलिए, जितने भी श्रोता और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने विचार बांटना चाहते हैं, तो 4028085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए एक गाने के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।

0: आज की चर्चा।
1: चलिए एक बार फिर से हमारे सभी श्रोता और सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं आज की चर्चा। इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं और आज इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ जो है निवेदिता जी जुड़ी है। खुद जो है वो यू कैन सी कि काफ़ी कम उम्र की है लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए हमें कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी दे रही है। ऐसे आपका भी जो है बहुत से लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, आप कॉर्पोरेट लेवल पर भी लोगों को जाकर अभ्यास योग वगैरह के बारे में सिखाती है। तो सिर्फ वहाँ पे योगा के पोस्चर्स ही नहीं, वहाँ पर कम्युनिकेशन भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है। आप चाहे किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, आप चाहे किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, कम्युनिकेशन हर एक फील्ड की नींव है ना। फिर चाहे आप मेडिकल से जुड़े हुए हो, फिर चाहे आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े हो, इंजीनियरिंग से जुड़े हो, किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, तो आपसे हम जानना चाहेंगे निवेदिता जी, सबसे बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू यू?
2: जब हम कम्युनिकेट करते हैं या जब कम्युनिकेशन की बात आती है सो सबसे बड़ी चीज़ उसमें होती है आप उस व्यक्ति को कितना सुन रहे हैं। आपके सामने जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को आप कहाँ कितना डीप लिसनिंग कर रहे हैं, एम्पैथिकली आप उसे कितना समझ रहे हैं। क्या आप सिर्फ वहाँ पे अपनी बात रखने के लिए आप वहाँ पे होते हैं कि सिर्फ मेरे को जो पता है, जो मुझे नॉलेज है, या मैं ही बोलूँगी, या मेरे पास ही डोमिनेशन है, पावर है, तो मुझे ही बोलने का राइट है, तो मैं वहाँ पे सिर्फ बोल के आ जाऊँ? या क्या आप लिटरली कम्युनिकेशन जानते हैं कि कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो सबसे पहला होता है डीप लिसनिंग का, या फिर आप समझ लीजिए उसको सुनना।
3: बिल्कुल,
2: आप क्या उस व्यक्ति को अलाउ करते हैं सुनना, कि आप वो जो व्यक्ति बोल रहा है वो आप अलाउ कर रहे हैं कि आप उसे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति वैल्यू भी फील करेगा।
3: एग्जैक्टली
2: exactly. और जब वो व्यक्ति वैल्यू फील करेगा तो इतनी रिस्पेक्ट से आपको भी वो सुनेगा।
3: जी बिल्कुल,
2: इंस्टेड के मैं सिर्फ बोल के ठीक है स्मिता जी ये चीज़ें हैं ऐसे करके आप ऐसे ऐसे कर दीजिए, क्या आप मेरी बात समझेंगे या सुनेंगे?
1: बिल्कुल नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ इसमें हम क्या बोल रहे हैं सिर्फ वही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सुनना भी उतना ही ज़रूरी होता है। और ये सुनना शायद हर एक हमारे जीवन के पहलू पर भी लागू होता है। हम बच्चों की बात करें तो बच्चे माता पिता की बात कितना सुन रहे हैं, या माता पिता अपने बच्चों की बात कितना सुन रहे हैं, है ना?
2: Exactly.
1: अगर हम प्रोफेशनल फील्ड की बात करते हैं जहाँ काम काज कर रहे हैं, हमारे सुपीरियर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, जब हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या सिर्फ हम या क्या सिर्फ वो हमें बोलकर सुना रहे हैं या हमारी भी बात सुन रहे हैं? तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर बोलना जितना ज़रूरी होता है लिसनिंग स्किल्स भी उतने ही मायने रखते हैं,
2: क्योंकि जब आप सुनेंगे उन व्यक्ति को तो आपकी आधी चीज़ें क्या हैं वहाँ पर ही सॉल्व हो जाती, क्योंकि वो व्यक्ति इतनी सारी चीज़ें बता रहा होता है कि जो आप बोलने वाले थे ना उससे पहले ही आपको पता चल जाता है कि नहीं, यहाँ पे किसी व्यक्ति को कुछ और ज़रूरत है।
3: Exactly.
2: जब आप डीप लिसनिंग करते हैं
3: Exactly.
2: दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन में वो पहला तो है सुनना, डीप लिसनिंग, दूसरा है आप कितना अपनी साइलेंस, अपनी मतलब एक शांत गंभीर होके आप उस जगह पे रह के कितना कम्युनिकेट कर सकते हैं। 10 लोग हैं या 20 पीपल की एक पूरी कम्युनिटी है या मेंबर्स आर सिटिंग टुगेदर बैठे हैं, उस समय आप कितने शांत हैं, आपके पास विचार बहुत है, आपके पास आइडियाज़ बहुत है, आपको लगता है कि इन आइडियाज़ को लाएंगे तो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बट उसी समय आपके जो विचार है, जो आइडियाज़ है, वो वर्ड्स में कितने प्रभावशाली डिलीवर होते हैं वो डिपेंड करता है आप कितनी शांत है उस समय और कितना

0: आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं पहले बोलने के लिए?
1: एग्जैक्टली, क्योंकि ये अपने आप में दिखाता है कि आप सामने वाले की कितनी रिस्पेक्ट भी करते हैं ना. क्योंकि जब आप खुद ही बोले जा रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति को बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं, तो यानी कि आपने उसे बुलाया है सिर्फ अपनी बात कहने के लिए. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन टू वे हो, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, तो वहाँ पर बोलना जितना ज़रूरी है उतना सामने वाले को बोलने देना भी उतना ही ज़रूरी है. क्योंकि तभी जाकर हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का रोल प्ले करते हैं और तभी जाकर किसी भी काम को हम अच्छी तरीके से कर पाते हैं.
0: आपके पास नॉलेज बहुत होगा, इन्फॉर्मेशन भी बहुत होगी कि आपने बहुत सारी जगह से बहुत इन्फॉर्मेशन, नॉलेज सब कुछ गेन कर लिया. बट अगर आप देखेंगे तो आज के समय में उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती, क्योंकि हर एक चीज़ आपके डिवाइस में है. आपको जो व्यक्ति वो चीज़ बता रहा होगा ना, वो चीज़ आपको पहले मिलेगी, तो उनकी वैल्यू आज के समय नहीं है जितनी वैल्यू आपके उस व्यक्ति की प्रेजेंस की है. जब आप किसी दुविधा में होंगे, जिस किसी इमरजेंसी में होंगे, किसी पीड़ा में होंगे, या कैसे भी किसी भी सिचुएशन में होंगे, तब उस समय की नॉलेज, उस व्यक्ति की नॉलेज या उस व्यक्ति का सॉल्यूशन देना आपको अच्छा लगेगा या उस व्यक्ति की प्रेजेंस आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी?
1: बिल्कुल. इस पर एक एग्जांपल ये भी आता है ना कि कभी भी हमें सलाह की ज़रूरत पड़ती थी कि हम ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं ना, या जो एक्सपीरियंस होते हैं, या घर के बड़े होते हैं, या कोई हमारा ऐसा दोस्त होता है जिस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं. तो कभी कभार उस व्यक्ति का होना ही आपके लिए काफ़ी होता है कि आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है. क्योंकि एक व्यक्ति सभी से अपनी दिल की बात नहीं कह पाता है ना. क्योंकि कभी कभार हम सालों से अपनों के साथ रहते हैं लेकिन दिल की बात उन्हीं से कहते हैं जिनके साथ कनेक्शन होता है, जिस पर विश्वास होता है.
0: तो आपका प्रेजेंस इज ऑल यू नीड. कि आप जब प्रेजेंस होना शुरू करेंगे किसी भी कम्युनिकेशन में, आपकी प्रेजेंस इज मोर देन आपके वर्ड्स से. दूसरा, सबसे थर्ड इम्पॉर्टेंट, जो कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि कोई भी चीज़ आप कितने कम शब्दों में उस चीज़ को डिराइव कर देते हैं या बता देते हैं, वो सबसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. एक व्यक्ति है जो कम से कम 11-15 मिनट बताया जा रहा है और वही सेम चीज़ को किसी एक व्यक्ति ने आके कुछ शब्दों में 3-4 मिनट्स में बता दिया, वेरी इजी लैंग्वेज में. तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हुआ कि आप कम शब्दों में सबको बता सकते हैं कि एक्चुअली क्या है, इंस्टेड ऑफ कीप सेइंग के बात करते जाए करते जाए. क्योंकि उससे क्या होता है, आदमी व्यक्ति जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता. तो लेस यूज़ ऑफ वर्ड्स, कम शब्दों का उपयोग करने से भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बढ़ती है, आप और अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं. दूसरा, आपकी शांत, आपका गंभीरता और आपका सुनना लोगों को पसंद आता है. आपकी प्रेजेंस जब आप रहते हैं तो वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. किसी भी व्यक्ति को अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपके एक्शन से आप कम्युनिकेट कीजिए. सो जो फोर्थ पार्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ थ्रू योर एक्शंस. मैं योग सिखाती हूँ, अच्छी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए और रात को निद्रा अच्छी लेनी चाहिए. चीज़ मैं बोला, वही चीज़ अगर मैं नहीं करती तो डिफरेंट है, और वही चीज़ मैं करके दिखाऊं लोगों को कि हाँ मैं भोजन एक्चुअली अच्छा कर रही हूँ, निद्रा अच्छी ले रही हूँ, लाइफस्टाइल अच्छी है और योग करती हूँ. तब लोग उसको देख के तुरंत अपने आप उतारेंगे, इंस्टेड ऑफ आई गो एंड स्पीक ऑन द माइक एंड कीप सेइंग मैं किसी को बात कर रही थी.
1: जी बिल्कुल.
0: तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन,
1: यानी कि आप जब खुद हेल्दी नहीं है तो किस तरह से सामने वाले को आप हेल्दी ऑप्शंस जो है चूज़ करने के लिए कह सकती है ना. क्योंकि आप जब खुद ही उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो किस तरह से आप औरों को सलाह दे सकते हैं. अगर हम यहाँ पर लिसनिंग स्किल्स की बात करें, अभी के समय में हम देखते हैं कि परिवारों में अगर हम बात करें तो ये सभी पर लागू होता है. फिर चाहे हम पेरेंट्स और बच्चों की बात करें, जहाँ पर बच्चे अपनी बात कहते हैं लेकिन पेरेंट्स सुनने को नहीं देखते हैं, पेरेंट्स अपनी बात कहना चाहते हैं बच्चे सुनने को नहीं देखते हैं, और उसी घर में अगर बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जो बच्चों के पिता उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी होता है कि उनके अनुभव के ज़रिए वो बोलते हैं. तो इसमें बहुत सारे जो है कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, एक दूसरे से कोई सुनना नहीं चाह रहा है, एक दूसरे से कोई बात नहीं करना चाह रहा है, और स्ट्रेस बढ़ जाता है. और जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो ये भी हमारे बीच में जो है कम्युनिकेशन के गैप को और भी बढ़ा देता है ना. क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं तो आप अपनों से बात करने को नहीं देखेंगे, अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे, अकेले टाइम स्पेंड करना शुरू कर देंगे. या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बीमार हैं ना, कि किसी भी कारणवश से

0: एज की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, बीमारी के चलते भी जो है लोग एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या बीमार होते तो सोचते हैं कि मैं जाऊंगा तो लोग मुझे मेरी बीमारी के बारे में पूछेंगे, तो अपने आप को बंद कर लेते। तो ये सारे फैक्टर्स भी जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इस अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों से जूझ रहा है तो वो किस तरह से जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूँढ सकता है?
1: सबसे पहले जो ये स्टिग्मा है, या उसे कह लीजिए कि ये एक माइंडसेट है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को छुपाना बहुत अच्छे से जानते हैं, या हम जिस तकलीफ़ में हैं या जिस स्ट्रेस में हैं, जैसे मुझे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मैं बहुत एंशियस हूँ, या हर वक्त मेरे अंदर विचार बहुत नेगेटिव रहते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को और सप्रेस करना करती रहती हूँ, लोगों को नहीं बताती, बाहर के लोगों को नहीं पता चले, इसलिए मैं और सप्रेस करके अपनी एक फेस अपने आप को मैस्करेट कर लेती हूँ, अपने आप को एक तरीके से मैं कुछ और बताती हूँ। पर जब आप देखेंगे ये कुछ समय के लिए आपने अच्छा ड्रेसअप कर लिया, कुछ समय के लिए अच्छी आपने एक पर्सनैलिटी गैदर कर लिया कुछ समय तक, बट एट द एंड आप जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति के साथ अपने घर पर भी रहते हैं अब, तो आप देखेंगे कि आपकी रियल पर्सनैलिटी धीरे धीरे शो करती है कि आप अंदर से क्या हैं, वही लोगों को पता रहता है, वही लोग को जानकारी पता होती है, या जैसे जैसे वो लोग आपसे फिर मिलके करते हैं। जैसे मैं बहुत अच्छे से बाहर अपने आप को अभी आपको एक्सप्रेस करूँगी कि दिस इज़ वो हु आई एम, मैं निवेदिता हूँ, बट मेरा ट्रू नेचर मेरे बिहेवियर से आता है, मेरा ट्रू नेचर मेरे अगेन मेरे बोलने के, मेरे कर्तव्य से, मेरे एक्शन से, मेरे जो कर्म है उनसे आता है। तो मेरे कर्म और मेरे विचार अगेन नहीं मैच हो रहे, बट मेरी पर्सनैलिटी अलग ही है बता रही, तो कुछ समय तक रहता है। इसमें एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है, घर से और करियर, आपके बाहर की जो कॉर्पोरेट लाइफ है, करियर लाइफ है, या बाहर किसी सोशल लाइफ में आप हैं, उन दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसा बर्ताव आप अपने घर पर घर वालों के साथ करते हैं, वही चीज़ आपको डिराइव करता है आपके बाहर की करियर लाइफ में।
0: एक्सैक्टली,
1: आप घर पे किसी से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ठीक है आपके माता पिता ओके, या आपकी
0: डिसरिस्पेक्ट
1: कर रहे हैं, और बाहर आप कॉर्पोरेट में बहुत अपने आप को, अपनी इमेज को एकदम शाइन कर रहे हैं, देन इट विल नॉट वर्क। आपकी सारी इमेज आपके घर से शुरू होती है कि आप घर पे कैसे हैं, वही आपको डिराइव करता है आपके बाहर की लाइफ।
0: तो हम लोग बहुत दिनों तक आप अपने बिहेवियर को जो है छुपा कर नहीं रख पाएंगे, एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है।
1: यस, इसको इसी से ही शुरुआत करनी कि जो अनुभव है वो हर एक व्यक्ति के लाइफ में होता है, तो उसकी रिस्पेक्ट वहाँ से शुरू करें कि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है। अगर हम किड्स एज अ यंगस्टर्स और एज अ अडल्ट ऑल्सो इफ़ वी, अगर उसको हम शुरू करें सुनना, उनके जो अनुभव होंगे वो हमारे जीवन में कभी नहीं मिलेंगे हमें, तो उन अनुभव को स्टोर करना, उनसे कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना कि उन्होंने जो लाइफ जी के हमें जो लाइफ दी है उसके लिए ग्रेटफुल होना कि थैंक यू, आपने इन सारी चीज़ों को झेला या इस परिस्थिति में गए तब जाके हमें कंफर्ट मिला है।
0: Exactly.
1: तो उसके लिए हम कृतज्ञ है कि आपने इन सबको किया, तो वी बिकम मोर ग्रेटफुल कि आप हैं आप पे। कुछ लोगों के पेरेंट्स ही नहीं होते, कुछ लोगों की सीनियर सिटीजन में जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कोई लव नहीं होता, तो हम ग्रेटफुल हो जाए कि वो हैं एटलीस्ट, तब जाके वो हम हैं यहाँ पे।
0: एग्जैक्टली, और कहीं ना कहीं लाइफ में ये ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है जो भी कुछ हमें मिल रहा है उसके, क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स की वजह से ही, अपने मेंटर्स की वजह से ही यहाँ है, क्योंकि एक व्यक्ति उठकर ही ऐसे वहाँ तक नहीं पहुँचता है जहाँ पर आज वो है। बहुत सारे लाइफ के स्टेजेस होते हैं जिसे क्रॉस करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसने फेस करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। और चलिए आज तो हम कम्युनिकेशन पर बात कर रहे हैं, तो निवेदिता जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स से एक व्यक्ति अपने पर्सनालिटी को, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, और ये सिर्फ बच्चे यंगस्टर्स नहीं, हम अगर कॉर्पोरेट लेवल की भी बात करें, खासकर प्रोफेशनल्स की बात करें, तो ये उन पर भी लागू होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति दिखाए जिस पर सामने वाला व्यक्ति आप पर विश्वास कर पाए, है ना
1: जी? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको, चीज़ को समझना, जो हमने ऑलरेडी इस चीज़ को पहले भी हमने इस चीज़ पे बात की कि जैसे कॉर्पोरेट लाइफ है तो किसी भी जगह पे अगर हम बैठते हैं या जाते हैं या किसी से भी हमें कम्युनिकेट करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले सुनो, सुनना बहुत ज़रूरी है। उस स्किल को अगर हम डेवलप कर लेते हैं

0: तो हमारी जितनी भी बातें हम रखना चाहेंगे लोग हमें रिस्पेक्टफुली सुनेंगे। दूसरा, कितना हम लोग कम शब्दों में किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज के समय सबके पास इतना समय नहीं है, प्लस इतनी पेशेंस नहीं है, और सबके पास इतना सारा नॉलेज है कि कोई सुनना ही नहीं चाहेगा,
1: सुनना ही नहीं चाह रहा, exactly.
0: तो उसको हम कैसे उसको एक्सप्रेस करें, तो बहुत अच्छे से कम शब्दों में कितना हम बता सकते हैं उसको वैल्यू देके। प्लस अगेन, जो भी आप बात करना चाह रहे हैं वो आप बन जाइए, वो आप बन जाइए। जैसे आपकी एक मैनेजर टीम है, आप मैनेजमेंट टीम में हैं, आपकी पूरी टीम है, आप लीड पे हैं, उस लीडिंग रोल में आपको जो अपने स्किल्स को, अपने खुद के ग्रुप को, अपने कोहोर्ट्स को सिखानी है, या आपके टीम मेंबर्स को आपको रिस्पेक्ट करवानी है, जो भी आप बोले वो सुने, उसके लिए आप पहले वो बन जाइए। कि आप वो चीज़ें सारी करने लगेंगे तो वो कम्युनिकेट कर देगा कि इफ़ मेरे जो बॉस है या जो मेरा टीम मेंबर है या जो मेरा लीड मेंबर है, वो व्यक्ति वो चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो मेरे लिए भी ये चीज़ लागू होती है। हम सिर्फ बोलें बोलें और ना करें तो प्रॉब्लमेटिक होता है।
1: Exactly.
0: तीसरा, सबसे बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है हृदय से, हार्टफुली, कंपैशन हो के किसी भी व्यक्ति से आप बात करें। कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कंपैरिजन ना हो, क्योंकि आप अपने आप में सब कुछ है, मतलब आपके पास एक तरह से अथाह है, कि अबेंडेंस जो बोलते हैं वो सबके अंदर है, उसको टैप करने की ज़रूरत है। तो हम सब कंपैरिजन में ना आए कि यस आप जितना अच्छा कर रहे हैं उसके साथ साथ मैं भी उतना ही अच्छा कर सकती हूँ, कर रही हूँ, कंपैरिजन ना हो, क्योंकि वो प्रेम है। आपको उस प्रेम से, उस कंपैशन से जब आप बात करते हैं तो वो जुड़ता है व्यक्ति, इंस्टेड ऑफ वो अलग हुआ। तो कंपैरिजन ना हो कभी भी किसी भी कम्युनिकेशन में, कि आपने आगे ले लिया लीड, मैं नहीं हो पाई, इट्स ओके। वो एक अबेंडेंस का काम है जो अपने आप ही आपको ला के देगा। तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्किल्स जो बोल सकते हैं, ये बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, कि लैंग्वेज अच्छी आ जाना या अच्छे आर्टिकुलेशन से आर्टिकुलेट कर देना, वो एक स्किल है, बट वो स्किल तभी काम आ सकता है जब आप इन स्किल्स को अपनाएंगे, कि डीप लिसनिंग करना या कम शब्दों में बोलना।
1: और कहीं ना कहीं किस तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, ये भी मायने रखता है ना। और उन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे हाव भाव कैसे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, क्योंकि एक चीज़ जब हम प्यार से कह रहे हैं, बल्कि उसी चीज़ को हम गुस्से में कह रहे हैं, तो उसका भाव बिल्कुल बदल गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम कॉर्पोरेट लेवल में कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो रिस्पेक्टफुल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि हम दो लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दो व्यक्ति कभी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। किसी में कुछ अच्छा है तो किसी में कुछ अच्छा है। ऐसे ही घर में दो बच्चे होते हैं तो दोनों कभी एक जैसे नहीं होते हैं। किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ बुरा है, कोई ज़्यादा समझता है, कोई धीरे समझता है, तो सब में अपनी स्ट्रेंथ होती है, सब में अपनी वीकनेसेस होते हैं। तो हमें सभी को जो है साथ में लेकर चलना है, और उसके लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें रिस्पेक्ट भी आ जाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना भी आ जाता है। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम जो है इसका टाइम भी ख़त्म होने को चला है, कि कम्युनिकेशन अपने आप में इतना एक वास्ट टॉपिक है कि एक प्रोग्राम में इसे ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल युग में अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज एक बच्चा छोटा है, बड़ा है, या सीनियर सिटीज़न है, या कॉर्पोरेट, हर कोई जो है कहीं ना कहीं इस डिजिटल युग से जुड़ा हुआ है, और इस डिजिटल युग ने हमारे कम्युनिकेशन को काफ़ी अफेक्ट किया है। तो आप इस पर, आपके क्या राय है?
0: हमने एक चीज़ देखी थी अभी कुछ समय पहले, हमने जब बात की तो स्मिता जी आपने देखा होगा कि डिजिटल, जैसे कि डिजिटल वर्ल्ड हमें कैसे सेपरेट कर रहा है, एक ही टेबल पे रहकर हम लोग मिलके भोजन कर रहे हैं, बट वो हमें सेपरेट रख रहा है। हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, बट अपनी ही फैमिली से उस समय बात नहीं कर रहे हैं। और कितना डिजिटल जो कम्युनिकेशन है वो कितना प्रभावशाली हो गया है, कि हमारे मेंटल पर्सपेक्टिव को ट्वीक करने लगा है। पहले के समय इतना इंफॉर्मेशन कभी आपने देखा था, सोचा था कि होगा? 23 years बैक जब आप मॉरिशस आए, तब आपने कभी इतना सारा ज्ञान एक साथ लेने की कभी सोची थी?
1: आजकल तो ऐसा लगता है कि हम इतना कुछ

0: कुछ एक दिन में देख रहे हैं, जान रहे हैं, कभी कभार शाम के वक्त आपको अपने आप में इतना भारीपन लगता है ना, कैसा लगता है कि थोड़ा सा समय ही निकाल पाए, लेकिन आप अपने आप को इससे डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये डिस्कनेक्ट कैसे करें?
1: कुछ समय नियम बांधने होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे हम सबके लिए मुश्किल है, बट इसको एक तरीके से हम दे सकते हैं कि पहला आप क्या यूसेज कर रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड सबके पास है, अगेन सोशल मीडिया सबके पास है, उसका इफेक्टिव यूज़ कैसे हो सकता है उसको देखिए कि आप अपने एल्गोरिदम को कितना अच्छे से सेट कर सकते हैं आपके गोल के लिए, आप जो बनना चाहते हैं कि आपका एल्गोरिदम भी वही बताता है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा, सुबह का एक मॉर्निंग रूटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है हमें वापस लाने में। सोशल मीडिया को दूर रखना एक बहुत इम्पॉसिबल वर्क हो गया आज के समय, इसके बिना कुछ नहीं है। बट अगर आप इतना समय सोशल मीडिया पे निकाल लें, लेट्स सपोज से 3 घंटा आपने सोशल, उसमें से आपको 30 मिनट्स अपने साइलेंस में बिताना, जैसे मॉर्निंग में जब भी आप उठें, ट्राई नॉट टू, मुझे पता है सबके सब ईमेल्स पे भागते हैं, टाइम पे देखते हैं, अलार्म पे भागेंगे, म्यूज़िक पे भागते हैं, कुछ अच्छा देखने पे, बट ट्राई कि उस समय बैठे आप 3 मिनट्स, जैसे आप बेड पे बैठ गए 3 मिनट सीधा बैठे, सिर्फ 3 मिनट बैठने से क्या होता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन पूरे हेड तक वापस से पहुंचती है। जब आप लेटे हुए होते हैं तो सर्कुलेशन हॉरिजॉन्टल होता है, जब आप बैठ जाते हैं तो सर्कुलेशन ऊपर जाने में 3 मिनट लगता है, तो रश करने से अच्छा उस सर्कुलेशन को ऊपर तक पहुंचने दीजिए। उन 3 मिनट में सिर्फ आपकी ब्रेथ पे आप ध्यान दें कि ब्रेथ के साथ जो विचार आ रहे हैं क्या उस विचार को आप नलिफाई कर सकते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे, और एक विचार जो आपको बनाने वाला है उसको ले आइए कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेट्स सपोज से, या कोई भी एक विचार,
0: कोई भी एक पॉजिटिव थॉट
1: कि मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है, लेट्स सपोज से, लेट्स सपोज
0: जी,
1: उस विचार को आप 3 मिनट देखें, और उसी के साथ वार्म वाटर, पानी का एक सिप ले सुबह सुबह, कुछ एक वर्ड बोलकर, वही एक कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ या मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और पानी पिया और वहाँ से अपने आप को क्लीन करके एक बार बॉडी मूवमेंट किया, ब्रेथ वर्कआउट किया और फिर अपने दिन की शुरुआत की। आप कल ट्राई कीजिएगा, आप पर्सनली खुद ट्राई कीजिएगा, मैं भी करूँगी अच्छे से, आप देखिएगा कि जो चेंज आप दुनिया में लाना चाह रहे हैं वो उधर से शुरू हो जाएगा, और डेफिनेटली 100% पूरी पूरा डे आपका डिफरेंट शुरू होगा इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग।
0: चलिए मैं बिल्कुल इसे जो है सवेरे उठकर कल पहले इसी को ट्राई करूंगी और आपको फीडबैक भी दूंगी कि कैसे रहा। और उम्मीद करते हैं जितने श्रोता और जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े, इस छोटे से एक्सरसाइज को आप भी ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि क्या पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। निवेदिता जी, आप हमारे साथ जुड़ी और कम्युनिकेशन को लेकर इतनी सारी जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस को भी धन्यवाद देंगे, वहाँ से आई है, और जितने हमारे श्रोता और दर्शक ने हमारा साथ दिया आज के इस प्रोग्राम में, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी किसी अन्य विषय को लेकर। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी प्रोडक्शन टीम को, हमारी टेक्निकल टीम को, रत्नामाला हमारी प्रोड्यूसर हमारे साथ, फैजान और दीपशिका आप दोनों का सहयोग भी हमें मिला इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए ऐसे ही जो है MBC रेडियो और TV से आप जुड़े रहिएगा। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छे से बीते, हमारी ओर से नमस्कार आप सभी को।
2: आज

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं 10 बजे के संक्षिप्त समाचारों के साथ।

सुनने वालों को नमस्कार। पाँच महीनों में ऑनलाइन उत्पीड़न के 742 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस वर्ष 1 जनवरी से 1 जून के बीच 1,000 से अधिक महिलाएं सोशल मीडिया की

0: शिकार हुई हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण को मजबूत करने पर विचार कर रही है। ICT मंत्रालय जल्द ही प्लेटफॉर्म्स के उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए एक मैकेनिज्म स्थापित करने के उद्देश्य से संबंधित पक्षों के साथ परामर्श शुरू करेगा। देश भर में कई महीनों के इलाकाई परामर्श के बाद विजन 2050 पहल एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। नागरिक बैठकों का चरण इस सप्ताह पोंफलुमसर जिले के प्लेंदेपापाई में समाप्त हो गया। देश के भविष्य के लिए उनके विचारों, चिंताओं और आकांक्षाओं को जानने के उद्देश्य से आयोजित इन चर्चाओं में 1200 से अधिक मौशजवासियों ने भाग लिया। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने तिजोरी मामले में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम के खिलाफ अदालती कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया है। वे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड एंटीमोनी लॉन्ड्रिंग एक्ट द्वारा निर्धारित कानूनी सीमा से अधिक नकद भुगतान प्राप्त करने से जुड़े 23 आरोपों का सामना कर रहे थे। ये मामला फरवरी 2015 में उनके आवास पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त किए गए कई मिलियन रुपए और विदेशी मुद्रा से संबंधित था। बचाव पक्ष ने इसे एक राजनीतिक प्रतिशोध बताया था, साथ ही जांच में हस्तक्षेप और मामले में अत्यधिक देरी के आरोप भी लगाए गए थे। और विदेश में चीनी नेता शी जिनपिंग प्योंगयांग की अपनी 2 दिवसीय यात्रा का समापन कर रहे हैं, जो 2019 के बाद से उनकी उत्तर कोरिया की पहली आधिकारिक यात्रा है। सोमवार सुबह जब वे वहां पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां गार्ड ऑफ ऑनर और उत्साही भीड़ ने उनका अभिवादन किया। बाद में शी जिनपिंग और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जहाँ उन्होंने आपसी सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। पंचम रोड लापोत प्रोविडेंस पुस दे फ्लाक में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लीलावती नागवा, पैदाइशी नाम कोयला और जो शांति नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर 3:30 बजे उनके बेटे जगदीश नारवा के घर पंचम रोड लापोत प्रोविडेंस पुस दे फ्लाक से उठाकर मौलुबें पॉइंट दे फ्लाक की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 फ्री। रॉय रोड गांगोब में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री बसंत लोलचंद, जो सुनील नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर रॉय रोड गांगोब से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस।
2: Radio Mauritius.

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: समय स्टूडियो की घड़ी में 10:04 होने जा रहे हैं। ये रेडियो मॉरिशस का प्रसारण है। मीडियम वाट 19 किलोहर्ट्ज़ पर से आप हमारे साथ जुड़ पाए हैं। पुनः आप सभी के सेवा में उपस्थित हो चुकी है रत्ना, हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। मंगलवार का दिन है तो आइए भक्तिमय यात्रा में भक्तिमय भजनों के साथ मन को शांत करते हैं, तनाव से मुक्त करते हैं और ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं। ईश्वर की भक्ति से उपरोक्त कोई भी शांति इस जगत में नहीं है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज का कार्यक्रम तीन भागों में विभाजित है। प्रथम वेद पाठ एवं भावार्थ, द्वितीय एक प्रेरणादायक भजन और अंत में एक वैदिक मंत्र की गहन व्याख्या। तो आइए वेद पाठ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। ओम त्वे अग्ने स्वाहुत प्रिया सहसंतु सूर्या यंतारो ये मघवानो जनाना मुर्वं दयंत गोनाम। जो श्रद्धा भक्ति से सदा प्रकाश स्वरूप प्रभु का अपने हृदय में आह्वान करते हैं, जो अपने पुरुषार्थ और प्रभु की कृपा से धन से संपन्न होकर भी सदा निराभिमानी रहते हैं, संयमी रहते हैं, मर्यादाओं में बंध कर धन वैभव का उपभोग करते हैं, अर्थात जो विषय वास्ताओं में फंसते नहीं, सदा उनसे ऊपर उठे हुए अपने धन वैभव का समय आने पर दान भी करते हैं, ऐसे सच्चे स्तोता प्रभु भक्त प्रभु को अत्यंत प्यारे होते हैं। ओम अग्ने विवस्व दुषसश्चित्रम राधो अमर्त्या आदाशुषे जात वेदो वहात्वमद्या देवां उषर्बुध। मनुष्य यदि अपने को मरण धर्मा समझकर उस अमरण धर्मा प्रभु की उपासना में नित्य प्रति बैठकर उससे उस अलौकिक धन की सदा चाहना करे तो उसके हृदय में अविद्यांधकार को हर कर उनमें ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित कर दे तो उससे उसका पूर्ण कल्याण होगा। ओम त्वमित सप्रथा अस्यग्ने रितरित कवि त्वाम विप्रासह समिधान दि

दिव आ विवासंति वेधसः। प्रभु ज्ञान स्वरूप है, सबका रक्षक है, सर्वत्र व्यापक है, सत्य स्वरूप है, कवि है, ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, तेजोमय है, महादानी है, कांतिमय है। जो श्रद्धा भक्ति से उसकी शरण में आ जाता है उसको वह प्रभु ज्ञानी दानी शांत सरल और निष्ठल बना देता है। ओम यो विश्वादयते वसु होता मंद्रो जनानाम मधोर्न पात्रा अप्रथामन्यस्मै प्रस्तोमा यन्त्वमग्नये। जो प्रभु होता बनकर अपने सभी पदार्थ सब प्राणियों के लिए होम देता है, जो प्रभु जहाँ सांसारिक पदार्थ प्रदान कर मनुष्यों को हर्षित करता है, वहाँ वह आध्यात्मिक आनंद प्रदान कर साधकों को भी आनंद विभोर करता है। ओम शांति शांति शांति।

श्रोताओ, वेद मानव सभ्यता का आदि ज्ञान है। वेदों में केवल धार्मिक उपदेश ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली दिव्य शिक्षाएं निहित हैं। वेद मनुष्य को बाहरी उन्नति के साथ साथ आंतरिक जागरण का भी मार्ग दिखाते हैं। वेदों के प्रत्येक मंत्र में गहन आध्यात्मिक, नैतिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक अर्थ समाहित हैं। ऐसा ही एक अत्यंत प्रेरणादायक मंत्र है, ओम युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। श्रुताओ, यह मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है तथा इसमें परमात्मा ज्ञान, बुद्धि, मन, साधना तथा सृष्टि के संचालन का अद्भुत वर्णन मिलता है। यह मंत्र मनुष्य को बताता है कि जीवन की सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि संयमित मन, जागृत बुद्धि और ईश्वर के प्रकाश से प्राप्त होती है। इस मंत्र में ऋषि ने यह स्पष्ट किया है कि ज्ञानी पुरुष अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं और उसी दिव्य चेतना से संसार में महान कार्य संपन्न होते हैं। यह मंत्र केवल पूजा पाठ का विषय नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन प्रस्तुत करता है। आज के युग में जहां मनुष्य मानसिक अशांति, तनाव, भ्रम और असंतुलन से घिरा हुआ है, वहां यह मंत्र जीवन को दिशा देने वाला प्रकाश स्तंभ बन जाता है। मंत्र का सरल अर्थ है, ज्ञानी पुरुष उस सर्वज्ञ, महान और सब कुछ जानने वाले परमात्मा के साथ अपने मन तथा बुद्धि को जोड़ते हैं। वही एक परमात्मा संपूर्ण यज्ञ रूप कर्मों को व्यवस्थित करता है, सब मार्गों और क्रियाओं का ज्ञाता है। उस सविता परमेश्वर की महिमा अत्यंत महान और स्तुति के योग्य है। श्रोताओ, यह मंत्र मानव जीवन का गहन रहस्य प्रकट करता है। संसार में वही व्यक्ति महान बनता है जो अपने मन और बुद्धि को परम सत्य से जोड़ता है। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। यदि मन इंद्रियों के पीछे भागे तो पतन होता है, और यदि वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाए तो उत्थान होता है। ऋषि कहते हैं कि विद्वान लोग अपने मन

और बुद्धि को परमात्मा में लगाते हैं। केवल भावनात्मक भक्ति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विवेकपूर्ण बुद्धि भी आवश्यक है। इसलिए मंत्र में मन और धिया दोनों शब्द आए हैं। इसका अर्थ है कि मनुष्य को भावना और बुद्धि दोनों का समन्वय करना चाहिए। परमात्मा बृहद हैं, अर्थात अनंत हैं, वह विपश्चित हैं, अर्थात सब कुछ जानने वाला है। वही संपूर्ण संसार की व्यवस्था चलाता है। सूर्य का उदय अस्त, पृथ्वी की गति, ऋतुओं का परिवर्तन, शरीर की क्रियाएं, सब उसी की व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होते हैं। श्रोताओं, मनुष्य के जीवन में मन और बुद्धि का अत्यंत महत्व है। मन इच्छाएं उत्पन्न करता है और बुद्धि निर्णय लेती है। यदि मनुष्य का मन दूषित हो जाए तो उसका जीवन पतन की ओर चला जाता है। यदि बुद्धि भ्रमित हो जाए तो सही और गलत का निर्णय कठिन हो जाता है। इस मंत्र में ऋषि प्रेरणा देते हैं कि मन और बुद्धि दोनों को परमात्मा के ज्ञान से जोड़ना चाहिए। जब मनुष्य ईश्वर के सत्य ज्ञान को अपनाता है, तब उसका जीवन संतुलित बनता है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई विद्यार्थी अपना मन पढ़ाई में न लगाए तो वह सफल नहीं हो सकता। केवल पुस्तक सामने रखने से ज्ञान नहीं आता। उसी प्रकार यदि बुद्धि विवेकहीन हो जाए तो व्यक्ति गलत संगति, नशा, हिंसा या अधर्म में फंस सकता है। इसलिए वैदिक शिक्षा मन और बुद्धि दोनों के शुद्धिकरण पर बल देती है। श्रोताओ, युंजते शब्द युंज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। यही योग शब्द का मूल है। योग का वास्तविक अर्थ केवल आसन करना नहीं है, बल्कि अपने मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़ना है। जब मनुष्य सत्य, धर्म, संयम और सदाचार का पालन करता है, तब वह वास्तविक योगी बनता है। योग का उद्देश्य मन को स्थिर बनाना और आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाना है। आज संसार में तनाव, चिंता, मानसिक विकार बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य का मन बाहरी भोगों में उलझ गया है। वैदिक योग सिखाता है कि मन को भीतर की ओर मोड़ो और ईश्वर के प्रकाश से जोड़ो। श्रोताओं, मंत्र में विप्रा शब्द आया है। वैदिक दृष्टि में विप्र वह है जो ज्ञानवान हो, विवेकशील हो और सत्य का अनुसरण करे। केवल जन्म से कोई विप्र नहीं बन जाता है। ज्ञान, चरित्र और सदाचार से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को धारण करता है, दूसरों का कल्याण करता है और ईश्वर का चिंतन करता है, वही वास्तविक विप्र कहलाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी कहा कि मनुष्य कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। वेदों का यही संदेश सामाजिक समता और मानवता की भावना को मजबूत करता है। श्रोताओ, आज का मनुष्य बाहरी सुख सुविधाओं से घिरा हुआ है, परंतु भीतर से अशांत है। मानसिक तनाव, अवसाद, हिंसा और स्वार्थ बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण मन और बुद्धि का असंतुलित है। यह मंत्र सिखाता है कि मनुष्य को अपने मन और बुद्धि को सत्य और परमात्मा से जोड़ना चाहिए। जब जीवन में आध्यात्मिकता आती है, तब संतुलन आता है। आज शिक्षा केवल रोजगार तक सीमित हो गई है। वैदिक शिक्षा चरित्र निर्माण पर बल देती है। यदि आधुनिक शिक्षा में वैदिक मूल्यों का समावेश हो जाए, तो समाज में नैतिकता और शांति बढ़ सकती है। श्रोताओ, यह वैदिक मंत्र मानव जीवन के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और मार्गदर्शक है। इसमें मन, बुद्धि, ज्ञान, योग, यज्ञ

राज्यों और परमात्मा के गहन संबंध को स्पष्ट करता है। ऋषि बताते हैं कि ज्ञानी पुरुष अपने मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़ते हैं और उसी से जीवन में प्रकाश प्राप्त करते हैं। परमात्मा महान सर्वज्ञ

0: यह मंत्र अत्यंत प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि वास्तविक सुख बाहरी भोगों में नहीं बल्कि संयमित मन, जागृत बुद्धि और ईश्वर के प्रकाश में है। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन और बुद्धि को श्रेष्ठ विचारों से जोड़े, वैदिक आदर्शों को अपनाए और अपने जीवन को यज्ञमयी बनाए। यही इस मंत्र का वास्तविक संदेश है और यही मानव जीवन की सच्ची उन्नति का मार्ग है। प्रिय श्रोतागण, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। आशा है कि आज के वैदिक संदेश से आपको अवश्य ही लाभ एवं मार्गदर्शन मिला होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी में श्रीमती अंजू जी का विशेष योगदान रहा, उनके प्रति कृतज्ञता। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नवीन प्रस्तुति के साथ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

शक्तिधारा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो मॉरिशस पर। श्रोताओं, आज मंगलवार का दिन है और महावीर को समर्पित ये दिन ईश्वर भक्ति के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं हनुमान चालीसा का श्रवण करते हुए। दिनचर्या का काम करते करते ईश्वर की भक्ति करना भी भक्ति का ही एक रूप है। तो आइए हनुमान जी का नाम स्मरण करते हैं, हनुमान चालीसा का श्रवण करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

हनुमान जी का नाम स्मरण कर लिया, अब हनुमान जी के प्रिय भगवान, प्रिय इष्ट भगवान श्री राम का नाम जपन करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना की जाए तो ईश्वर दर्शन दे ही देते हैं। जिस प्रकार से हमारे चरण हमें केवल मंदिर तक ले जाते हैं, पर हमारे आचरण ही हमें प्रभु दर्शन करवाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मन में सदैव ईश्वर की भक्ति करते रहें। सभी का कल्याण हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, बस यही प्रार्थना हम ईश्वर से सदा करते रहें। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे आज के इस अंतिम भजन के साथ, इस राम स्तुति के साथ। और आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही मंगलमय रहे, ऊर्जाजनक रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए अनुमति। 11 बजे के समाचारों के बाद आप विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का आनंद उठा पाएंगे। तो इसी के साथ नमस्कार।

0: 9 जून का दिन स्टूडियो में आगे विद्यमान लेकर संक्षिप्त समाचारों से मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को नमस्कार। 5 महीनों में ऑनलाइन उत्पीड़न के 742 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस वर्ष 1 जनवरी से 1 जून के बीच 1000 से अधिक महिलाएं सोशल मीडिया की शिकार हुई हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण को मजबूत करने पर विचार कर रही है। देश भर में कई महीनों के इलाकाई परामर्श के बाद विजन 2050 पहल एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। नागरिक बैठकों का चरण इस सप्ताह पोम्पलमुसा जिले के प्लेंडीपापाई में समाप्त हो गया। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने तिजोरी मामले में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम के खिलाफ अदालती कार्यवाही को रोकने का आदेश दिया है। वे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट द्वारा निर्धारित कानूनी सीमा से अधिक नकद भुगतान प्राप्त करने से जुड़े 23 आरोपों का सामना कर रही थी। और विदेश में फिलीपींस में आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कारण सोमवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 35 हो

0: कई जब दक्षिणी फिलीपींस के एक प्रांत में मुख्य रूप से भूकंप के कारण हुए भूस्खलन की वजह से कम 17 लोगों की जान चली गई। तो इन खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। ताहिरबाग सेंट्रल प्लेनवेट पोटली में 90 साल के 90 ईयर्स ओल्ड के जनाब यूसुफ ओलाम मोहम्मद तुरावालालू इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के 3:30 बजे ताहिरबाग सेंट्रल प्लेनवेट पोटली से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए रिश्ते की मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 3:30। राय रोड गांगुब में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री बसंत लोलचंद, जो सुनील नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर राय रोड गांगुब से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। पंचम रोड लापोत प्रोविडेंस पुस दु फ्लाक में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लीलावती नाहवा पैदाशी नाम कोयला जो शांति नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3:30 बजे उनके बेटे जगदीश नागवा के घर पंचम रोड लापोत प्रोविडेंस पुस दु फ्लाक से उठाकर मोलोबें पॉइंट दु फ्लाक की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: शम्मे फरोज़ा।

सदक़ल्लाहु अज़ीम। अभी आप समात फरमा रहे थे सूरह अलवाक़िया की तिलावत। ए पाक परवरदिगार, हमें इस तिलावत कुरान पाक का सवाब अता फरमा और हमें कसरत से तिलावत की तौफीक दे। आमीन।

रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहिज्जा का मुक़द्दस महीना है। अल्लाह उसके रसूल ने जिनको रिस्क़े हलाल तैयब व ताहिर अता किया साहब निसाब हुए और क़ुरबानियाँ अदा कर ली, और जिन हज़रात को अल्लाह उसके रसूल ने दावतें दी मक्के मुकर्रमा मदीने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज और ज़ियारत रसूल वसल्लम से फ़ारिग होकर हुज्जाज कराम अपने अपने वतन अज़ीज़ की तरफ वापस हो रहे हैं। सबसे पहले हम दुआ करेंगे कि मौला ताला इन हज्जाज कराम के हज को हज मबरूर और ज़ियारत नबी करीम सल्लम को मकबूल व मंजूर फरमा कर पूरी ज़िंदगी हज पर और जो सीख कराए हैं उस पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और क़ुरान ने जैसा कहा, फ़ला रफ़ा वला फ़ुसूक वला जिदाला फ़िल हज, उस पर भी हर मोमिन को अमल की तौफीक अता हो। यानी बुराई, गीबत, चुगलखोरी, झूठ, इन सब से हर वक्त बचना हर मोमिन पर फ़र्ज़ है, लेकिन हुज्जाज कराम पर अब डबल ड्यूटी हो गई है। कदम कदम पर अपने आप को बुराइयों से बचाएं और कदम कदम पर नेकियों को अपने नामे आमाल में जमा करने की कोशिश करें। अज़ीज़ान मोहतरम, ये क़ुरबानी हमें बहुत कुछ पैगामात देकर जा रहा है। मिसाल के तौर पर ये 3 दिन की क़ुरबानी एक बंदे मोमिन मोमिनात के लिए एक ट्रेनिंग है। यानी जिस तरह आपने सुन्नत इब्राहीम व इस्माईल पर अमल किया, अब वैसे ही हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए कि क़ुरबानी के बाद जिससे हमने अपने हिस्से में से फिर 3 हिस्से किए, एक अपने लिए है, एक अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए है और एक उम्मत मुस्लिमा के गरीब मिस्कीन मोहताज के लिए है। उसे और आसान ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आपका हिस्सा मर्शन रुपीज़ में 15,000 का हुआ तो इसके 3 हिस्से करें, यानी 5,000 आपका, 5,000 आपके अज़ीज़ व अक़ारिब का और 5,000 गरीब यतीम मिस्कीन का। कहने का मकसद, जिस तरह गोश्त के 3 हिस्से करते हैं तो उस वक्त जहन से घमर व गुरूर ख़त्म हो जाता है कि पूरा गोश्त मेरा ही नहीं है बल्कि हुक्म रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, एक मेरा है, एक मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब का, एक गरीब यतीम मिस्कीन का। यहाँ से हमें सूफ़िया कराम ने, उलमाए राशिदीन हक़ मुबीन ने हमें क्या सबक दिया है। ये सिर्फ 3 दिन का मसला नहीं है बल्कि इसको रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें कि अगर आप काम कर रहे हैं या आप नौकरी पेशा में हैं, महीने के आखिर में तनख्वाह मिली या तिजारत कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जो कुछ उसमें अल्लाह ने खैर व बरकतें दी, तो दोनों से मेरी गुजारिश है, चाहे वो नौकरी

पेशावर हों या तिजारत करने वाले हजरात हों। अगर आप चाहते हैं कि आपके उम्र में रिस्क में हमेशा बरकतें रहें,

अपनी आमदनी अपने मुनाफे के पैसे से अपनी तनख्वाह में से आप ये ना ख्याल करें सब कुछ मेरा है, बल्कि उसमें भी आप ये ख्याल करें कि मेरा है, मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब का भी मेरी तनख्वाह में हिस्सा है, ग़रीब यतीम मिस्कीन का भी इसमें हिस्सा है। इसी तरह तिजारत करने वाले हज़रात, बिजनेसमैन, ताजिर हज़रात भी ये ख्याल करें कि मुझको जो कुछ रब दे रहा है ये सब मेरा अकेला नहीं है, इसमें मेरा है, मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब का है और ग़रीब यतीम मिस्कीन का भी हक़ है। अगर ये ख़याल करके आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुश्वारियाँ आपसे दूर होंगी, मुश्किलात आपके करीब नहीं आएंगी और ज़हनी सुकून होगा, दिल को इत्मीनान होगा, क़ल्ब को राहत होगी। आप यकीन माने, अहले ईमान से पूछें, अहले तक्वा से पूछें कि जब वो तकसीम करते हैं, चाहे गोश्त हो, चाहे राशन की शक्ल में हो, चाहे पैसे हों, अपने रिस्क हलाल से अपने लिए रखा, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए रखा और ग़रीब यतीम मिस्कीन को नहीं भूले, तो सूफ़िया अकराम ने जो बयान फरमाया वो ये है कि अज़ीज़ व अक़ारिब को दिया आपने तो उनका दिल खुश हुआ, और जब दिल खुश हुआ तो उन्होंने आपके रिस्क हलाल की बरकत के लिए खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर दुआएं की। यही हाल यतीम गरीब मिस्कीन का जब उसे मिला, उसने खाया पिया, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा किया, तो अब उसका हर सांस आपके लिए दुआगो है। दुआएं वो होती हैं जिनसे तकदीरें बदल जाती हैं। तो आपने एक तरीक़े से अपने अज़ीज़ व अक़ारिब गरीब मिस्कीन का हमेशा ख्याल रखना शुरू कर दिया तो अल्लाह के हुक्म पर भी अमल हुआ, सुन्नत नबी अदासल्लम पर भी अमल हुआ और अहले बैते अतहार, असहाब रसूल, अलियाए कामलीन के देव सबक पर भी अमल हुआ। अब आपके लिए दुआओं के रहमतें, बरकतें, दुआओं की बारिशें आपके लिए हो रही हैं, तो वो दुआओं की बरकत से अल्लाह आपकी उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा, आपके रिस्क में भी बरकत अता फरमाएगा और तमाम बला मुसीबतों को दूर करेगा। अज़ीज़ान मुहतरम, क़ुरबानी एक इबादत है। इसी तरीक़े से अज़ीज़ व अक़ारिब पर ख़र्च करना ये भी एक इबादत है। ग़रीब यतीम मिस्कीन की ख़बर गिरी रखना, उनका हाल चाल पूछना ये भी एक इबादत है। तो जब आप ये इबादतें कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है इसका सिला भी आपको मिलेगा। दूसरा सबक क़ुरबानी ये हमको दे के जा रहा है कि जिस तरह हज़रत सैयदना इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने अपने वालदे ग्रामी हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का अदब और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर की, ये हमको इस क़ुरबानी से सीखने की ज़रूरत है और सीख कर अपने बच्चों के दरमियान शेयर करने की ज़रूरत है।
उन्हें इस

0: वाक़े को बार बार सुनाया जाए और क़ुरान हकीम का 23वां सिपारा सूरह सफ़ात की आयत मुबारका जो हज़रत इब्राहीम व इस्माइल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी के ताल्लुक़ से बाप और बेटे की गुफ्तगू हुई और उसको भी सुनाकर उन्हें समझाया जाए कि देखिए एक बाप ने अपने बेटे को बहुक्म खुदा क़ुरबान करने के लिए तैयारी कर ली। पहला सबक यहाँ मिलता है कि रब की मोहब्बत के सामने न कोई दौलत है, न कोई औलाद है, न कुछ है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जहाँ आ जाएगी, उसका हुक्म आ जाएगा, बीवी बच्चे आल औलाद सब एक किनारे, हम लब्बैक कहेंगे अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर। यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया और करके दिखाया कि रब ने जब हुक्म दिया क़ुरबानी करो, पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, फिर हुक्म आया जो तुम्हें सबसे प्यारी क़ुरबानी हो, जिसे तुम सबसे ज़्यादा अज़ीज़ रखते हो, इसी को क़ुरान हकीम ने बयान किया, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हें हरगिज़ भलाई नहीं मिलेगी जब तक कि वो चीज़ जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते हो अल्लाह की राह में क़ुरबान न करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी देकर ये सबक दिया कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सामने आल औलाद कुछ भी नहीं। और हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सबक दिया जो आज के दौर में हम पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेट हो रहा, फिट हो रही है कि आज के दौर में हमें अपने बच्चों को अदब कैसे सिखाया जाए। तो क़ुरान पढ़ाइए और वाक़ियात अंबिया मुरसलीन सुनाइए कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उफ़ नहीं कहा और कहा मेरे वालदे मोहतरम, जिसे आपको हुक्म मिला है आप वो कीजिए, इंशाअल्लाह हमें सब्र करने वाला पाएंगे। तो इस आयत मुबारका के तर्जमे की रोशनी में हमें क़ुरबानी से भी सबक सीखना चाहिए कि माँ बाप के सामने हमेशा सर खम करके यानी सर झुका के अदब के साथ बात करना चाहिए। वहाँ तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मीना की वादी में गर्दन ही झुका दी, मेरे वालिदे मोहतरम वो कीजिए जिसमें जिस बात का आपको हुक्म हुआ। तो हम लोगों को सीखना चाहिए, औलादों को सिखाना चाहिए कि किस कदर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदे मोहतरम हज़रत इब्राहीम की अलैहिस्सलाम की तज़ीम की, हमको भी ऐसे ही तज़ीम अपने वालिद और वालदा की करनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा, जो दो चीज़ें आज हमने बयान की, अल्लाह उस पर हमें आपको पूरे उम्मत मुस्लिमा को और हर इंसान कामिल को अमल की तौफीक अता फरमाए और इस मुल्क मॉरिशस में अमन व सुकून, आलम इस्लाम में अमन व सुकून अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला इन कलिमात को कबूल फरमा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौज़ सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब व इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक सबक आमोज़ बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं चंद ऐलानात की तरफ। सनीचर 13 जून, जी हाँ, सनीचर 13 जून आलिमिया कॉलेज हाईलैंड्स फिनिक्स में 4:45 यानी 3:45 PM से 6:30 बजे तक उर्स शरीफ मुबल्लिगे आज़म मौलाना शाह मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह का एहतमाम किया जा रहा है। इसके अलावा जुम्मा 12 जून सुबह 10 बजे

यूबिया रिजविया पोर्ट लुइस निकोले रोड में शलापा की सरपरस्ती में बाद नमाज ज़ोहर उर्स शरीफ मौलाना अयूब रिजवी का अहतमाम किया जा रहा है। तमाम खवातीन को शिरकत की दावत है। और सनीचर 13 जून सुबह 10 बजे शान रसूल मस्जिद लागी लॉज पोर्ट लुइस में आलिमा सैयदा उनाजा फातिमा की सरपरस्ती में 11वीं शरीफ का अहतमाम किया जा रहा है। तमाम खवातीन को शिरकत की दावत है।

मौजूद सामीन, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। शुमेगनिये से सायरन और आमद लालित, मरहूम इलियास दुगंदर, मरहूम मुतलिब दुगंदर, मरहूम दाऊद लालित, मरहूमा आसिया मुदाबकस, मरहूमा जैनुल सुपाची, मरहूमा खैरुन्निसा साहिबन के लिए ईसाले सवाब की गुजारिश कर रहे हैं। जी हाँ, शुमेगनिये से सायरन और आमाद। इसके अलावा फिनिक्स से नाजिया दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रही हैं। मरहूमा वालदा शाहिला अस्मा भी जुगाम के लिए, मरहूम वालिद शाहिद जुगाम, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, पुप्पो और इसके अलावा तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रही हैं। और सैंपल से रियाज और रिहाना तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रहे हैं। और तमाम मरीज़ों जो कि इस वक्त हस्पताल में हैं, उनके लिए सेहत जमील की दुआ कर रही हैं और एक कलाम की फरमाइश भी की है। इसके अलावा बड़ी नाना नानी नानी ज़ुबैर जूलिया बुगन गुकीद और जुमन फैमिलीज़ तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रहे हैं। और वो तमाम लोग जो बीमार हैं उनके लिए शिफाए कामला की दुआएं भेज रहे हैं। इसके अलावा उन तमाम बच्चों के लिए दुआगो हैं जो किसी भी बुरी आदत में मुब्तला हैं, कि अल्लाह पाक तमाम बच्चों की हिफाजत फरमाए और उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।

मधुर गणेश भक्ति गानिया नंद रसिको हो चलाई हुया सुरचंद्रिका अनुराधा पौडवाल यंजा वजातल श्रावणात घन नीला बरसला।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: 毛里求斯广播电台听众朋友您好，欢迎收听毛里求斯广播电台6月9号的节目，我是您今天的节目主持人张大威。今天是歌曲节目，今天所播放的歌曲有天空、相信自己、国家、爱就爱了，希望在这30分钟的节目中有您喜欢的歌曲。

单怎么愁，好汉唔尽条。您所收听的是毛里求斯广播电台八一九频道。

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक रेडियो मॉरिशस पे। फ़ोन नंबर आपको पता ही है, 4028085। हमारा व्हाट्सअप नंबर है वह 5251700552517005। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। वैसे हमेशा की तरह साथ निभाने के लिए धन्यवाद। आपके व्हाट्सअप मैसेजेस जो है हमें प्राप्त हो रही हैं, तो चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गीत है सभी सुनने वालों के नाम।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं और कार्यक्रम की अगली भेंट में हमारे साथ काफ़ी लोग जो है जुड़ चुके हैं। तो चलिए कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ इस समय मां राबिया की रहने वाली आप अमृता जी है, साथ में अनीता, करुणा, कविता और आपके समस्त परिवार भी जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए ये अगला गीत जो है बहुत ही प्यारा सा गीत है। फिल्म का नाम है सूरज और इस फिल्म से लिया गया ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो है जाएगा आप सभी सुनने वालों के लिए भी।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। इस समय विश्वानी डुमेन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप वाकवा से हैं। तो चलिए अगला गीत जाएगा आपकी बहनों के लिए। इंदिरा है, शारदा है, आपकी सहेलियों हैं नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता गजाधर भी है। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत हम सुन पाएंगे।

बहुत ही प्यारा सा गीत इस समय आप सुन रहे हैं श्रोताओं, सभी बंधु परिवार जो कि त्रियोले के रहने वाले हैं और हमारे साथ काफ़ी लोग भी जुड़े हुए हैं और इस समय सुदेवी जी है वाकवा की रहने वाली, ये गीत जाएगा त्रियोले के सभी सुनने वालों के लिए। दीदी ललिता है, कुशल परिवार है, आत्माराम भैया है, दीदी सुनीता है, शोभा देवी ना मालंगा के, विकास, अक्षय, स्नेहा, कीर्ति, कृषिका, लक्षिता, रामरतन परिवार, रामगुलाम परिवार, कुआगू परिवार और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के नाम भी ये प्यारा सा गीत हम चला रही है।

जी चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं अगली भेंट की ओर हम बढ़ेंगे। हमारा अगला गीत जो है फिल्म मोहरा से लिया गया। हमारे साथ राजन लक्ष्मण जी है, आप लफलोका की रहने वाली है, तो यह गीत जो है जाएगा आपकी पत्नी माला के लिए। आपकी बेटी है प्रगति, साथ में है आपकी बेटी प्रार्थना, बहन है मानती, साथ में है आपकी भांजी उर्मिला तुलसी। तो समस्त लक्ष्मण परिवार के लिए ये अगला गीत हम चलाएंगे।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अर्षिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। नेत्रहीन व्यक्तियों की शिक्षा को विकेंद्रीकृत करना यानी डिसेंट्रलाइज करना, प्रशिक्षण के लिए आयु सीमा बढ़ाना तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराना, इन सभी प्रस्तावों पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है। दृष्टिहीन वालों के लिए समर्पित शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पुनर्गठन सरकार के एजेंडा में शामिल है। लोइसला ट्रस्ट फंड के प्रशासन ने पिछले सप्ताह सरकार को इस संबंध में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मॉरिशस दुनिया का पहला गन्ना चीनी उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है, जिसकी सभी चीनी मिलें बोसिको प्रमाणन प्राप्त कर चुकी होंगी। ये आधिकारिक प्रमाणन स्थिरता और टिकाऊ विकास की गारंटी माना जाता है, जो पुष्टि करता है कि उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और अनुकूल है। ये इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर उठाए गए कदम सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। इसी के तहत मॉरिशस शुगर सिंडिकेट को बोसिको इंस्पायर अवार्ड 2026 में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। गंगा तालाब प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का स्वागत करता है, लेकिन हाल के कई घटनाक्रमों के बाद अधिकारी अब इस प्रतिष्ठित स्थान पर आने वाले आगंतुकों की गतिविधियों को बेहतर ढंग से विनियमित करना चाहती हैं। इसी उद्देश्य से कल कला एवं संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में स्थल का दौरा किया गया, ताकि प्रस्तावित उपायों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा सके। ये वर्तमान ब्रिटिश संगीत जगत के सबसे चर्चित समूहों में से एक हैं। जाज, आफ्रोबीट और हाई लाइफ संगीत के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध संगीत समूह कोको ने 6 जून को पहली बार मॉरिशस में प्रस्तुति दी। एस्यू फ्रांसे दे मॉरिस में आयोजित ये कार्यक्रम उनके क्षेत्रीय दौरे के समापन पर हुआ, जिसने स्थानीय दर्शकों का भरपूर दिल जीता। तो इसके साथ अब हम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। इसराइल ने कहा कि ईरान समर्थित मिलिशिया और राजनीतिक संगठन हिजबुल्ला के खिलाफ उसका युद्ध लेबनान में जारी रहेगा। ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेट दागे, जो ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद अमरीकी इसराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत के बाद हुआ था। इसके जवाब में इसराइल ने लेबनान पर एक हवाई अभियान चलाया, जिसमें 3,600 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिनमें कई नागरिक भी शामिल हैं। साथ ही इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, और जहां कई गांव पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे, सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए।

0: बसें रोड रिव्या जोंपो में बसें रोड रिव्या जोंपो में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के जनाब फिरोज मेहर अली जिन्हें फिरोज के नाम से लोग ज्यादा जानते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज रात 8:30 बजे इनकी बेगम सफीदा मेहर अली के मकान रिव्या जोंपो से उठाकर दफनाने के लिए पॉइंट लास्को का कब्रस्तान ले जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8:30 PM। लोरेटो कॉन्वेंट स्ट्रीट क्यूपिप में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री जय प्रकाशस रामसरन जिन्हें जगदीश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती शांतिबाई रामसरन के घर क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। सुल्फिगनू नंबर पाँच वाकुआ में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मरोध देवी जिन्हें राजेश के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे कुशल देवी के घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV.
2: तो चलिए श्रोताओं, सपहर के 3:05 हुए हैं। आइए सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। बोवालों और मेबर के रहने वाले निवासों को जिनमें है गोपीलाल लेन, रामनारायण लेन, एम्पास उफ्रे, टोंबो लेन साथ में आले गेट, गोपाला लेन, डुलाव लेन, रू जू बांबू, रू नियो, रू सुफ्लर, अब्दुल रजाक मोहम्मद स्ट्रीट के कुछ भागों के रहने वाले निवासों को, फिर है न्यूग्रोव इंडस्ट्रीज बोवालों के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 11 जून 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे इसी चैनल पर।

तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं और प्यारा सा गीत जो है मोन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है एक ख्वाया से, तो ये गीत जाएगा उनके सभी बच्चों के लिए और उनके पति है जो सभी फुकियाचंद परिवार है एक ख्वाया के रहने वाले। तो चलिए ये प्यारा सा गीत जो है उनके नाम हम कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत है और इसी गीत पे हम नाम जोड़ेंगे। केश जी कथबोन की रहने वाली, उनकी दो बेटियां हैं, नेहा है, नितिशा है और उनके दामाद है एल्विन, और उनके समस्त परिवारों के लिए भी ये प्यारा सा गीत जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

चलिए बहुत ही प्यारा संगीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म वापस से लिया गया। स्वस्ति जी कथोबोन की रहने वाली है, उनकी बेटी लेखानी के लिए, साथ में है उनके बेटे सुमित भी के लिए। तो चलिए श्रोताओं, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगला गीत सुनीता जी के लिए, उनके सभी बहनों के लिए, बहुत ही प्यारा सा गीत है। ये गीत जो है जाएगा उनकी बहनों के नाम, अमृता है, विमला है, वीना है, तो इन सभी बहनों के लिए ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। और इस समय हमारे साथ अनिता जी है, पिछवेजे सैपिया की रहने वाली है, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। उनकी तीन बेटियां हैं नेहा, और उनकी तीन बेटियां हैं काजल, शीतल, दीक्षा, उनके दामाद भी हैं और साथ में है उनके सभी बच्चों के लिए, और उनके पति है बालदेव जी। तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं इन सभी श्रोताओं के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम है हम साथ साथ है, और ये प्यारा सा गीत जो है इन सभी श्रोताओं के लिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं और अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। अगला गीत जो है जाने वाला है त्रियोले की रहने वाली आप है। जी हाँ, त्रिवेणी जी हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए अगला गीत उनके पति अनिल के लिए, सभी मोहन परिवार के लिए ये प्यारा सा गीत हम चलाने वाले हैं। और इसी गीत पे हम नाम जोड़ेंगे माँ गायत्री जी का, नुवेल फ्रांस की रहने वाली, और साथ में है उनके बेटे अजय। तो इन सभी लोगों के नाम जो है, बहुत ही खूबसूरत सा गीत द बर्निंग ट्रेन फिल्म से लिया गया ये सदाबहार गीत आप सभी सुनने वालों के लिए भी।

तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं और अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। अगला गीत हमारे साथ इस समय हमारे साथ शोभा जी है पॉम्पलर मिसेज की रहने वाली। उनका ये मनपसंद गीत जो है फिल्म एक नज़र से लिया गया, उनके नाम हम करेंगे।

0: मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। ये रेडियो मॉरिशस है। स्टूडियो की घड़ी में 3:32 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में तो चलिए श्रोताओं अगली भेंट की ओर हम बढ़ेंगे। संजय जी है पोर्टविस के रहने वाले। उनका ये मनपसंद गीत फिल्म दोस्त से लिया गया। ये सदाबहार गीत आप मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की मीठी आवाज़ों में सुन पाएंगे।
1: कैसे जीते

चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना, संजय जी की पसंद पे पोर्टवीज के रहने वाले हैं आप। ये गीत आपके भाई अजीत के लिए और आपकी बहन है आशा। तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत जो है फिल्म जुनून से लिया गया और हमारे साथ अनीता जो है फिका फ्लाक की रहने वाली। ये गीत जाएगा उनके पति राज के लिए, उनके बेटे अंतिश से, साथ में है अंकुश, बहू मनीषा, आशिमा है, उनकी पोती है हिमेशा, साथ में है आधिया, उनके पोते हैं अंश और उनके समस्त परिवारों के लिए। तो चलिए, प्यारा सा गीत फिल्म जुनून से लिया गया आप अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में सुन सकेंगे।

जी चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। फिल्म का नाम है सुहाना सफ़र और ये प्यारा सा गीत जो है मुकेश की आवाज़ में आप सुन सकेंगे। और फरमाइश करने वाली है हमारे साथ इस समय आफेज जी है और ये गीत जाएगा उनके शोहर की याद में।

सफर। चलिए हमारे साथ इस समय इंदिरा जी है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके वेडिंग एनिवर्सरी पर ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त एमबीसी पूरी टीम की तरफ से उनको और उनके पति है कृष्णा, समस्त रूपन परिवार है पेंदे पपाए के और सिसगन परिवार है न्यूकोव के रहने वाले। तो चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपके नाम हम करेंगे।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम की अंतिम भेंट में ये प्यारा सा गीत जाएगा रेहाना जी के लिए। फिनिक्स की रहने वाली, साथ में है विद्या जी, है न्यूनपाव की रहने वाली, हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये गीत जाएगा उनके सभी परिवारों के लिए, और ख़ासकर ये गीत जाएगा उनके उनकी चाची है कुमारी, उनकी बहन है सती, साथ में है सुरेखा, बबीता और उनके सभी परिवारों के लिए। साथ में ये गीत जाने वाला है सुमति जी, सैन जुलियन की रहने वाली है, उनकी बहन है आरती, साथ में है सचित्ता, बबीता, रेखा, भाई सत्यम, भाभी उषा। तो इन सभी परिवारों के लिए ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं। साथ में है सरिता जी, है कथोबोन की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, और साथ में है रेहाना जी। और एक नाम हम जुड़ेंगे, हमारे साथ माला सुमारू जी है, और साथ में उनके पति सूर्यदेव जी, उनके सभी बच्चों के लिए भी कथोबोन के रहने वाले हैं आप। और साथ में ये प्यारा सा गीत सुरेखा जी के लिए, जो कि देपिने की रहने वाली है, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। गीता जी है पोफिया की रहने वाली, उनके पति है रोहित जी, आदित्य अरव जानवी, और साथ में है उनकी बहन मीला न्यूकोव की रहने वाली। तो चलिए अंतिम नजाना फिल्म निकाह से लिया गया ये सदाबहार गीत सभी सुनने वालों के नाम। कुछ ही घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं, आप तमिल भाषा में कलाईवानी के साथ कार्यक्रम सुन पाएंगे। हम मिलेंगे 5 बजे चंद पुराने गीतों को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे नमस्कार, शुभ संध्या।

चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 119 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो इस समय से लेकर शाम के 6 बजे तक हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत चंद पुराने गीत आप सुन सकेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया संगीत है। फिल्म का नाम है पॉकेटमार, और इस फिल्म से लिया गया गीत आप लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन पाएंगे। तो चलिए यादों का सफ़र, कुछ यादें जो है हम ताज़ा करने वाले हैं इस कार्यक्रम के ज़रिए।

चलिए प्यारे श्रोताओं, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। पुराने गीतों की मधुर धुनें जब कानों में पड़ती है तो यादों का एक खूबसूरत कारवा दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। तो चलिए, ये अगला गीत आपके लिए काली टोपी लाल रुमाल फिल्म से लिया गया।

तो चलिए श्रोताओं, चंद भूले बिसरे गीत आपकी सेवा में इस कार्यक्रम के अंतर्गत। यादों का सफर जब पुराने गीतों के साथ चलता है तो हर लम्हा और भी खूबसूरत बन जाता है ना।

भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम जो है हम जारी रख रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। अगर इस समय रेडियो ऑन किया हो तो आइए कुछ पल निकालिए, अपने पसंदीदा पुराने गीतों को सुनिए और यादों को उस प्यारी दुनिया में खो जाइए जहाँ हर धुन एक कहानी कहती है।

श्रोताओ, यादें कभी पुरानी नहीं होती और पुराने गीत कभी बेमानी नहीं होते। ये दोनों मिलकर दिल को सुकून देते हैं और हमें उन अनमोल पलों में फिर से जोड़ देते हैं जिन्हें हम हमेशा अपने दिल से संजो कर रखते हैं।

श्रुतियों पुराने गीत हर एहसास को फिर से जीवंत कर देते हैं। यही तो इन नगमों की खासियत है कि वक्त भले ही आगे बढ़ जाए लेकिन इनकी मिठास कभी कम नहीं होती।

श्रोताओं, कभी बचपन की मुस्कान, कभी किसी अपनों की याद, तो कभी बीते हुए सुनहरे पल, ये है भूले बिसरे गीत आपकी सेवा में। स्टूडियो की घड़ी में साढ़े पाँच बज रहे हैं और खूबसूरत गीतों का ये कारवा इसे हम जारी रख रहे हैं। वैसे कुछ गाने मेरी तरफ से हम चला रही हूँ और कुछ गाने जो है आपकी पसंद पे हम चला रहे हैं।

श्रोताओं कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, ये कहावत जो है बहुत ही मशहूर है। पुराने गीत समय के साथ पुराने जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनके एहसास कभी पुराने नहीं होते।

भुले बिसरे गीत 1950s के दौर के गाने बुलंद है इस कार्यक्रम में, एक से बढ़कर एक गीत आपकी सेवा में।

तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस MHz 919 की हर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। वैसे जब भी जिंदगी की भागदौड़ से मन थक जाता है तो पुराने गीत एक सुकून भरी शाम की तरह दिल को राहत देते हैं। इन गीतों में प्यार है, दोस्ती है, यादें हैं और जिंदगी के हर रंग की खूबसूरती भी है।

किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोंसले जैसी महान आवाज़ों ने ऐसे अनमोल नगमे दिए जो आज भी हर उम्र के लोगों की पसंद बने हुए हैं।

श्रोताओ 5:55 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में कुछ ही घड़ी में 6 बजने वाले हैं। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घनी मिला ली, चलिए अभी शाम के ठीक 6 बजे हैं।

मंगलवार 9 जून 2026 के इन सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अफ्रीका में एबोला महामारी की स्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर उठाए जा रहे कदमों पर

0: गौर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू की अध्यक्षता में आज बेन में एक अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी की बैठक लगी। सावधानी के तौर पर प्रभावित देशों से आने वाले मोर्शनों को अब से 21 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी NHDC के अंतर्गत एक नया विभाग स्थापित किया जाएगा जो उसकी सिंडीक प्रणाली का संचालन करेगा। इस बात की घोषणा मंत्री शकील मोहम्मद के आज इबन में प्रेस को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के स्तर पर लाए जा रहे सुधार से जवाबदेही, पारदर्शिता और बेहतर सेवा सुनिश्चित की जा सकेगी। देश का सबसे बड़ा जलाशय महोबा का करीब 2 लाख परिवारों को पानी पीने का पानी मुहैया करता है, लेकिन इस जलाशय का मौजूदा जल स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। इसके पीछे कारणों पर विस्तार इस बुलेटिन में। हमले रोकने के लिए ईरान और इजराइल के बीच बनी सहमति के बाद तेहरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को खोला गया। सऊदी अरब से हज यात्रियों के साथ कई उड़ानें तेहरान पहुंची। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। अफ्रीका में एबोला महामारी की स्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर उठाए जा रहे कदमों पर गौर करने के लिए आज बेन में एक अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी की बैठक लगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू की अध्यक्षता में लगी इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों, पुलिस और निजी सेक्टर के प्रतिनिधि शामिल रहे। ये बात उल्लेखनीय है कि सावधानी के तौर पर प्रभावित देशों से आने वाले मोर्शनों को अब से 21 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। इस पर ज्यादा जानकारी संतना पोंसोनो की रिपोर्ट पर करुणा लालू के विवरण के साथ।
1: रियोबेल रिक्रिएशनल सेंटर को क्वारंटीन केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया है और कर्मचारी अंतिम तैयारियों को पूरा करने में जुटे हैं। यदि लोकतांत्रिक कंगो गणराज्य, युगांडा और दक्षिणी सूडान के नागरिकों के लिए मॉरिशस में प्रवेश अस्थायी रूप से प्रतिबंधित हैं, फिर भी मॉरिशन नागरिकों और इन तीन देशों से आने वाले कुछ खास श्रेणी के यात्रियों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि उन्हें हवाई अड्डे से सीधे इस केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा जहां उन्हें 21 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। डॉक्टर फाजिल कोडाबुकस ने कहा उन्हें एक सैनिटेरी कॉरिडोर में भेजा जाएगा। एक सैनिटेरी इंस्पेक्टर उन्हें रियोबेल तक पहुंचाएंगे जहां एक मेडिकल टीम द्वारा उन पर निगरानी रखी जाएगी। डॉक्टर अकमेज मुलाबाकस ने कहा दिन में 2 बार तापमान लिया जाएगा। डॉक्टर और जिम्मेदार नर्स सुनिश्चित करेंगे कि यात्री में कोई लक्षण न हो। यदि लक्षण दिखाई दे तो संबद्ध स्पेशलिस्ट को सूचित किया जाएगा। फिर उन्हें चिकित्सा केंद्र तक भेजने का फैसला लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू की अध्यक्षता में आयोजित एक अंतर मंत्री स्तरीय बैठक में देश को एबोला वायरस से सुरक्षित रखने के लिए लागू विभिन्न प्रोटोकॉल की समीक्षा की गई। खास चिंता का विषय ये है कि फिलहाल इस बीमारी के लिए कोई स्वीकृति का उपलब्ध नहीं। डॉक्टर फाजिल कोडाबुकस ने कहा अभी के लिए कोई टीका नहीं, साझेदारों द्वारा इस वास्ते कड़ी मेहनत की जा रही है। मॉरिशस में इलाज लक्षण के आधार पर किया जाता है। यात्रियों की देखभाल, उपलब्ध दवाओं का भंडार, चिकित्सा कर्मचारियों की तैयारी, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई। कई प्रश्न उठाए गए और विभिन्न सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। बंदरगाह और हवाई अड्डे के लिए सुरक्षा उपाय पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं। बैठक में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि इसी प्रकार के प्रोटोकॉल होटलों में भी लागू किए जाएं। निजी स्वास्थ्य संस्थानों में इबोला के किसी भी उपचार की अनुमति नहीं होगी। जहाँ तक महामारी से प्रभावित इन तीन देशों के उन छात्रों का प्रश्न है जो मॉरिशस सरकार की छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, अधिकारियों द्वारा उनके लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।
0: इसी सिलसिले में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के प्रकोप के खिलाफ संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तेजी किए जा रहे हैं। पुष्ट मामलों की संख्या 550 और मृतकों की तादाद 101 तक पहुंच गई है। ये बीमारी पड़ोसी देश युगांडा तक भी फैल गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल की तरफ से $501 मिलियन की कॉन्टिनेंटल योजना शुरू किए जाने के बाद यूरोपीय संघ की संबंधी सहायता के लिए 5 मिलियन यूरो से ज्यादा की राशि जारी कर रहा है। रजनी बेकर की विवरण पर शहजाद जुमन की रिपोर्ट।

0: कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य को प्रभावित करने वाली महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय सहायता जारी है। यूरोपीय संघ ने 5 मिलियन रुपए से अधिक के अतिरिक्त फाइनेंसिंग की घोषणा की। इससे सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में मरीजों पर जांच कार्रवाइयां, निगरानी और उन्हें संभालने संबंधी सत्र बढ़ाए जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एबोला के बुंडीबुग्यो वायरस के फैलने से 550 मामलों की पुष्टि हुई है और 101 लोगों की मौत हुई है। इतुरी प्रदेश महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जाता है। यहाँ पर 94% मामले दर्ज। इसके अलावा पड़ोसी युगांडा में भी महामारी फैली हुई है, जहाँ पर 19 मामलों की पुष्टि हुई है और 2 लोगों की मृत्यु हुई है। फिर भी सैनिटरी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि इस स्तर तक कोई भी सामुदायिक ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। कंपाला के दौरे पर गए हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने युगांडा के जवाब की शीघ्रता की सराहना की और इसके साथ साथ कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ सरहद के बंद किए जाने पर फिर से विचार करने की अपील की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक तेद्रोस अधानोम गेब्रियोसिस ने कहा,
1: इबोला नीड्स कॉन्टैक्ट एंड इट्स नॉट लाइक कोविड, सो विद बेसिक प्रिकॉशंस मेनी कंट्रीज कैन प्रिवेंट केस फ्रॉम कमिंग और दे कैन मैनेज इट as soon as possible.
0: इलाके में दक्षिणी सूडान में चेतावनी बरकरार, वहां पर किसी मामले का संकेत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अधिकारियों की ओर से निगरानी बढ़ाई गई है क्योंकि प्रभावित देशों से वायरस के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है।
2: नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी NHDC के अंतर्गत एक नया विभाग स्थापित किया जाएगा जो उसकी सिंडिक प्रणाली का संचालन करेगा। इस बात की घोषणा मंत्री शकील मोहम्मद ने आज एबेन में प्रेस को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के स्तर पर लाए जा रहे सुधार से जवाबदेही, पारदर्शिता, बेहतर सेवा सुनिश्चित की जा सकेगी। इस सुधार योजना के बारे में निवासियों को जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा जलाशय महोबा का करीब 2 लाख परिवारों को पीने का पानी मुहैया करता है, लेकिन इस जलाशय का मौजूदा जल स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। ये देखा जा रहा है कि जलाशय हर साल ऐसी कठिनाइयों का सामना करता है, ऐसा क्यों, ये जानने के लिए हम थोड़ी देर में फिर से वापस आएंगे एक रिपोर्ट के साथ। फिलहाल के लिए खबरों को आगे बढ़ाती हैं। केएच रेटिंग्स अफ्रीका द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस का पब्लिक फाइनेंस मजबूती की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उच्च कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताएं अभी भी बजटीय संभावनाओं पर दबाव बनाए हुए हैं। हालांकि एजेंसी ने सार्वजनिक खर्चों पर बेहतर नियंत्रण के चलते वित्तीय अनुशासन में सुधार दर्ज किया है। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
3: केएच रेटिंग्स अफ्रीका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान मॉरिशस की सार्वजनिक वित्त में सकारात्मक प्रगति हुई। एजेंसी ने खास रूप से सार्वजनिक व्यय पर बेहतर नियंत्रण का उल्लेख किया। हालिया आंकड़ों के अनुसार बजट के संबंध में भी सुधार हुआ और कई खर्चों में कमी देखी गई। इस बीच भावी बजट की प्रस्तुति से कुछ दिन पहले अर्थशास्त्रियों ने इस पर चिंता व्यक्त की कि सार्वजनिक ऋण अब भी ऊंचा है और मार्च 2026 के अंत तक ये देश के सकल घरेलू उत्पाद का 89.5% तक पहुंच गया है। अर्थशास्त्री गिरीश आलगू ने कहा, GDP के करीब 90% कर्ज के साथ जनता की सुरक्षा के लिए सरकारी कदम सीमित हो जाता है। बाहरी झटकों से देश की मजबूती तभी होगी जब कर्ज नियंत्रित होगा। एक और अहम बात, देश की रेटिंग एक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम का आधार उसके कर्ज पर भी निर्भर करता है। अच्छी रेटिंग से निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और देश को बेहतर स्थिति में पूंजी प्राप्त होती है अच्छी दर में। यदि कर्ज ज्यादा हो तो रेटिंग भी कम होगी। इसके अलावा मध्य पूर्व में जारी तनाव भी चिंता का विषय है। एजेंसी के CEO के अनुसार यदि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और बिगड़ती हैं तो इसका असर मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि पर भी होगा। इससे टैक्स की आय में कमी आ सकती है और सब्सिडी तथा सामाजिक सहायता उपायों से संबंधित सरकारी खर्च बढ़ सकता है। सौरव चटर्जी ने कहा, एक सकारात्मक बात, बजट घाटा कम हो रहा है। GDP के 9.8% से 4.9% तक, लेकिन कर्ज सेवा लागत का भार ज्यादा से ज्यादा पब्लिक फंड पर

0: पर पड़ रहा है मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव और डर के बढ़ने की संभावना के चलते। केएच रेटिंग्स अफ्रीका ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 के दौरान कई ऋण भुगतान की समय सीमाएं पूरी होंगी। इस स्थिति से देश के उधार की लागत बढ़ सकती है, खासकर ब्याज भुगतान को लेकर। एजेंसी का निष्कर्ष है कि यद्यपि बजटीय मोर्चे पर प्रगति दर्ज की गई है, फिर भी सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में सरकार के वित्तीय गुंजाइश सीमित बनी हुई है।
1: जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी NHDC के अंतर्गत एक नया विभाग स्थापित किया जाएगा जो उसकी सिंडिक प्रणाली का संचालन करेगा, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी मंत्री शकील मोहम्मद ने आज इबन में आयोजित एक प्रेस संबोधन के अंतर्गत उन्होंने दी। इस सुधार योजना के बारे में निवासियों को जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए भी एक अभियान चलाया जाएगा। कुलदीप जियोफा की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
0: भवनों का रखरखाव, साझा क्षेत्रों की स्वच्छता, मरम्मत कार्य आदि NHDC आवासों में सिंडिक की अहम भूमिका होती है, लेकिन वर्षों के दौरान कई समस्याएं सामने आई हैं जिनमें वित्तीय कुप्रबंधन, निगरानी की कमी और बकाया योगदान शामिल हैं। हर महीने मकान मालिक सिंडिक के साझा कोष में योगदान देते हैं। सरकार भी प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए 200 रुपये का योगदान करती है। जल्द ही एक समर्पित टीम सिंडिक के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगी। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा,
2: avec l'argent que le gouvernement contribuait pour chaque household dans NHDC, il arrive à peu près autour du 40 millions de roupies. 44% de ce que gouvernement peut donner, l'IPAL vert paye salaire ban mom syndic, tandis que 37% seulement pour réparation et entretien. La réforme, c'est créer un compte qui appelle National Syndicate Fund Account à la NHDC. Le ministère pouvait verser un fonds mensuel selon le nombre d'unités. Chaque résidence pourrait avoir son propre dedicated account. La subvention gouvernementale ira directement à la NHDC Limited au lieu qu'il y ait un paiement à un syndic. Un département dédié au sein de la NHDC qui appelle le Housing Estate Management and Community Development.
0: सिंडिक प्रणाली में सुधार के तहत कई आवासीय परिसरों का निरीक्षण किया गया। अनेक मामलों में सिंडिक का न होना, प्रबंधन में पारदर्शिता का अभाव और कई स्थानों पर अवैध निर्माण भी पाए गए।
2: Qu'est-ce qui va changer pour les résidents? Les parties communes seront plus propres. Les aires de jeu seront entretenues. Et les pompes à eau pour fonctionner. Il n'y aura plus de coupures d'électricité dues à des factures de la CEB impayées. Il y aura des réparations mineures plus rapides via une équipe de la NHDC, de sa département dédié là, qui pourra intervenir plus rapidement. Pour une transparence totale, lors chaque roupie qui est capable de tracer, dans un système de comptabilité qui pour clair, net et transparent, qui paye aujourd'hui.
0: नई सिंडिक प्रणाली के बारे में मकान मालिकों को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। न्यू सोशल लिविंग डेवलपमेंट लिमिटेड के नए अपार्टमेंट भी इसी प्रणाली के अंतर्गत लाए जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री शकील मोहम्मद ने यह भी घोषणा की कि 8,000 सामाजिक आवासों में से अधिकांश इस वर्ष सौंप दिए जाएंगे।
1: रासायनिक उर्वरक के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के साथ साल दर साल जमीन की उर्वरता कम होती जा रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार जैविक पदार्थों, खाद और बायो फर्टिलाइजर के प्रयोग को बढ़ावा देकर मौजूदा प्रवृत्ति में सुधार लाने का विचार कर रही है। एग्रो इकोलॉजी खाद्य सुरक्षा की स्ट्रैटेजी योजना के मुख्य स्तंभों में से एक है। फ्लक्स स्थित फागे का मॉडल फार्म किसानों के बीच प्रोत्साहित की जा रही 100% जैविक खेती के तरीकों का एक ठोस उदाहरण है। इस मॉडल फार्म में नवीनतम और प्राकृतिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जिससे जमीन ज्यादा उपजाऊ बनती है और रासायनिक पदार्थों से रहित स्वस्थ सब्जियां पैदा की जा रही है। माधवी जगन्नाथ की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।

0: सूर्या और सत्या भाइयों का फ्लक स्थित फागे के मॉडल फॉर्म में दौरा। मकसद स्पष्ट है, वे पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से खेती कर रहे हैं। पारंपरिक तरीका नहीं बल्कि बायो का इस्तेमाल। पहले चरण के अंतर्गत कंपोस्ट के बारे में बताया गया, यही है स्वच्छ और नियमित उत्पादन की कुंजी।
1: फागे
0: की बायो ट्रेनिंग यूनिट के सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर वीना धर्म सिंह दोहारू ने कहा, कोई व्यक्ति कंपोस्ट के बिना बायो नहीं कर सकता है। एक संतुलित भोजन जरूरी है, इसलिए सूखे पत्तों के साथ हरी चीजें भी मिलानी चाहिए। सब मिलाकर कंपोस्ट तैयार किया जाएगा और खेती में इसका इस्तेमाल। एक अन्य अहम चरण जमीन की उपजाऊता मजबूत करने और खतरों को सीमित करने के लिए पैदावार को डाइवर्सिफाई करना। जब मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो जमीन पर दबाव बढ़ जाता है, तकरीबन एक ही प्रकार का खाद डालना चाहिए। पौधे में मिश्रित सब्जियां भी लगानी चाहिए, हर एक पौधे की अपनी अहमियत है। होड़ नहीं है बल्कि स्वाभाविक रूप से ये आते हैं। जमीन को नम और उपजाऊ बनाए रखने के लिए जमीन को तैयार करने की भी जरूरत होती है, सूखे पट्टे डाले जाते हैं। सूर्या और सत्या इससे भली भांति परिचित है। एक ऐसा फार्म जहां पर कीड़े आने के लिए आकर्षित हो जाते हैं, इस तरह फार्म अपनी प्रतिरक्षा खुद करता है। कई पौधे जैसे तुलसी अवैवाद जो हानिकारक कीड़ों से बचाव करते हैं और जैव विविधता भी मजबूत होती है। सौर्य प्रणाल्स से संचालित सेंसर भी हैं जिसके माध्यम से समझदारी के साथ अमूल्य संसाधन जल का प्रयोग किया जाता है। फागे के रिसर्च साइंटिस्ट राम वेंकटा स्वामी ने कहा, सोलर पैनल से सौर्य ऊर्जा उत्पन्न होती है और इससे सोलर पंप सक्रिय होता है जो बूंद बूंद सिंचाई में लाभदायक है। साथ ही मेट्रोलॉजिक स्टेशन का भी इस्तेमाल होता है जो इस मॉडल फॉर्म में है। मौसम संबंधी जानकारियों के आधार पर ही हिसाब करते हैं कि कितना चाहिए। बूंद बूंद सिंचाई से जमीन का भी रखाव हो जाता है क्योंकि पानी सीधा जड़ में ही जाता है। 2019 से ये फार्म पूरी तरह से बायो का ही इस्तेमाल कर रहा है। फ्लक के मॉडल फार्म की ओर से अन्य कृषकों को जागरूक कराने और प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। पेस्टिसाइड रेगुलेटरी ऑफिस की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि जिन फलों एवं सब्जियों का मूल्यांकन किया गया है इनमें से एक पंचमांश नॉन कम्प्लायंट है। इस तरह कृषि एवं पर्यावरण कृषि उद्योग मंत्रालय की स्ट्रेटेजिक प्लान का एक स्तंभ बना हुआ है। हरित ऊर्जा के लिए इंजन चालू और अब इन सब में हम ही को फायदा होगा, स्वच्छ खाद्य पदार्थ जो प्राप्त होंगे।
2: कुछ ही महीनों में दूसरी बार मॉरिशस के दौरे पर आई सेशल्स की परिवहन बंदरगाह और सिविल एविएशन मंत्री वेरोनिक लापोत ने आज लातुकेनिक स्थित एनटीसी के डिपो का दौरा किया। उन्होंने परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद के साथ उन्होंने पिछले जनवरी महीने के अपने दौरे के बाद मॉरिशस में इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग मूल ढांचों की स्थापना के सिलसिले में मॉरिशस में हुए विकास का जायजा लिया। असल में सेशल्स परिवहन क्षेत्र में मॉरिशस के अनुभव से फायदा उठाने की इच्छा रखता है। नेत्रहीन लोगों के लिए शिक्षा का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, शिक्षा की आयु सीमा में वृद्धि और अनुकूलित उपकरणों की सुविधा, उनके लिए निर्धारित शिक्षा प्रणाली में अपनाई जा रही सुधार योजना में इन मुद्दों पर खास बल दिया जा रहा है। लुईस लाशेस ट्रस्ट फंड ने सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव पेश किए। कुनल गोजी की रिपोर्ट पर ये विवरण।
3: लुईस लाशेस ट्रस्ट फंड बोबासे में प्राथमिक स्तर के 17 और फिर प्राइमरी के 3 बच्चों को प्रशिक्षण और शैक्षिक सहायता दी जाती है। शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार यहां 15 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का अनुपात निर्धारित है।
4: L'apprentissage, l'y repose au, certainement l'aubaine des autres sens, comme le toucher, l'ouïe, des fois l'odorat.

0: Plus de ça, il y a beaucoup d'aspects qui, comme si, comme si on a une image, nous avons besoin d'adapter les, mettre en relief, soit mettre en tactile, et surtout mathématiques aussi, si je peux faire un bon calcul, c'est un bon outil adapté qui, obviously, quand nous devons faire un calcul, nous devons trouver quel chiffre nous devons écrire, ben, pour prendre beaucoup plus de temps pour faire un calcul.
1: इस वर्ष दो विद्यार्थी पिसाक परीक्षा में भाग लेंगे। लुईस लाजेस ट्रस्फेन दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का भी कार्य करता है। स्कूली पुस्तकों का ब्रेल लिपि में अनुवाद किया जाता है और हर वर्ष इस कक्ष से लगभग 2000 प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं।
2: Définir, adapter ce bon texte qui n'a pas adapté. Et là, moi, d'après ça. Mais par contre, mon livre collège, ça mon livre là, il n'est pas adapté. À ce moment-là, là, nous besoin c'est adapter mon livre là.
1: हालांकि पिछले 5 वर्षों से कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है और इसमें देरी हो रही है।
3: Par exemple, si nous avons un mini supermarché, que les enfants-là les connaissent, ils n'ont pas fait un achat, alors comment ils font ce achat? Ces enfants-là, ils ont besoin de faire ce bon transaction financière, ils ont besoin de la banque. À ce moment-là, ils connaissent comment ils peuvent faire quand il y a la banque qui qu'il y en a pour les faire.
1: माध्यमिक शिक्षा में सीखने के आयु सीमा बढ़ाना, उपयुक्त तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराना तथा विद्यालयों का विकेंद्रीकरण करना, ये कुछ प्रमुख सुझाव हैं जो सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं।
4: Pour les rétroblir même dans le nouveau l'atmosphère, les perdit facilement 1 an, 2 ans. Et quand les perdit 1 an, 2 ans, mais devant ça et limite là, il y a un obstacle, il y a un problème. Qui, comment dire ce 20 ans, ils ont arrêté. Mais moi, vous pensez, le ministère de l'Éducation, il y a une dérogation pour les enfants en situation de handicap, ils sont capables de permettre de terminer sur l'étude.
1: 43 वर्षों के अस्तित्व के बाद लुईस लाजेस ट्रस्ट फंड शिक्षण पद्धति में सुधार और पुनर्संरचना की मांग कर रहा है ताकि ये संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों के अनुरूप एक उपयुक्त समावेशी शैक्षिक वातावरण में संचालित हो सके।
5: फुटबॉल प्रेमियों के लिए ये खबर, 2026 विश्व कप के शुरू होने में मात्र 2 दिन रह गए हैं। 11 जून से 19 जुलाई के बीच सभी की निगाहें कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका पर टिकी होंगी, जो इस ऐतिहासिक संस्करण की मेजबानी करेंगे। मॉरिशस में भी प्रशंसकों में काफी उत्साह है और फुटबॉल के इस विश्व उत्सव का पूरा आनंद लेने के लिए तैयार है। हमारी एक टीम ने कुछ मॉरिशनों की प्रतिक्रिया ली। प्रियंका हरी की रिपोर्ट पर एक बार फिर करुणा लालू का विवरण।
1: फीफा विश्व कप 2026 के उद्घाटन में अब केवल 2 दिन बाकी हैं। दुनिया के चारों कोनों में उत्साह चरम पर है और मॉरिशस भी इस फुटबॉल बुखार से अछूता नहीं। कुछ लोगों के लिए ये विश्व कप के उस अनोखे और रोमांचक माहौल को फिर से महसूस करने का अवसर है जिसका इंतजार वे वर्षों से करते हैं।
6: Mon équipe préférée, c'est Brésil. Nous gagnons ça tous les 4 ans. Nous voulons vivre, moi encore là, moi j'ai 75 ans, moi je veux vivre encore.
7: Nous ne pouvons pas nous mettre un t-shirt, nous mettre un oriflamme, mais nous espérons qu'on ait une bonne Coupe du Monde, ça nous passe tranquille.
8: L'Espagne est mon équipe préférée, alors je vais tout le match d'Espagne. Mais ça, c'est une occasion de pouvoir vous guetter.
9: Dans les 66 Coupes du Monde, l'Angleterre s'est gagnée. Là, je suis venu, malheureusement, l'Angleterre n'a pas gagné moins de fois en Angleterre. Et là, nous attendons sa Coupe du Monde, là, pour nous espérer que l'Angleterre a fait une belle face.
10: C'est là nous peut préparer un peu plus bien. Parce que c'est une compétition qui a un peu plaisir cette année-là. Tu vas parler qu'on va avoir une compétition avant là. Parce qu'il y a beaucoup de bon équipe qui est qualifiée.
11: Moi, je suppose l'Angleterre pour gagner, moi.
12: Mais quand vous gagnez ça?
11: Mais d'imbécile.
12: À ce moment-là, qui place qu'ils ont préféré pour le grand.
11: Quand on va vite, nous venons gagner.
1: दूसरों के लिए ये अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी फुटबॉल प्रेम की भावना साझा करने का अवसर है और मैचों की धड़कन और दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल सितारों के शानदार प्रदर्शन इस उत्सव को और खास बना देते हैं।
13: टू हॉट मेम के नाला बिना पेशन की बे विनी पु पे जिला टू बे विन पु गई मेनु सिर्फ सालो एम बेसे मो मो मदामित पु गसो न सेनु सिर्फ सिवन जी पे से गीत वाला पप का गीत
14: Mais si je suis un petit peu bonné, quand je suis là, je suis capable de suivre.
15: Nous préparons nos gadjacs, nous mettons bien à l'aise. Cousins, ma tante, tonton, là nous gagnons une Coupe du Monde comme à besoin.
16: La Coupe du Monde, comme d'habitude, pareil, entre famille, nous meilleure équipe.

0: au monde, c'est le Brésil. Mais voilà, je supporte le Brésil à fond.
1: इंतजार अब लगभग समाप्त हो चुका है। केवल 48 घंटे बाद पूरी दुनिया फुटबॉल की धुन पर झूम उठेगी और मॉरिशन भी इस महान खेल महोत्सव के हर पल का आनंद लेने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे।
2: अफ्रीकी पाक कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता का आयोजन 13 और 14 जून को मैडागास्कर की राजधानी अंतानानारिवो में किया जाएगा। इंटरनेशनल केटरिंग कप 2027 के लिए होने वाली इस पहली अफ्रीकी चयन प्रतियोगिता में मॉरिशस, मैडागास्कर, कुजिवो और गाबो की टीमें हिस्सा लेंगी, यानी कि आइवरी कोस्ट और गैबन की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिताओं को कई चुनौतियों का सामना करना होगा, जिनके जरिए उनकी रचनात्मकता, खाना बनाने की कला और अफ्रीकी स्थानीय उत्पादों के बेहतर उपयोग को परखा जाएगा। प्रतियोगिता के अंत में केवल दो देशों को जनवरी 2027 में होने वाले विश्व फाइनल में जगह बनाने का मौका मिलेगा।
3: प्रस्थान से कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात मॉरिशस की टीम से हुई। किचन में अंतिम तैयारियां जोरों पर हैं। तकनीकी अभ्यास, व्यंजनों की आकर्षक प्रस्तुति और टीम वर्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसी भी पहलू में कोई कमी न रह जाए। टीम के कोच ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा निर्धारित नियमों और चयनित मेन्यू के कड़े मापदंडों को ध्यान में रखते हुए टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। टीम के कप्तान प्रवीण चतुरी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभ्यास कर रहे हैं। उनका कहना है कि तनाव और थकान के बावजूद वे व्यंजनों को बेहतर बनाने के लिए लंबे समय तक मेहनत कर रहे हैं।
4: Nous fiers qu'il nous paye l'occasion de représenter nos pays dans une grande compétition comme ça. Beaucoup qu'à se ranger, d'après produit tout ça là, parce qu'il y a énormément de produits qui est imposé, énormément de produits qui nous oblige à servir.
5: L'entrée chaud et froid, je t'appelle ça le jeu de la mer, une totale créativité. Pour qu'ils nous gavent, présenter un menu avec quatre fruits de mer comme si intégrés, entrée chaud et froid, présenté sur la même assiette. Comme plat principal, c'est le zébu Wellington qui est imposé, et il y a une sauce albufera qui nous pour préparer, qui est aussi imposée pour accompagner main course.
3: वही सह-कप्तान जूलियो गाबो के लिए इस तरह की ये पहली प्रतियोगिता एक बड़ी चुनौती है उनके लिए। उनका मानना है कि इस मुकाबले में हर मिनट और हर छोटा विवरण निर्णायक साबित हो सकता है।
6: Travailler en équipe, c'est difficile, mais il y a environ 3 mois, nous travaillons ensemble chaque semaine. Tout à fait économique. Et puis c'est un modèle en bon, la fiche technique, tout le monde a fait pour nous, etc. Pour ne pas rater aucun détail.
3: मॉरिशस की टीम का एक ही लक्ष्य स्पष्ट है, शीर्ष दो देशों में स्थान बनाकर विश्व गैस्ट्रोनॉमी कप 2027 में अपना स्थान बनाना।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमले रोकने के लिए ईरान और इसराइल के बीच बनी सहमति के बाद तेहरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को खोला गया। सऊदी अरब से हज यात्रियों के साथ कई उड़ानें तेहरान पहुंची। बढ़ते हम अब मौसम के हाल की ओर, रजनी बेकर के साथ।
7: जो एंटी साइक्लोन था वो धीरे धीरे हमारे इलाके से दूर हटता जा रहा है। पूर्व की ओर से जो बादल बढ़ रहे हैं वो आज रात से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात और कल सुबह आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और रह कर बारिश भी हो सकती है, मुख्य रूप से टापू के आधे पूर्वी हिस्से में और सेंट्रल प्लाटो पर। दोपहर बाद में बादल छाए रहेंगे और वर्षा होती रहेगी, मुख्य रूप से देश के दक्षिणी इलाके में और सेंट्रल प्लाटो पर। उत्तर पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। रात के दौरान ये हल्के रूप से कमजोर होते जाएंगे। प्रवाह रेखा के उस पर समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पूर्व में 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पूर्वी एवं दक्षिणी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी लगूनों में आज रात के दौरान धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 14 और 16 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 22 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 27 एवं 29 डिग्री।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है और कंसल्ट पर हमारे सहयोगी लुडोविक हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। फोबाक रोड फोंजसाक में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पद्मावती रूपचंद जिन्हें छुटकी चाची के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे शैलेश मुरत के घर फोंजसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। नंबर 36 अबातवा रोड होशबुआ में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री खेमराज चरितर जिन्हें जानों के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर होशबुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही बोली शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। गुडचरण लेन मिडलैंड्स में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री आत्मदेव दोमन जिन्हें रांदाबेल के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर मिडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11 AM। मोसेलमो प्रोविडेंसिया दो प्रोविडेंस कॉचिमिलिटेर में 52 ईयर्स ओल्ड के श्री महेश्वर पत्तू जिन्हें सतीश के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले पुलिस सर्जेंट मोका CID में थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती तीहा मीनाक्षी पत्तू के घर कौचिमिलिटेर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदेमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। मल्जी लेन प्लेनमानियों में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री सुखजन बिसुनी जिन्हें जीत सुफेताक्सी के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे विशाल बिसुनी के घर प्लेनमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 1 PM। भोगन रोड रिविया जोरोंपा में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के श्री कृतानंद भोगन जिन्हें जोके के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर रिविया जोरोंपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 1 PM। कैल्डरन रोड रे टॉनस्टोन ईस्ट लंदन इंग्लैंड में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र रुचाया जिन्हें रोय के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले टैगोर रोड फोंजसाक के रहने वाले थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी दिन के 1:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती साबिता रुचाया के घर ईस्ट लंदन इंग्लैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1:30 PM। रॉय रोड प्रोविडेंस कॉचिमिलिटेर में 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मालिया में पालियाची मुनियन पैदाश नाम सिनातोंबी और जिन्हें मनी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके नाती मुदाली बेन पाजानी के घर कौचिमिलिटेर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलमा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। रामचंद रोड रिपाई में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुसमावती रमन जिन्हें मौती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके घर रिपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकों ससैप एक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9 AM। बेनिकालेन नंबर दो ग्लेनपॉक वाकवा में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमित्रा बाई बाहू पैदाशाम लक्सिमो जिन्हें मानती के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके घर ग्लेनपॉक वाकवा से उठाकर

अंतिम संस्कार के लिए थॉमामेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास्ट 9 AM। लोरेटो कन्वेंट स्ट्रीट क्यूपिप में, लोरेटो कन्वेंट स्ट्रीट क्यूपिप में 77 ईयर्स ओल्ड के श्री जय परगासस रामसरन, श्री जय परगासस रामसरन जिन्हें जगदीश के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी

में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मरोध देवी जिन्हें राजेश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे कुशल देवी के घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमाक शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो था पॉस 10 AM। चंद्रलेन लाहौजा में 89 साल के श्री रामासामी यमाना रेड्डी अपादू जिन्हें नारायण के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी दिन के 1 बजे उनके बेटे दमा रेड्डी अपादू के घर लाहौजा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदालबेग शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्यसभा मॉरिशस एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी महर्षि दयानंद सरस्वती विरचित महान वैदिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पर विशेष प्रवचन देंगे। तारीख बुधवार 10 जून। जगह कौंदे मास पावे आर्य समाज। समय दोपहर 4 बजे।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस
3: रेडियो मॉरिशस।

听众朋友，今天的晚风音乐就到这里跟您告别了，谢谢您的收听，下次节目我们再会。

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम, रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

सादर प्रणाम, जय श्री राम, जय हनुमान। श्रोताओं, AM2 रेडियो मॉरिशस के सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आध्यात्मिक कार्यक्रम है बजते प्रभु का नाम। मैं हूँ देविना। अगले 30 मिनट तक हम प्रभु भक्ति के मधुर सागर में डुबकी लगाएंगे। वैसे मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित करते हैं। यह दिन हमें शक्ति, साहस, सेवा तथा समर्पण का संदेश देता है। जब जीवन की राह कठिन लगे, तब मन व्याकुल हो जाए, तब प्रभु का नाम ही वह दीपक बन जाता है जो अंधकार को दूर कर देता है। जहाँ विश्वास है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ सफलता है, जहाँ प्रभु का स्मरण है वहाँ जीवन में शांति ही शांति है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से।

प्रिय श्रोताओं, जीवन में धन, मान और प्रतिष्ठा सब कुछ क्षणिक है, स्थायी है तो केवल हमारे कर्म तथा प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। अर्थात इस युग में ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय की सच्चाई से प्रभु तक पहुंचती है।

श्रोता, हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं, परंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनका विनम्र स्वभाव था। अपार बल होने के बावजूद उन्होंने स्वयं को सदैव प्रभु श्री राम का सेवक माना है। आज के समय में भी यदि हम अहंकार छोड़कर सेवा तथा प्रेम का मार्ग अपनाएं तो जीवन सरल और सुखमय बन सकता है। अहंकार मनुष्य को छोटा बनाता है, जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है। अगले भजन की ओर बढ़ते हैं।

श्रोताओ, जब कभी मन निराश हो तो कुछ पल ईश्वर के साथ बिताइए। मंदिर जाना आवश्यक नहीं, क्योंकि सच्चा मंदिर हमारा हृदय ही है। ईश्वर को बड़े बड़े उपहार नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम, निर्मल भावना तथा निष्कपट।

सत्य का पालन तथा सभी के प्रति प्रेम। जिस घर में प्रेम करुणा तथा प्रभु स्मरण होता है वहां सुख समृद्धि स्वयं निवास करती है। ईश्वर का सबसे सुंदर मंदिर हमारा पवित्र हृदय ही है, उसे सदैव अच्छे विचारों से सजाए रखें। आज के इस पावन कार्यक्रम में आपने जो समय हमारे साथ बिताया उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। विदा लेने से पहले सुंदर विचार सुनते जाते हैं। जीवन की हर सुबह ईश्वर का उपहार है तथा हर सांस उनकी कृपा, इसीलिए हर दिन कृतज्ञता तथा भक्ति के साथ जीना सीखिए। प्रार्थना है कि श्री राम जी, माता सीता जी तथा संकट मोचन हनुमान जी आप सभी के जीवन में सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य तथा समृद्धि प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ हमें दीजिए अनुमति। जय श्री राम। सादर प्रणाम।

आप सुन रहे हैं भज्य प्रभु का नाम कार्यक्रम। श्रोताओं, भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, भक्ति का अर्थ है माता पिता का सम्मान, जरूरतमंद की सहायता,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर राहिरो आते गए और कारवां बनता गया। मोहतरम सामईन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। निसार अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर गूंजता हुआ उर्दू प्रोग्राम महफिल शब में हम आप तमाम लोगों का खैर मकदम करते हैं। ये वो लम्हात होते हैं जब खामोशियां भी ज़िक्र में डूबी महसूस होती हैं, जहां अंधेरा भी रोशनी का लिबास ओर लेता है और रात भी इबादत का उन्वान बन जाती है। उम्मीद है मोहब्बत व अकीदत और नूर हिदायत से आरास्ता ये बज़्म आपके ज़ौक़े समात को पसंद आएगी। आइए सामईन महफिल शब का आगाज़ इस खूबसूरत नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। मुलायजा फरमाइए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सामईन इकराम, आज माहे दुल्हिज्जा की 22 तारीख है। ये दिन हमें उस अजीम शख्सियत की याद दिलाता है जिन्होंने मोहब्बत, अमन, उख़वत और दीन इस्लाम के रोशन पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से है। उनकी वफ़ात इस महीने की 22 तारीख को हुई थी। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी गोया इल्म व अमल की एक शमा थी जो आज भी अपने नकूश और तालीमात की सूरत में दिलों को नूरे हिदायत अता कर रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।

सामईन कराम, इसी के साथ महफिल शब का ये नूरानी काफिला अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है। आपकी बेकरा उल्फत और हम नशीनी के लिए हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमारी रातों को अपनी रहमत से मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब हमारी मुलाकात अगले मंगल को होगी। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, शब खैर।

सलाम मुस्तफा जाने रहमत के ला सलाम मुस्तफा एक मेरा ही रहमत में हिस्सा नहीं एक मेरा

0: संगत्या लोग घड़ी मिला ला बखत रात के ठीक 9:08 हुआ था। तू सुनते रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन और प्रस्तुत बातों के पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
2: Continuous music. RM3.
3: Bhojpuri, Tadka. भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
4: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
0: सब संगठनों के ओर से प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन और हमने के लाइव टिकटॉक रेडियो मॉरिशस के पेज पर हमने के देखा था वजह तो प्रोग्राम देखा जाता और सुना जाता भी। क्या बात है, AI का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। मन करता को भोजपुरी गीत सुने के नंबर वा घुमाइए कार्य हो दे विद्याक या फिर टिकटॉक पेज पर अपन भेजा जा रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट हमने कोशिश करब सर। ये प्रोग्राम भोजपुरी के प्रोग्राम है तो हिंदी फिल्म गीत हिंदी के गीत बॉलीवुड के फिल्मी गीत नहीं मंगिया वही खाती तले वास्ते बोलत हैं तो कोई नहीं समझतल। यहाँ भोजपुरी तड़का की भोजपुरी कार्यक्रम भोजपुरी गीत मंगिया इधर उधर की बात नहीं करिए कोई के निंदा चुगली नहीं करिए गीत मांगे के प्रोग्राम है गीत मंगिया जा खाली ठीक बा। हाँ और जब टेलीफोन ही करब तो राजू के वॉल्यूम कमती कर दिया वरना नहीं सब बचाइए। अगला गीत सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के संगत्यालो के नाम जो नाम की सुना था भोजपुरी चर्चा कार्यक्रम में इंद्रासन से ढोलक।

हम भी गमन कार्यालय चलो के संगे संगे रेडियो मॉन्स्टर रेडियो मनोरंजन पे अभी से लेके रात के 11 बजे रे। और ढेर कोई खुशिया रोटी खाए के तो ढेर कोई फाता कोई खुशी रहरा नान खाए के दाल पूरी पूरी या फिर लीटी। अब लीटी कौन सी है अभी के नौजवान लोग नहीं जाने लीटी, आगे लीटी मुर्गी के दिया दल खाए के ढेर कोई लीटी खाता है चटनी डाल के हो नहीं तो सबके अपन अपन पसंद बा भैया। और बात करब सब मुर्गा के और आगे के जमाना में सब कोई मुर्गा मुर्गी पोसत है फुलाइए में जब फामी आए तो लगे घूमे तो बस एगो मुर्गा निकाल के तकारी पका देते सब मुर्गा लटपट मसाला में आलू डाल के हाँ कि नहीं लाल लाल मुर्गा के लंबा लंबा ठोरबा है गीत रोबर्ट भाई खातिर ओकर प्रेमिका ओकर जान खातिर है गीत बहुत बहुत प्यार के साथ अनिता गीत और खातिर फिर शमीला हवन और है गीत आज चलावती सर अशिता के नाम दिया जोगेसर कविता सिरतन मिकेश सानिया सुमन और है गीत चलावती सर रोशन देवी नानी और सब संगचाल के नाम और मागी भी हमने के साथ

देवोत्थवन तमागी है गीतवा तो रोखतीर बहुत बहुत प्यार के साथ। लाल लाल मुर्गा के लंबा लंबा ठोरबा, लाल लाल मुर्गा के वे मुर्गा जुन है, मुर्गी बिना मकई नहीं खाला वो आगे आगे जाता मुर्गा, लाल लाल मुर्गा बाप रे बाप। तो मुर्गी के देखला तो नाचे लगल मुर्गा मुर्गी के नाचे भी के लेकर नहीं जानी बा, अभी के लेकर कभी मुर्गी देख रहा कोई नहीं बा, तो कैसे जैसे मुर्गा मुर्गी के नाच कैसे होला है तो है कि थोड़ा खासम खास समी चलाओ सर चित्र और ज्ञान विश्राम खातिर रहेलन मॉडल बे कमला दिनु है गीत थोड़ो खातिर और सब संगत यारों के नाम जो हमने की सुनता रही जो मोशस रेडियो मनोरंजन पर बेबी है गीत और खातिर सुरेंद्र कुमार है गीत और नाम रिया और सुनीता के नाम है गीत लाल लाल मुर्गा के सुना नुयन की आवाज़ में

तेरा मुर्गा मुर्गी कहानी मुर्गा लोके सुनला मौका था मुर्गी और कानार बिचारा था क्वैंक क्वैंक क्वैंक क्वैंक करता। रात के 9:20 हाँ कि तो बड़ी हंसी लगा था मुर्गा मुर्गी जैसे क्वैंक क्वैंक करता है। मुर्गा बोलेगा कुकु रुकू कुकु रुकू। आगे मुर्गा जब गीत गावा था फजीत के तब सबको नींद से जागे। शमीना बड़ा जोर हंसा था बोले प्रताप जी अभी भी मुर्गा मौकेला फजीत के बाप हम तो नहीं सुन रहे का आज नहीं अभी मुर्गा मुर्गी हाँ जिक्र लगे मुर्गा मुर्गी बा तब फजीत के मुर्गा उठे तो बौकेला कुकु रुकू कुकोरी को करे रहा था सबको नींद से जागे रहा। अब मुर्गी था पक पक पक पक पक पक पक पक पक पक पक पक कर ले रहे रहा दिन भर हाँ कि नहीं। अगला गाना मरमीत में चढ़ा गर्म पानी कौन सी पकता हो तो अगला है गीत तो चलाती सा अजमेर खान खातिर दृष्टि खातिर फसीरा सुफुरा गीत हो रो नाम साथ में गीत चली शमीरा खतीर और अनिल राम भजन हेमलाल मगर नैशिया सिबालक सुभाष बड़ा जोर हंसा था सुभाष सागर जी भी हंसा था मुर्गा के बौखल सुन के कुकुरू कुक कुकुरू कुक हाँ कि नहीं। और अभी देखा रही सर ढेर मना SMS भी आवा था ऐसे में सब पढ़ ले रहा था तरीबन से नए पढ़ लग पड़ता भाई। एंजॉइंग योर प्रोग्राम फ्रॉम लंडन ओके राजेश रघुपत गीत तौरों का थे लंडन से गीत सुना था वन उंगले थे ऐसे सुलेवी वाकवा से गीत मंगले वन थ्रियोले के दीदी ललिता कुशल परिवार आत्माराम भैया दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेंगा के रमलतन परिवार और हे गीत चलावत ईसा बदवज विदेशी के नाम तायाक रहेलन अनुषा खतीर जो रहेलन मौताबा और है तो हमने चलाओ अब स खासम खास डॉक्टर अंजू केसवकर मंगेतर चंपा और देविका रामगतिया वीना दुमा गीत और खतीर वीरानंद दीनदयाल केसवकर संगतिया साइलेंट के नाम चला भी मरमित में गर्म पानी चढ़ल बा और आगे के ज़माना में बड़ा बड़ा देखची रहा बड़ा बड़ा मरमित में खाना पकतल चूल्हा में लकड़ी दल बब आग पर बब आग धनकी तब सबको ये जो है बैठ के आदान कर सकब खा के पकी मसाला आलू उलू डाल दी बब डबकर करी तब को ना कोई चीज दल बकर में ना हर कवि हर नाम गीत और खतिर क्रिस शाया साहिनाज इमाम पिराली होसेन सलाम अलैकुम भाई है गीत थोरो नाम मरमित में चढ़ल बा गरम पानी अब गरम पनिया में कौन सी पका था चलो एक साथ सुने

0: मरमित में चढ़ाबा गरम पानी और बोलिला से कि जे तू चाहत हो रात के थोड़ा नींद नहीं लगी थोड़ा कहीं विजामा करके कि रात के कोनो काम बा करके तो जब नींद थोड़ा नहीं लगी तो व्हाइट कॉफी काफी पिया काफी जब पीबा तो नींद नहीं लगेला उस अकेला व्हाइट कॉफी हो या काफी जो है तो थोड़ा सा दूध बुई करिया एक कुया काफी दे दिया मिलौसी करिया और पी लिया तो दिखिया थोड़ा नींद नहीं लगी और खासम खास जे कोई ड्राइव करेला रात के वक्त कहूँ जात हो जाता बेशक जन बोली हम थोड़ा है कि अपने अब को बुते में था सुन काफी ले लिया और जैसे हम बोली कुछ बोले तरी हाँ जमीन जबरा नींद नहीं लगी तो काफ़ी पी लिया ताकि थोड़ा नींद नहीं लगी रास्ता पर या फिर लवंग एगो बर्तन में रखिया जैसे थोड़ा नींद लगी बोलो मैं हवा कोचाई करते हुआ तो लवंगवा पर मुंह में डाल दिया और दांत से होकर खास ही कर दिया था जो तीखापन रही ओकर से थोड़ा नींद नहीं लगी या फिर एक बूते पानी रख दिया अपन जहाँ कोचाई करते हुआ सोफिया के बगल में जो सीट बा तो जब थोड़ा नींद लगी तो हम बूते पनिया से सेवन मुँह ऐसे कर लिया ताकि नींद थोड़ा नहीं पकड़ी कह के जब नींद लगेला भोलों पर अब थकेला दुर्घटना हो जाए हाँ कि नहीं तो चला भी अगला गीत सुन से पीछे पिसेला मसाला हिला हिला के डोला डोला के पीछे पिसेला मसाला अब हिला हिला के मसाला पिसेला बाप अभी रतुआ के जोयराम साहब से सुनब जा हाय गीत चलावती से गौबे के रतन निहाल खातिर और बाप विजय पत्नी करुणा संजय हरिचंद नुकर पत्नी संध्या बेटी हुविष्का के नाम और जितना कोई अभी उनकी सुना था रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर और टिकटॉक पेज पर देखो हमने देखा था जैसे कि कविता खुबलवा है गीत और खातिर तपन चौधरी पांचू संजय है गीत तोहरो नाम शिवम और फजीला सुफुरा मनीन पांड्या सेरेना अंतोनेट सिदिक राजबाल शैवी राम कुमार तपन चौधरी अशीता अब्दुल कादेर रोशन देवी ये सब संगत्या लोग हमने के अभी देखा तो वन सा टिकटॉक पेज पर रेडियो मॉरिशस के तहे गीत तिलों के नाम भी और संजय पांचू बता हेलो हम बोल नमस्ते भैया कैसे समाचार गमट हुआ था कि नहीं यहाँ तक खूबे गमट हुआ था हो गमटवा होते रही रात के 11 बजे रे भी रात की 9 बज का आधा होल बा यास्मीन भी बोलता चल गुच्छा का चक भोजपुरी गीत हमरो खातिर तो यास्मीन चल नाचे मस्वी से मसाला हिला हिला के डोला डोला के
1: दीदिया ए दीदिया पीस दीदी पीस मसाला तसा तसा तकारी बा हरिन के मछी के पीस दीदी

गायता हल्ला कर देता मो रात के 9:35 रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर ऐसी हंसते गाते रहिए, हमके साथ देते रहिए। हम तो खूब गमत करते हैं, हमू बोलते हैं पीछे पिछला मसाला हिला हिला के डोला डोला के। और हम कल गए थे बाजार रोजबेल को बड़ी अचरज के चीजन के लोकल पकल आम भाई फॉर्मिएफा मलावी में लीवे

माई बू नहीं डूबे गरली वहाँ पर हमने के शो रहल याद बना सामजी के बीच पार्टी रहल रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती तो वहाँ पर पकड़ आम बेचा तब लिविया में कैसे आम पकड़ता ये थोड़ा बोले कि जीव सिल्वा पर हम देख लिए हैं और गुते भी कर ली अम्मा सुपर एकदम मीठा आम रहल का आप थोड़ा बोलो भैया लिविया में भी आम मिला था सब कुछ बदल था भैया का कर भाई दुनिया ही से बात जोड़ी जोड़ी पकड़ पकड़ आम दस्ती रहता तो लोग कती रखती थी ना तो हो सकता गुथे करे तो चलो अभी गीत सुनब जा बैगन बागी में करेला तुरे ना जाइया अब बैगन बागी में करेला कहाँ खोजे तो अब बैगन की बात कर सकते सब कहते बैगन बा पीती बैगन बड़ा बैगन अब बैगन के चटनी बनेला बैगन भुंजीला सा बैगन आलू मसाला में बैगन के गाटो भी पकेला और बैगन के बैगन से ढेर मना चीज तैयार करी रहा सा हाँ कि नहीं ये पौष्टिक खाना ढेर को बेले तो मत बैगन नहीं खाए कि नहीं हो सकबा सब चीज़ खाए पर हिसाब से जब हिसाब से नहीं खाईबा तब प्रॉब्लम होला हाँ कि नहीं तभी सुनम सा बैगन बागी में करेला तो बता नहीं जाए कि कुणाल बाबूलाल गीत गए देवन और शास्त्री बनवालियम के साथ देव तो ने गीत और खातिर और चलो एक साथ सुने बैगन बागी में कौन कहानी कौन सी हुआ था

है गीतों पर सब कोई नचले रहलन के याद बा जब गीत निकल पैंक पैंक कुछ झुलवालो तो शादी में चौथारी में सब कोई गीतों पर खूब नाचता है। आहा हम तो अभी भी नचते हैं भैया पैंक पैंक झुलवालो तो पैंक पैंक झुलवालो तो नया नया सफेरवा तो जब को छोकरा नौजवान छोकरा फिर कोई लाइसेंस मिलेला तो सीमा में गाड़ी नहीं चला रहा सीमा में उड़ेला आखते बनेला हाँ कि नहीं नया नया सफेरवा अब नया नया सफेरवा की कहानी सुनब से पर वो कहानी से पहले अभी गो फिल्म के जिक्र होता है आजकल फिल्मा के नाम बंदर ये हिंदी सिनेमा में नई फिल्म रही है। फिल्मा के डायरेक्टर है अनुराग कश्यप इकर में बा बॉबी देओल सानिया मल्होत्रा और साबा अराज। फिल्म के नाम है बंदर जरा सोच ऐसे में नाम रहे जी हाँ एगो बॉलीवुड मूवी रही अब फिल्मा जब आए बड़ा पर्दा पर सिनेमा में तब बुझाए फिल्मा कैसन रही तो फिल्मा के नाम याद रखिए फिल्मा के नाम हुए है बंदर। फिल्मा के डायरेक्टर है अनुराग कश्यप और फिल्म में मेन रोल में बॉबी देओल काम कर रहा बॉबी देओल के कॉम्बैक हुआ था है फिल्म में जिसका नाम है बंदर। अब नया नया सफेरवा की कहानी जो है सुनब जाए गीत आशा मित्र खातिर सोनन चितन की है गीत तोरो नाम भाई धनी राफलवा से वन गौरंगा भाई है गीत तोरो खातिर पुलाश भाई है गीत तोरो नाम बम बहादुर जी है गीत और खातिर सुमन है गीत और खातिर मुनीर नील ग्रीन है गीत तोहर नाम और फिर नीवा है गीत तोरो खातिर अनिता प्रताप है गीत और खातिर नील ग्रीन बोलता बैगन बागी चल गए भैया। अब सुनब से नया सफेरवा के कहानी और सफेर भाई लोग अभी रात के ड्राइव करते थे गड़िए गाड़ी धीरे धीरे चलैया गड़िया लेके ओढ़िया नहीं भैया गाड़ी नहीं बनावल बा उड़ाए की गाड़ी बनावल बा चलाए की ठीक बा।

हाँ तो प्रेमी आप भूले नहीं तो रास्ता में उड़िया नहीं, जहाँ नहीं दुबले करके वहाँ दुबले नहीं करिया, जहाँ पर हॉर्न नहीं दबा के वहाँ हॉर्न नहीं दबाइया। कुछ दिला हो तिमन से सीखिया, और रोबो जब वे बात अब जाइए, रोबो जब लाल रही तो चेहरा आगे थे हो कि नहीं सब सोफेर वा खातिर जीता चली से सोफेर बोलता हाँ प्रताप भाई तोहर बात तोहर में दम हा हा। फैशन के जमाना में भैया सब कोई खुश रहेला, जोरी से आप ये कि देर को जाला ब्यूटी पार्लर में मानी क्यू पेडी क्यू करे फेस स्क्रब। फेस स्क्रब कौन चीज है वो ऐसा ना कुछ चीज जो मुंह में घास बा तो जोरी दिख बा, पुरुषों खातिर बा और महिला खातिर भी बा। वो कैसे बोला मुँह सफा करे के गाल सफा करे के वो बेचारा ओके फेस स्क्रब बोला ला तो उसे डाल दे बा मुँह में लगा दे बा आधा घंटा ओके रह जैसे मुँह में निमन से घास दिया। बताओ तो टिकटॉक पेज पर कैसे लापत वाले के निमन से घास दिया तब दिमियतों के बाद ओके चेत पानी से धोइया तो दिखबा तो चेहरा एकदम साफ हो जाए, जोरी आखते लिखा दिखबा आखिर सीखा दिखबा हो कि नहीं। तो भाई जगह लगे पैसा बातो तो ब्यूटी पार्लर जाइबे की करी, और ढेर को बोला ब्यूटी पार्लर खाली माधाम लोग जा रहा मिश्र लोग नहीं जा रहा नहीं हो, आजकल मिश्र लोग भी गंती रहता है बोले से मिश्र लोग नहीं करे रहे नहीं लोगों जान से लामो दुमोद करी कहे कि फैशन के ज़माना बा कैसे बार में कोलोहों डाले के पियर्सिंग टैटूआज जोड़ी जोड़ी लुगा पहने के ब्रांड वाला जूता पहने के जोड़ी जोड़ी शमीज पंतालों और मैडम लोग कुछ साड़ी चूड़ीदार ये सब पहने के जोड़ी जोड़ी क्रॉप टॉप। क्रॉप टॉप हम पॉइंट सुने थे हम पूछते रही क्रॉप टॉप कौन सी हम तो नहीं जाए ना भैया, और बा शरारा शेरवानी सब तो फिर कोई कुछ जोड़ी दिखे के हमू कुछ जोड़ी दिखे काहे नहीं तो तू भी जोड़ी दिखे जा और जाइया ब्यूटी पार्लर मैंने क्यों पहली क्यों करिया फेस स्क्रब लगाइए और जोड़ी जोड़ी लुगा पहनिया ताकि सबके बोली गिस्सा जोड़ी मामजिल्ला दो जैसे बोली ए गिस्सा जोड़ी मिशिला दो। भाग गल खसिया बाप रे बाप, अब खांसी कहाँ भाग गल, हम तो बोली राम बाबू के खांसिया के पकड़ के रखे के बांध ले के खांसी के कैसे ओके बांध के रख रस्सी तुर के भाग गल। अब देखी रहा तो सौ एम बी सी मुका में खांसी चला बा तो है जो गीत है खसिया भाग गल भाग गल खसिया रस्सी तुर के है गीतवा जो हम चलावा तो इस अश्विन बच्चन खातिर ओकर भाई और सब बच्चन परिवार जो रवि जी पोसे वन उदय धनी राम गीत हर खातिर तो सब परिवार के नाम किशन गुड़ियाप है गीत रीता सीतालू के ओर बेटा शैलेश पिता शैलेन बहुरानी बहु रेशमा परी और अनुष्का खातिर। साथ में गीत चली माधव के ओर से

चाचू साइलेन के नाम अपन चाचा जान के बड़ी खुशी रहेला। साथ में गीतों का पापा कवि, मामा टीना, पुपू रीना, दादी माला और सब भैरव परिवार के नाम। तो चल अभी सुनब जा कि कैसे है खसिया लबका रसी तुर के भागल रे बाबा। चल खोजे खसिया के, अरे खसी कहाँ हुआ। और ये गीत चलावती शमीला जी के नाम, देव कुमार गीत थोड़ो कहते अपदान है गीत थोड़ो नाम।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
3: रात के 10:03 हुआ था तू सुनो रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और हमने की देखा था रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर। अब हमने और एक घंटा ले तो के साथ देव अब सब भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में रात के 11 बजे ले संगठन कब सोचते हैं मच्छी मरवा के काम कितना आसान नहीं रहेगा बहुत मुश्किल काम है फजीर के 2 बजे 3 बजे फजीर के लोग चल जालन सब मच्छी मारी फांसी रही ठंडवा में जाके बातों लेके लामे में कबो लामे मूवे रहेगा आसान काम नहीं है हाथ साफ वही रह सब मच्छी मरवा लो कभी कुछ संगत लाइन पे कुछ मिल जाए हेलो
4: हेलो
3: नमस्ते
4: नमस्ते प्रताप जी
3: के हवा जा
4: श्रीमती
3: तो राजो धे जोर बा श्रीमती राजो कमती कर दे बना पर टेलीफोन काटे के प्लीज
4: हाँ हो देखा कमती कर
3: देगी आज के दिन कैसे बीता श्रीमती जी
4: आज के दिन अच्छा बीता भगवान के छू से
3: हाँ
4: और ये कृपा कर लग से भगवान हाथ गोड़ अच्छा से रख ले बा अभी
3: हाँ इतना बा देखे अभी किस ढेर कोई कितना बीमार बा लोपिताल में ना दिखा था
4: हाँ दिखा था ना अभी तक सुया के लोपिताल में भी आज बीमारी सब आवत
3: है ना काज निको नवा नवा बीमारी सुनाता डेंग त चिकन गुनिया त काज निको
4: ची कैसे दिन जाए कैसे सब मलादी आवत है
3: हां त कलयुग के अंत इसने होला ना मामा का करबा
4: का
3: कलयुग दूर कलयुग के अंत दूर नहीं बा थे कोई बोला था स्वामी लोग बोला था कलयुग के अंत दूर नहीं बा बड़ी मूवी आदमी आजकल बड़ी मूवी
4: आदमी लोग बहुत मूवी
3: कोई पर विश्वास नहीं सकब करे
4: कोई पर विश्वास नहीं सकब रखे और मलादी नहीं जन बा कहां से आवता
3: मलादी तो को बहाना है ना श्रीमती
4: कैसे आवता कैसे नहीं आवता
3: काजनी बाप
4: नहीं जाना था ऐसा
3: हां
4: हां गीतवा डाल दिया हमर कति हम तो मच्छी मारीला
3: मच्छी मरवा हमर नाम अभी हई गीता चली हां बोला तो खुशी रहला मच्छी खाई के मच्छी के तकारी
4: मच्छी नहीं खाई ला हम ता की है वेज है वेज
3: पर गीता खुशी रहला सुने के
4: गीता खुशी रही ला सुने
3: आले कोई बात नहीं
4: ता ये गीत डाल दिया सब चंद्र मुनि परिवार खतिन और सब महेश परिवार खतिन है ये परिवार ता ये दुगो परिवार बा
3: हम जानी रहा तू हमेशा से महेश के मांगे ला चंद्र मुनि परिवार हम जानी रहा सर
4: ये दुगो परिवार बा ना
3: हां
4: हां हां हां ता का कर बा एकरे परिवार से जियत है
3: जरूर जरूर और हम जो तो परिवार सब तो रोगो जन के परिवार हुआ सर
4: कोई तो परिवार है सर
3: हां ये तो प्यार मोहब्बत है जो इतना रात के 11 जिसे 11 रे तो लोग के साथ देवते हैं हां कि नहीं
4: हम तो 2 दिन 3 दिन तक फाटिगे हो गई ली
3: काहे
4: दबाई से उंगली दुखा
3: चाची है ने सुनिए टिकटॉक पर है टिकटॉक जाने टिकटॉक
4: टिकटॉक नहीं जाने
3: लेका लोग के बोल दिया कहे एगो लेका ने सगला बताई लिखोल से
4: लेका लोग तब अपन काम में रहे लंसना
3: नहीं तो लड़का लोग लिखो चाहे तो कोना लड़का का नाती होती है बता बोलिए बताए कि तो दिख बस चाची श्रीमती भी टिकटॉक पर आवा था आली बहुत धन्यवाद चाची आली
4: धन्यवाद आपको भी
3: आली नमस्ते आली भाई राजन लक्ष्मण लाफलोआ से हेलो भैया
5: ठीक है भाई जी ठीक है
3: हम ठीक है तू कैसे हुआ भैया
5: बिल्कुल
3: तो राजो के बोलूं ढेर जोर बा कमती करे वरना पर दे कॉल वा काटे के भैया प्लीज
5: एको प्रॉब्लम भाई को प्रॉब्लम है चमा
3: आली
5: ठीक बा
3: आली अब बचाओ नहीं नहीं नहीं नहीं तो राजो जोर बा तो राजो के बोलूं जोर बा हम माफी चाहते हैं ने सकब से बतिया काहे कि है जो रिजोनी करेला यहां पर एकदम से बुझलम कि कान फाटा था भईवा राजवा के बोलूं कमती करला
5: एको प्रॉब्लम बा वॉल्यूम पर
3: आली बोला बोला बोला आली सुनी ना से
5: बोल गया दाल दिया समय हो तो
3: हां
5: उन्होंने हरिपाल मैं हरिपाल सिया मांगे अयोध्या के राज
3: गीतवा के गई लगबा
5: मैं हरिपाल
3: मैं हरिपाल मैं भोजपुरी गीता

0: गीतों अर्जुन
1: मांगे अयोध्या के राज।
0: नहीं है गीतों अर्जुन मंगला, ये को भोजपुरी गीत है या हिंदी गीत है?
1: भोजपुरी गीत है।
0: महेन हरिपाल लापरवाही में हम दबावत हैं यहाँ पर बा कंप्यूटर में। हरिपाल अली खुद अब सर गीतवा का बोलेगा?
1: या मांगे अयोध्या के राज,
0: या मांगे अयोध्या के राज है गीतवा के कर खातिर भैया
1: राजन लक्ष्मण
0: और
1: मेरे पत्नी माला एक बेटी अपराधना जिसकी मेरी प्रगति
0: ओके रात की 11 बज रही। अरे खुद अब सब हाँ कभी हाँ तो बेशक गमतवा करते रहिए हमने के संगे संगे। कैसे बुझा रहा हमने की प्रोग्राम भोजपुरी तर का अच्छा बुझा रहा
1: प्रोग्राम
0: एकदम चक
1: लाइन नहीं मिले
0: ता टिकटॉक पर आओ टिकटॉक जाने ला नहीं
1: अब जो कब काल से काल से लेकर के बोला
0: अरे बोलिए डाले के देख सब हमने की देखे और सब मिसा से विदा करी। अरे बहुत धन्यवाद भाई राजन तो से बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। शुभ रात्रि एगो संगतिया बाबर एगो हेलो
2: हेलो प्रताप जी।
0: हेलो जी के हवाजा
2: हाँ मानू
0: है रोजबेर से धीरे धीरे हौले हौले
2: चेहला हौले हौले। अब एक भाई है गीतवा मंगलन
0: हाँ
2: सिया जी मांगे अयोध्या के राज तब होना मांगेला सीता जे मांगे ला राम ये सन पुरुष अहो सीता मांगे आइए गीत गाता था
0: सीता मा सीता मांगे ला तो उधर बोला था सीता मांगे ला नहीं बोला था
2: हाय हाय हाय
0: जो बोला था तापे के तो नहीं पागल था लापाग
2: नहीं नहीं हाय हाय गीत हाँ सिया जे मांगे जब बोला था हम कॉप
0: नहीं गीत वाक्य जो सिया जी मांगे ला
2: हाँ
0: कैसे गीतवा कैसे बोलेगा
2: सिया जी मांगेरा
0: सिया जी
2: सिया अयोध्या के राज तब होना मांगेला।
0: अरे खोजब सा भी खोजब सा फिकर ना
2: अति सा से सा खोजेलन मैं बोले जाला ना गीतवा में हां अरे हम एगो गीत मांगत है अब मेट्रो में चले के मन कर बाधे से नहीं चढ़
0: ले ए चाचा जी
2: तब मेट्रो गीतवा डाल दिया चलो चले। अब एक हमारे को बेटा प्रेफेरे है अभी यही से नहीं भेटा था वन धर्मदन का
0: नहीं भेटा भाभी तो रहा थे दिन
2: नहीं लोग का कितना दिन से उनका पत्नी हवन संजय उनका दुगो लड़का अभी खास के हमारे नातिन हवन सिया वे 10 महीना के हवन और हमारे नाती हवन 7 बरिस के दूर है लन फ्लैग आई गीतवा डाल दिया तो हो रो खतीन चल अब सच हरे मित्रों में
0: काहे नहीं काहे नहीं
2: हाँ तभी जेनी से नहीं सबसे के नहीं गल है होने ना
0: आली आई बात तो जरूर एमबीसी विजिट कर लिया ठीक बा
2: हाँ आओ अब हाँ
0: आली बहुत धन्यवाद
2: अच्छा है गीतवा डाल दिया बहुत धन्यवाद
0: बहुत धन्यवाद शुभ रात्रि। हाँ तो गीतवा के बोल है अयोध्या के राजी खाती तो लोग सिया जी मांगे ला हाँ बा पाकुलवा मिसिर मो हमने के एल्बम में लिखल बा अयोध्या के राज और हरिपोल माहेन हाँ तो यही गीतवा है तो तू लोग अच्छा से नहीं बोल सब खाती जब यहाँ तापी कते से तो गीतवा नहीं आवता गीतवा के शीर्षक हमेशा याद रखे तोरा मन का कोनो गीत सुने के गीतवा के टाइटल है अयोध्या के राज और गीतवा गैले वन माहेन हरिपोल अभिमन्यु ठीक बा तो लाफलवा के जो भाई हमके सुने कर लग तो थोड़ा बोला तो अभी ना मंगबा तो बोलिए एल्बमवा है अयोध्या के राज ठीक बा गीतवा चलाओ सर देख ला ना कितना फरल खोजे के पर तो लोग अगर निमन से टाइटल वा बोलबा सर तो हमने के फासीते खोजे के अब बोलबा सिया के राज तो सिया के राज जब यहाँ तापी का तेलापाई में तक कुछ नहीं दे होता अयोध्या के राज दली अब दली अभिमन्यु हरिपोल माहेन तब गीतवा पागे थोल तो चल अभी गीतवा सुनब जा भाई आप लोग के जो भाई रहा सुने कर लें मन करता सुने के तो चल गीतवा सुने अयोध्या के राज

रात के 10:20 हुआ था और तू सुना था रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पोच पितर का प्रोग्राम रात के 11 बजे ली। और अगला गीत पियर पियर उठी है गीत प्यारी लव खातिर चरावती सा माहिर खातिर और उमा दर्शन ओबीएम के साथ देवतवन साहिल दत्तू के जन्मदिन बाद वनिशा वाले गीत मांगने वन और बानु सुखिया है गीत तोहरों खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ। और बेशक जो उठे की बात कह रहे थे सोना के उठे के बड़ा मोल बा फौतेजियों के मोल बा नहीं बोलते नहीं पर सोना के उठी जब उंगली में दरबत निमन से देखिया कहीं गिर नहीं जाए ऊँठी गिर जाए तो ऊँठी के खोजे के बड़ी मुश्किल होला। नसीमा उमन गीत और नाम अंजलो है गाना तोरों खातिर और तोर सब परिवार के नाम पियर पियर ऊँठी या पियर पियर ऊँठी की कहानी कौन सी बात चल एक साथ सुनी।

संगठन लोग जब शामदी की रात के अपनी हर्दी में जाए रहा सर कौन ची मिले ना खाई के पत्ता पर खाए रहा सर गरम गरम पूरी कोपवा की तकारी करी बरी की तकारी दाल पीमा के अचार कटहर की तकारी रोगाई सोया अब वो गी चली खाना पर गरम गरम दाल कच्छू गरम गरम दाल गाम कच्छू की तकारी चना दाल के और पूरी आ पत्ता में खाई बत रोज की सकबाई खिवा के खा लिया और ढेर खाने चेहरा बस थोड़ा सुन गरम गरम गरम दाल कच्चू चना में और पूड़ी हाई हमने के 7 दिन मिल गया खाए के भैया तो रोज के ही खाप सर का बोले तो है। और अगला गीत है जो गीत है गरम गरम दाल कच्चू संतोष संतोष महादेव गीत अगले वन गीत चलावती सब विकास की ओर से कर पापा दयानंद लक्ष्मण परिवार और मामा फिफिन के नाम और जयराज के नाम भी गीत चली नेहा लाल माची सेवन आंतीश अंकुश बहु खातिर और सब दुला परिवार उमा दर्शन परिवार के नाम भी है गीत चली इंद हमने के देखा था वन टिकटॉक पेज पर तह गीत थोड़ो नाम गरम गरम दाल कच्चू अगर ई बखत और गरम

कल हमने चलो के बोले रिसा कि फिलीपींस में एगो भूकंप आ रहा, बहुत ही बड़ा भूकंप आ रहा कल, और काफ़ी नुकसान पहुँचल बा चारों ओर फिलीपींस में, और रिश्टर स्केल पर एक तीव्रता 7.8 मानल जाता। सारंगनी प्रोविंस के तट के पास ये भूकंप आल बा, और ये भूकंप से ढेर मना बर्बादी होल बा वहाँ पर ही मिंडनाओ के समुद्र के आसपास में। और लेकिन कौन से मेरा रन सर कौन से की बात कर रौंत्र दिक्लास और काली चुन थोमल मोदितिया होल बा, तो ढेर मना बाची मोर ढागल बा, ढेर कोई मल बा तले फसल अवन सर। हालिया सूत्र से पता चला था कि 50 से 100 लोगन की मृत्यु हो गल बा, सकेला कर से ज़्यादा भी हो रहा, ढेर मना घायल भी हो रहा वंश, और ढेर कोई चीज पागित भी हो गल बा। बिजली और पानी की आपूर्ति के काफ़ी नुकसान पहुँचल बा, और अस्पताल में काम शुरू हो गल बा। तो ये जो भूकंप आ रहा काल एक बाद सुनामी के अलर्ट करल गल रहा, और बाद में सुनामी के अलर्ट हटा देवल गल, और है जो फिलिपीन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है, यानी कि जो प्लाक टेक्टोनिक पर है फिलिपीन बा, वहाँ अक्सर लाटिया थोम्बली हो रहा है भूकंप जलजला हो रहा। और ये पहली बार नहीं है कि फिलिपींस में भूकंप बाबा की कल नेचुरल क्रामिटी बैला से कोई नहीं सकेला रोके, पर हमने अपन सहानुभूति प्रकट कर देते थे सर परिवार के प्रति, जो कोई अपन लेका पति पत्नी कोई लगभग हाई नेचुरल क्रामिटी में जो भूकंप है बहुत ज़बरदस्त सहल, और यूट्यूब पर सब कोई देख रही सर काल से रेजो सोशल पर दिखा थी सर कैसे है जो थोम देखते हैं फिलिपीन में अलबा कितना कोई की जान

0: घर सब टूट गल बा, लेकोल ढकल बा, बाची मौसम गिर गल बा। ओहो भगवान ना करी ऐसा प्रकोप कोना देश में आई। तो अरे मान ल मान ला, हमने को टापू ऐसा मॉरिशस मान ल काल की नहीं स्वीति नहीं करा था ही, पर मान ला कि सुनामी आई तो कुछ हाँ करे कि सबसे पहला जो है बोले रन सा कि ऊंचा जगह में जाएगी। तो ऊंचा जगह कैसे घर के ला हो या पेड़ पर, अब जो कोई समुद्र के पास रह रहा था सुनामी के दस्ती समुद्र के पास मारे रहा था, और जो नदमी लोग समुद्र के तट पर रह रहे लोग के चना अपन घर छोड़ छाड़ के जाके ऊंचा जगह में, ऊंचा जगह में जाइब तो दस्ती सुरक्षा में रह हाँ कि नहीं। ऐसा न चला अगला गीत सुनब जा, और कहाँ छुपी रानी मोरी किशोर कुमार रमेश्वर गीतवा गैली हवन बहुत बहुत प्यार के साथ। और एगो संगतिया वाला लाइन पे कैसे मिलब जा। हेलो हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: नमस्ते, तो शुभ नाम
1: सुगुलाम,
0: को नाम बोला
1: सिगुलाम,
0: सिगुलाम कहाँ से आ रहे, तो स्वागत बा बोला भैया।
1: एगो गीत डाल दिया।
0: हाँ कौन गीत है।
1: चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजवा रे,
0: गीतवा गीतवा के गई लगबा
1: मौका मना दे गई भाई।
0: नहीं भोजपुरी गीत है,
1: भोजपुरी गीत है बाप।
0: फिल्मा के नाम जाने जा,
1: फिल्मा के नाम नहीं जाने।
0: गीतवा कैसे शुरू होला।
1: चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वा,
0: चलत चलत मुस आता आता खोजत ही है, चलत मुसाफिर
1: मोहलिया रे।
0: फिल्मा के नाम है तीसरी कसम।
1: सिया
0: हवा भोजपुरी है, बस की प्रोग्राम भोजपुरी
1: है।
0: आले बोला गीतवा गीतवा के कर खातिर।
1: हमर हम सब फैमिली के लिए, फैमिली सिगुलाम।
0: सिगुलाम कहाँ रहेला।
1: रिविया
0: देख रहे हो, और अभी रात के 11 बजे दिन के साथ दीबा।
1: हाँ
0: जिंदगी में कौन सी करेला भैया।
1: अरे हम तो अभी यहाँ से हैं, काम कर रही अपने घर।
0: हाँ रमन की प्रोग्राम सुनेला, कैसे बुझा रहा प्रोग्राम।
1: तो प्रोग्राम तो सो दी पारी
0: बाप। ए ता सो स्वीट। अरे तो गीत चलिए, चलो तो मुसाफिर तुरंत चलाओ थे ठीक बा। अरे बाय बाय, शुभ रात्रि। हाँ मनाडी के लगभग बोलते हैं भोजपुरी गीत। और हमने की संगत है, भूकंप कहाँ पर आल बा। फिलीपींस, फिलीपींस में आल बा भूकंप। बाप रे बाप, हम तो देख रही था ऐसा डर लगल, कहे कि छोटा छोटा टापू लोग घनी समुद्र में सब, मॉरिशस तो समुद्र के पानी से पिटीसन चुनती ही सब माप में, चारों ओर पानी ही पानी। तो हर बड़ी समुद्र के पानी बढ़ ले जाता, अब काज नहीं है चिलीर के कौन ची हो कहता है सिले बोला सत। चल अभी सुनब जा, कहाँ छुपी रानी, और गीता के बाद चलत मुसाफिर। ओके बैक टू बैक दुगो गाना।

0: जियो जियो कलर का हाउस जियो।
1: उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या,
2: उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या,
1: उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले।

0: कल और आज में कितना अंतर बा, समय के साथ साथ सब कुछ बदल गल बा। आगे के खान पान, आगे के जीने के तरीका, बात करे के सब कुछ बदला था। और आज मॉडर्नाइजेशन में जो है इस टेक्नोलॉजी के युग में सब कुछ ताकि पर चला था। ताकि दबाई बा तो लुगा धोआता, ताकि दबाई बा तो खाना सुखता, ताकि दबाई बा तो टिकटॉक पर हुआ, ताकि दबाई बा तो रेडियो ऑन, सब कुछ बहुत फैसिलिटी से हुआ था। ये सब फैसिलिटी आगे नहीं रहल, काहे कि आगे के ज़माना में लोग ढेर गरीब रहन सब, पर आजकल शिक्षा के दम पे सब कोई आगे बढ़ल बा और सब कुछ बदल बा, पॉजिटिवली निगेटिवली भी। पॉजिटिव कौन फासो में कि सब कोई के निमन निमन काम बा, अच्छा पगा, सब कोई अपन अपन गाड़ी में जला काम करे। पर निगेटिव जो है आगे सब कोई संगे रहतल, आगे जो रहत का गरीब रहता अली से, पर सब कोई संगे रहल। पर आजकल सब कोई अपन अपन दुनिया में व्यस्त बा। अब जैसे कोई छोकरा शादी करलक तो ओकर बीबी आल, तब बच्चा होल तो ओकर जिंदगी थोड़ा बदल गल, और आगे जोन रहल तो सब कुछ समय के साथ बदलते जाला। एक ही प्रगति प्रोग्रेस बोली रहा सर, और जहाँ समय के साथ चले कि समय के साथ चलब तो अकलमंद बनब, जिंदगी में कोनो न कोनो फोगे करब। समय के साथ नहीं चलब तो ढेर कुछ खो देब, तो का सकब से करे, नहीं सकब से कुछ करे, कहे कि समय के साथ चहला चले के थोड़ा चना एक्सेप्ट हो कि कैसे आगे के बहू लोग, आगे के बहू और हबी के बहू में ढेर अंतर बा ना। आगे जो है सास के आगे पत्यो लोग कपाल में होरनी डाल के खड़ा रहतलन सर, सास के मुंह पर नहीं ताकतलन सर। अभी तो तू जाने ला, हमने से हम खिचके नहीं करते हैं, पर थोड़ा सच्चाई बोलत हैं। और आगे जब सास जब पहुँची बोली तो पत्यो सुने, और आजकल तो क्या बोलब भैया, क्यों क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास बनेगी, हम तो ईमानी रहा। पर समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है, और आगे के छोकरी लोग उतना काम नहीं करता, घर पर रहता से सास के कुद में देवता राज करके, तो घर में सब महिला लोग जरा काम करे, कोनो कोनो महिला लोग घर ही रहेला, पर ढेर कोई काम करे रन से घर में पैसा आने रन से, तो ढेर नहीं सब बचाए बना बोल दे भी मुसीबत था भाई। बड़का मामा बड़का मामा के कर पतो या, कर पतो या के कर पतो या, है गीत। चलिए अभी सुदेश बोजू के गावल गीत, इमाम जावी मानी है गीत और खातिर, काव्या है गीत और खातिर, प्रकाश है गीत और खातिर, और अनिकेत पटेल है गीत और नाम, साथ में रविश मंडू के उसे गीत, और माँ बाप और भाई और सब परिवार खातिर, सावन और जिमी दुखिया गीत तो लोग के नाम, तो लोग के माँ के नाम भी, राजमन्ना तो सब परिवार, स्टीव चिबुक लोंग नानो राजा, सुरेश जसवा गीत तोहर खातिर, तोहर माँ राजकुमारी खातिर, मुकेश गंगा है गीत तोहरों नाम, दीपा तिवारी दुखित रहे नन कनाडा है गीत, ओकर पति केविन ओकर बेटा के नाम, और सब तिवारी और दुखित परिवार के नाम। और जितना कोई विदेश में हमने के देखा था, सुना था, देखा था टिकटॉक पर और सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन की लहरों पे, तो गीत लोग के नाम अभी को संगत्या वाला लाइन पेपर से मिल ले जा। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हाँ बात कर रहा, हेलो
1: हाँ मैम अमृता
0: अमृता

0: जी तो स्वागत बा
1: पीतों से
0: पीतों से जिंदगी में कौन ची करेला अमृता
1: मुझे सरकार में
0: आली बोला बोला कौन गीत
1: हाँ तो एक गीत मांगती हूँ किसानों धान रोपेला
0: की गीतों के गई लग बा
1: बिलो माथूर
0: आली गीतों समय रही तो चलाप सा कहे कि पांच पांच मिनट रह गल बा गीतों के कर खाते के कर खाते
1: सब गणेश परिवार खाते
0: ओके जी बहुत बहुत धन्यवाद
1: ओके नमस्ते
0: शुभ रात्रि तभी चला बड़का मामा की कहानी सुनब जा।

એટલે સુનેરા. और सासू माँ अगर अपन बहू के अपन बेटी की तरह मानी तो पतो भी सास के माँ लिखा मानी. अब तू पतो के थौजे मंग बताऊ थोड़ा थौजे भी लिखा दिखी ना. दोनों हाथ बजेरा मार ताली मार हमारे संगे मार ताली मार. दोनों हाथ से थपड़ी बजेरा भैया. ताऊ तो बोला था शबनी सन के साथ वन वनी श्री बंधु. हेलो जी हाय शारीश विकी गणेश नमस्ते. वनी श्री बंधु भी हमने के साथ देवोत्थवन और बेशक हमने के संगीत जोड़ अक्षय ठुका बॉय. कैसे भैया नीरुसी सरन गीत तोरो नाम चली और ये गीत वनीसा खतीर भी चलाओ. शिवांश हमने के साथ देवोत्थवन. हाय शिवांश तोहर स्वागत बा. और अभी आरोगी चाहिए नमस्ते नमस्ते गीत वा गैरक बा मुकेश चेदी. हाँ तो राम सलाम करते रहिए जब फजीर के जेब काम करे कोई भेटाल सीमा में या ऑफिस में तो एगो राम सलाम करा से तर मुँह छोटा नहीं जाए भैया. एगो राम सलाम कर बा नमस्ते बोलबा तो अच्छा है. एक बोला ला गुड मैनर्स बन मानिया बोला ला कि कभी कभी दिखे सर जब क्लास में जैसा लड़का लोग बोंजू नहीं बोले रहता नहीं भैया जैसा जो पीना मानिए जो मान अपन मानिए कौन प्रोफेसर अंदर क्लास में जैसे बोंजू मिस्यू बोंजू मैडम तो आजकल के लड़का लोग बुझा नहीं जाने ना सर का कर बा भैया कैसन जमाना चला बा. चला गीतवा सुने बुके शेरी की आवाज़ में नमस्ते नमस्ते शबनी से गीत और खतर

नमस्ते नमस्ते नमस्ते बोलते प्रोग्राम के अंत ले चले जा और बेशक सांझ के 6 बजे से अभी हमने के साथ देवा था बहुत बहुत धन्यवाद। रात के 11 बजे हो बा और ठीक 11 बजे सुन मजा सुने रिपल और रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे रे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने और हमने के तो लोग मुलाकात हुई कल बुधवार के रात के 9 बजे से 11 बजे रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी तड़का प्रोग्राम है लाइव टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस पर सब हमने के देखे काल भी। तो कल तक हमने की इजाजत दा अजय प्रताप सिंह सितालु की ओर से सब कोई की प्यार भरा नमस्ते सलाम। टिकटॉक पर हमने की देख ला रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर हमने की सुन ला बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय गॉड ब्लेस यू नमस्ते शुभरात्रि बाय।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। समस्त श्रोताओं को नीतु शाह का करजोर प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक कुशल मंगल हैं। श्रोताओं, आइए इस मंगलवार की रात में सुनहरे पल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत अभिवादन करती हैं। तो आज हम जीनत अमान की दुनिया में आपको ले चले हैं। उनके गाने, उनकी मूवीज आपको पसंद थी, आज भी पसंद की जाती हैं। तो एक बार फिर उनके गानों को, उनकी यादों को फिर से ताजा करते हैं।

जिनत अमान हिंदी सिनेमा के उन अभिनेत्रियों में से एक है जिन्होंने बॉलीवुड में ग्लैमर, आत्मविश्वास और आधुनिक नारी की एक नई पहचान स्थापित की। उनका नाम 1970s और 1980 के दशक के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली एक्ट्रेसेस में लिया जाता है। जिनत अमान ने अपनी खूबसूरती, अदाकारी और अलग अंदाज से हिंदी फिल्मों में एक नई सोच को जन्म दिया। उन्होंने उस दौर में ऐसे किरदार निभाए जो समय से काफी आगे थे और जिन्होंने महिलाओं की बदलती हुई छवि को पर्दे पर दर्शाया।

जिनतमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को जर्मनी में हुआ था। उनके पिता अमानुल्लाह खान एक प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने कई फिल्मों के लिए कहानियां और स्क्रिप्ट्स लिखी। बचपन में ही पिता के निधन के बाद जिनत ने कई चुनौतियों का सामना किया। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और बहुत जल्द अपनी सुंदरता और व्यक्तित्व के कारण लोकप्रिय हो गई। साल 1970 में उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल के खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी।

वैसे फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की, लेकिन असली पहचान उन्हें 1971 में आई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। इस फिल्म में उन्होंने जैनिस का किरदार निभाया और उनका गीत दमरुदम देश भर में बहुत लोकप्रिय हुआ। फिल्म में उनकी अदाकारी को दर्शकों और समीक्षकों ने बहुत सराहा। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी मिला। इस सफलता के बाद जिनत अमान बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई।

1970s और 80s के दशक में जीनत अमान ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। यादों की बारात, रोटी कपड़ा और मकान, अजनबी, डॉन, सत्यम शिवम सुंदरम, कुर्बानी, दोस्ताना, लावारिस, द ग्रेट गैम्बलर, इंसाफ का तराजू, अलीबाबा और 40 चोर जैसे फिल्मों ने उनके करियर को बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने उस दौर के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया और हर फिल्म में अपनी अलग छाप छोड़ी।

मिसेस जीनत अवान की एक्टिंग स्टाइल बहुत ही प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, आत्मविश्वासी और मॉडर्न थी। उन्होंने बॉलीवुड की परंपरागत हीरोइन की छवि को बदल दिया। ऐसे किरदार निभाए जो स्वतंत्रता, मजबूत और अपने फैसले खुद लेने वाली महिलाओं को दर्शाते थे। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना प्रभावशाली था कि दर्शक उन्हें देखते ही प्रभावित हो जाते थे। ग्लैमर के साथ साथ उन्होंने गंभीर और भावनात्मक भूमिकाओं में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वैसे फिल्म इंसाफ का तराजू में उनकी अदाकारी इसका एक उत्तम उदाहरण है।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

बहुत बहुत धन्यवाद इस समय आप सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं श्रोताओं। वैसे जीनत अमान को उनके योगदान के लिए कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड के अलावा कई अन्य नॉमिनेशंस और सम्मान भी मिले। मिस एशिया पैसिफिक के खिताब जीतना उनके जीवन की एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही। बॉलीवुड में उनका योगदान केवल सफल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने पूरी पीढ़ी की अभिनेत्रियों को प्रेरणा दी कि वे नए और साहसी किरदार निभाने से ना घबराएं।

व्यक्तिगत जीवन में भी जीनत अमान ने कई उतार चढ़ाव देखे। चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी हिम्मत और सकारात्मक सोच ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज भी वे अपनी गरिमा, स्पष्ट विचारों और अनुभवों के लिए सम्मानित की जाती हैं।

जिनत अमान का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने ग्लैमर को गरिमा के साथ जोड़ा, महिलाओं के नए रूप को पर्दे पर स्थापित किया और अपनी अदाकारी से करोड़ों दर्शकों का दिल भी जीता। वे केवल एक सफल अभिनेत्री ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा में बदलाव की प्रतीक भी हैं। उनकी फिल्मों, उनके गीतों और उनके यादगार किरदारों को आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा याद रखेंगी। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: Hey,

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: MBC Radio, your music companion.
1: श्री आर डी बर्मन जी हमेशा इंस्पिरेशन उनसे हमने लिया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए लाइफ में, कई इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किए, जैसे 12 स्ट्रिंग गिटार, मादल, बेस गिटार। एक बार इस इंडस्ट्री में म्यूजिशियनों की स्ट्राइक हो गई थी, कोई म्यूजिशियन बजा नहीं रहा था,
2: किसी को गाना रिकॉर्ड करना था। तो देखिए इंस्पिरेशन कैसे काम आती है। पंचम दा ने गाना रिकॉर्ड किया, वो गाना बहुत चला और उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें जो म्यूजिक के इंटरलूड्स हैं वो कुछ नहीं है, रिदम चल रहा है, एक आदाब जैसी वॉइस डायलॉग बोलती है, एक इंजन का इफेक्ट दे दिया है और गाना स्मूथली निकल गया। देखिए

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है?

0: मेरे पर तुले हो जालिम, आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा।
1: दिल डूबा।

की गहराइयों को चीरता हुआ ये दर्द, ये कसक, ये चुभन।

0: dormi contento, moti.
1: एक साथ धड़के।